मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संबत 1948 की वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई 2026। इस समय 5:56 और 31 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हमारी जन्मभूमि हमारे जीवन की असली पहचान होती है। इसकी मिट्टी, संस्कृति और संस्कार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने जन्मस्थान से प्रेम करना और उसकी गरिमा को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है।

भगवान जगन्नाथ के चकानयन अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय माने जाते हैं। उनके बड़े गोल नेत्र सदा जागृत रहने का प्रतीक है, जो हर दिशा में अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ये नेत्र समानता, करुणा और निरंतर संरक्षण का संदेश देते हैं। उनके दर्शन से मन में शांति, विश्वास और भक्ति की गहरी भावना जागृत होती है।

हे जगन्नाथ, हम तेरे प्यार में बावरे, तेरे सिवा कुछ हमें और याद ही नहीं, और सच कहें तो याद रखना भी नहीं चाहते। हमारी इच्छा तो यही है कि आंखों में तेरी सूरत रहे और मन में तेरी मूरत रहे और मुख पे सदा तेरा नाम रहे।

गुरुवाणी हमें सत्य, सेवा, प्रेम और मानवता का संदेश देती है। गुरु नानक देव जी ने सभी को समानता और भाईचारे की राह दिखाई। आइए गुरुवाणी के अमृत शब्दों को जीवन में अपनाकर शांति और सद्भाव का दीप जलाएं।

भक्त शिरोमणि मीराबाई ने अपने कृष्ण प्रेम से संसार को सच्ची श्रद्धा का मार्ग दिखाया। उनके भजन आज भी हर हृदय में भक्ति की ज्योति जगाते हैं। मीराबाई का जीवन त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास की अनुपम कहानी है, जो सदियों से लोगों को प्रेरित कर रही है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: प्रकृति का सबसे मौलिक नियम परिवर्तन है। हम अक्सर अंत शब्द से डरते हैं क्योंकि यह अनिश्चितता और विदा का प्रतीक लगता है, लेकिन यदि गहराई से एक विचार किया जाए तो अंत एक पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक अल्प विराम है जो अगली पंक्ति की तैयारी करता है। जब तक बीज मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करता तब तक एक विशाल वृक्ष का आरंभ संभव नहीं है। पतझड़ में पत्तों का गिरना एक अंत है, लेकिन यह अनिवार्य है ताकि वसंत में नई कोपले फूट सके। सूर्यास्त एक दिन का अंत है, लेकिन यही वह घटना है जो सितारों के उदय और अगले दिन की नई भोर का मार्ग प्रशस्त करती है। समुद्र का पानी भाप बनकर अपना स्वरूप खत्म करता है, तभी वह बादलों के रूप में नया जीवन पाकर वर्षा के रूप में फिर से धरती पर लौटता है। भारतीय दर्शन में शिव को संहारक कहा गया है। यहाँ संहार का अर्थ विनाश नहीं बल्कि पुनरुद्धार है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतस्य च, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ये चक्र दर्शाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल एक पुराने अध्याय को समाप्त कर नए अध्याय शुरू करती है। बौद्ध दर्शन में भी अनित्यता का सिद्धांत यही सिखाता है कि हर पुरानी अवस्था का विसर्जन ही नई अवस्था का सृजन है। मानव जीवन में हम कई बार अंत का अनुभव करते हैं, जैसे शिक्षा का समाप्त होना, किसी नौकरी का छूटना या किसी प्रिय रिश्ते का टूटना। एक व्यापार का विफल होना उस पद्धति का अंत है जो काम नहीं कर रही थी। ये उस अनुभव का आरंभ है जो भविष्य की सफलता की नींव बनेगा। विज्ञान का ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसी दर्शन की पुष्टि करता है। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जब एक मोमबत्ती जलकर नष्ट होती है तो वह प्रकाश और ऊष्मा के रूप में नया स्वरूप ले चुकी होती है। ब्रह्मांड में एक तारे का सुपरनोवा यानी विस्फोट होना नए ग्रहों और जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का आरंभ होता है। जो लोग अंत को स्वीकार कर लेते हैं वे ही नई शुरुआत का आनंद ले पाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से पुरानी आदतों या अतीत के बोझ को छोड़ना ही मानसिक स्वास्थ्य का आरंभ है। जब हम पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ते हैं तभी हम अपने जीवन की नई पटकथा लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अंत ही आरंभ है एक सुविचार नहीं है बल्कि जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि अतीत के जाने पर शोक न करें, परिवर्तन को साहस के साथ गले लगाएं, हर विदाई में एक स्वागत की संभावना तलाशें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक महान यात्रा का नया पड़ाव है। इसी तरह आज की हर मुश्किल घड़ी कल की नई संभावना का गर्भ है। इसलिए जब कभी हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लीजिए कि अब बहुत कुछ ही सुंदर और नया शुरू होने वाला है। नए वर्ष का आगमन अंत ही आरंभ के दर्शन का सबसे जीवंत और उत्सवपूर्ण उदाहरण है। हर साल 31 दिसंबर की याद ही रात को हम एक साथ दो विपरीत भावनाओं का अनुभव करते हैं, बीते हुए वर्ष की विदाई और आने वाले वर्ष का स्वागत। बीता हुआ वर्ष अपनी सफलताओं असफलताओं खट्टी मीठी यादों और सीखों के साथ अंत की ओर बढ़ता है। कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटना इस बात का प्रतीक है कि हमने समय के एक बड़े हिस्से को जी लिया है और अब उसे पीछे छोड़ने का वक्त है। यह अंत आवश्यक है ताकि हम पिछले बोझ को उतार कर नए संकल्पों के लिए जगह बना सकें। जनवरी की पहली तारीख एक तारीख ही नहीं बल्कि एक कोरा कागज है। यह हमें विश्वास दिलाता है चाहे पिछला साल कैसा भी रहा हो, ब्रह्मांड हमें फिर से शुरू करने का एक नया अवसर दे रहा है। नया साल हमें सिखाता है कि समय कभी रुकता नहीं। ये मनुष्य की अदम्य जिजीविषा को दर्शाता है कि वो हर अंत के बाद मुस्कुराकर एक नई शुरुआत करने का साहस रखता है। जब हम नया वर्ष मनाते हैं तो हम वास्तव में इसी सत्य का उत्सव मना रहे होते हैं। हम पुरानी डायरियों को बंद करते हैं ताकि नई डायरियां लिखी जा सके। ये चक्र हमें याद दिलाता है कि जीवन निरंतरता का नाम है, जहाँ हर ढलता हुआ सूरज अगले दिन के उदय की प्रतिज्ञा है। पुराना वर्ष एक अनुभवी शिक्षक की तरह विदा होता है और नया वर्ष एक उत्साहित शिष्य की तरह प्रवेश करता है। सार ही शीर्षक है कि अंत ही आरंभ है।
0: अभी सुन रहे थे आप आज का चिंतन। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में आपको स्वागत है। भाई बहनों, जैसो कि तुम्हारे मालूम है कि अभी गर्मी को मौसम चली रही है आने मई जून को महीनों गर्मी अपनी चरम सीमा पे है। जहाँ देखो वहाँ खूब लू लपाटा चली रहा है। ऐसा में अपन अपना पशु की देखभाल कैसे करा यो ध्यान भी अपने होना चाहिए। न पशु ना की देखभाल अपन अच्छी तरह से करांगा तो देखो अपना दूध उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा और अपना पशु भी स्वस्थ रहेगा। तो भाई बहन और अपने कर्नो कही है कि अपना पशु ऐसा वातावरण में रहे, या फिर यूं कहूं कि अपना पशु की जो पशुशाला है वह ऐसी रहे कि वह हवादार हो और उनकी जो ऊंचाई है, छत की ऊंचाई है वह ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि गर्मी अपना पशु उनके इका साथे जो जमीन है या कहो कि वह सतह है जिस पे पशु खड़ा रहे वह सतह पक्की होनी चाहिए और जल और मूत्र का निकासी के लिए उचित व्यवस्था होनी भी बहुत जरूरी है। अपना पशु खोन के गर्मी से बचाने के लिए जो पशुशाला की छत है उका ऊपर 4 से 6 इंच की जो कड़प रे उकी या फिर चारा की परत बिछे देनी चाहिए, जिससे कि जो सूर्य की रोशनी है उससे जो अपनी पशुशाला है उसकी छत नहीं तपे। अपनी पशुशाला में जो भी खिड़की हो या दरवाजा हो वहाँ पर टाट को या बोरा उनको एक पर्दो बनाई दा। आने समय समय पे दोपहर में उन्हें पर्दा पे अपन पानी को छिड़काव कर

0: तरह एकासे कई होएगो कि जो पशुशाला का अंदर हवा जाएगी वह पानी की परत से ठंडी हुई जाएगी और पशु उनके ठंडक मिलेगी। यदि संभव हो तो यदि जहाँ अपना पशु अपने बांधा है वहाँ पर अपन हवा के लिए पंखा की व्यवस्था कर सकता है। यो भी ध्यान रखा कि पशु उनके रहने का लिए या आवास का लिए पर्याप्त मात्रा में जगह मिले। पशु उनके उचित दूरी पर एक दूसरे से बांधो। बहुत ज़्यादा पशु उनके एक ही पशुशाला में बांधने से भी गर्मी भी बढ़े और साथ साथ अपना पशु परेशान भी होवे। दोपहर का समय जब गर्मी ज़्यादा होई, उन्ना समय पे अपन दिन में 3-4 बार पशु उन पे ठंडा पानी को छिड़काव भी कर सकता है। इससे भी अपना पशु उनकी जो गर्मी है वह कम लगेगी और ठंडक पहुँचेगी। साथ ही यदि संभव हो तो पशु उनके आसपास यदि तालाब हो तो तालाब में ले जाना चाहिए, जिका से भी अपना शरीर के उचित मात्रा में ठंडक पहुँच सके। भाई बहनों, आवास का साथ साथ अपने पशु का खान पान को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशु उनके हरों चारों जो है पूरी मात्रा में उपलब्ध करवाना चाहिए। हरा चारा से पशु उनकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वह भी बढ़ेगी और वे स्वस्थ भी रहेगा। हरा चारा से जो पशु होने हैं उनमें पानी की मात्रा भी शरीर के मिली जावे, जिका से उनके पानी की कमी भी नहीं होगी। गर्मी के मौसम में वैसे तो पशु उनके भूख से ज़्यादा प्यास लगे, ऐसा में ठंडो और स्वच्छ जल पिलाना बहुत जरूरी है और अपना पशु उनके कम से कम 3-4 वक्त पानी पिलाना चाहिए, जिका से उनका शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और भी गर्मी से बचा हुआ रहेगा। अपना पशु उनके गर्मी से बचाने के लिए सबसे सरल और अच्छा उपाय है कि अपन जहाँ भी अपनी पशुशाला हो उसका आसपास थोड़ी जगह ऐसी रखा जहाँ पे अपन पौधा लगाई सका या पेड़ लगाई सका। वे पेड़ पौधा अपना पशु उनके ठंडक देगा और पशुशाला का आसपास गर्म वातावरण के ठंडक देने में सहायता करेगा। तो भाई बहनों, आज अपन इतरीज बात करांगा। तमारी बहन मनीषा शर्मा के दुविधा, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।

पक्षीराज गरुड़ काक भुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काक भुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, न ही उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए।

इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरतवाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर में यानी कि 7:20 से आप सुनेंगे आपका पत्र कार्यक्रम, जिसमें आपके पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:30 से 9:00 से आप सुनेंगे लोक संगीत। कलाकार होंगी ममता शर्मा, गुरशा दुबे की गायी हुई रचनाएं आप सुनेंगे सुगम संगीत में सुबह 9:15 से। सुबह 9:30 से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में भरत तिवारी का एकल तबला वादन, ताल तीन ताल। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुनेंगे 10:05 से। दिन में 12:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:00 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5:00 से आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम, इसमें आरंभिक चर्चा विश्व मधुमक्खी दिवस, आज के प्रश्न, आज का क्रम, एक ही फिल्म से, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म राजा बाबू के गीत। फिल्म संगीत होगा शाम 5:45 से। प्रायोजित कार्यक्रम

सीआरटी का समय रहेगा शाम 6 बजे से। शाम 6:30 से आप सुनेंगे सुगम संगीत, कलाकार होंगी गुरशा दुबे। लोक संगीत में आप सुनेंगे ममता शर्मा के गाए हुए लोकगीत शाम 6:45 से।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आप सुनेंगे शाम 7:20 से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आप सुनेंगे किसान समृद्धि योजना के विषय में। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता प्रगतिशील ग्रामीण महिला कृषक भावना खाटरिया भोगवा से सुनीता पंडित की गई बातचीत। वार्ता आप सुनेंगे कुंडली उद्योग डिंपल नागर इस विषय में आपको जानकारी देंगे। साथ ही इसी कार्यक्रम में घरेलू व्यंजन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। घरेलू नुस्खे के बारे में भी आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुन सकते हैं। सुर्खियों में आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से जिसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आनंद प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फरियाद किया। चित्रगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 से।

चर्चा का विषय है हम अनुप्रसारित करेंगे रात 9:30 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10 बजे से सुनिए नाटक उसका फैसला। रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेष् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक

0: देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमार, उज्ज्वल निकम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, वैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370-879,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिक रूपेण स्वस्य ब्राडगेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
0: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: प्रायोजित कार्यक्रम वदन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00 बजे।

0: रविवार 22 मई सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनिए आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती इंदौर पर। आकाशवाणी
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की आज गूगल की टीम के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक। नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र के लिए 330 करोड़ रुपए की माइक्रो डेवलपमेंट योजना। और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, नौगांव में पारा 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय किया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्डिक क्षेत्र सतत विकास में नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को भारत के व्यापक स्तर के साथ जोड़कर भविष्य के लिए भरोसेमंद वैश्विक समाधान विकसित कर सकते हैं। श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है और भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा है। उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि
2: इस ग्रीन

0: इन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश और गूगल के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, उन्नत क्लाउड तकनीकों और एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक चर्चा करेंगे। भोपाल में हो रही इस बैठक में मध्य प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीकी आधारित विकास को नई दिशा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल आयोजित मध्य क्षेत्रीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों और सुशासन के प्रयासों की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में विशेष प्रयासों से सफलता प्राप्त की गई। प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित रहे ग्रामों के लिए 330 करोड़ रूपये लागत की माइक्रो डेवलपमेंट योजना लागू की गई है। अलग अलग योजनाओं के तहत सड़क, पुल, मोबाइल टावर, नई सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश आज धान और गेहूं के उत्पादन में मजबूत स्थिति में है, लेकिन दलहन और तिलहन के क्षेत्र में अभी आत्मनिर्भरता हासिल करना बाकी है। कल भुवनेश्वर में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय खरीफ कृषि जोनल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत की कृषि को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच क्षेत्र विशेष और राज्य विशेष रोडमैप के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि
2: एक हमने चर्चा की है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। हमारे पास तो 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ छोटा किसान लैंड होल्डिंग का, मैं तो कम लैंड होल्डिंग में कैसे वो ज्यादा उत्पादन करे, उसकी आजीविका कैसे चले। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई मॉडल देश में बनाए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है वो अनाज भी लगाए, लेकिन छोटा ही खेत हो तो फल भी कुछ लगाए, सब्जी भी लगाए, जिनकी रुचि है वो पशुपालन करें, मछली पालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें, उसके अलग अलग मॉडल हमने तैयार किए।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बंद के आह्वान के चलते आमजनों को दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बंद के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी अस्पतालों में संचालित फार्मेसी खुले रहेंगे। गौरतलब है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेशभर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं होने से नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। नीमच और आगरमालवा में औषधि विक्रेताओं द्वारा प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की सूचना दी गई है, लेकिन जिले में आमजन और मरीजों को जरूरी दवाइयां मिल सकें इसके लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के कुछ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही वीर भारत न्यास द्वारा भोपाल में भारत भवन में 27 मई से 2 जून तक सदानीरा समागम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि उज्जैन में गंगा दशमी के अवसर पर होने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण आयोजन है। भारत भवन में सदानीरा समागम का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के एआई आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार यह 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। संग्रहालय के अधिकारियों के अनुसार आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है। यह संग्रहालय का तीसरा एआई आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोजशाला में कल महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। मां वाग देवी की महाआरती हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि मां वाग देवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश भीषण गर्मी और तेज लू की चपेट में है और इसका असर अब जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। कल प्रदेश में तेज गर्मी और लू जैसे हालात के बीच 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों को लू लगने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चली। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कई शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं और फिलहाल राहत के संकेत नहीं हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 28 मई को शासकीय आईटीआई झांसी रोड में किया जाएगा। सतना के शासकीय आईटीआई कॉलेज बिरला रोड में आज 11 बजे से 2 बजे तक युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कल डिंडोरी के विकासखंड अमरपुर में ग्राम नांदा में आयोजित क्षीरधारा ग्राम योजना शिविर में पशुपालकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी गई। इंदौर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 15,051 एक्सरे किए जा चुके हैं और टीवी के प्रिवेंटिव इलाज में इंदौर जिला मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। सिवनी में विगत 18 मई से जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। मैहर अमरपाटन और रामनगर के 35 ग्रामों में पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविरों में हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह आज खंडवा के ग्राम रोशनी में कृषि मत्स्य एवं पर्यटन के समेकित मॉडल का शुभारंभ करेंगे। नीमच कलेक्टर ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मात्र स्वास्थ्य उपार्जन और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हरदा में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को नालसा और सालसा की विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर आरटीओ और जिला प्रशासन की टीम ने कल बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकाल में सुगम निकास व्यवस्था की जांच के दौरान 8 बसों से 2,26,000 रूपये का जुर्माना वसूला और झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश टुकाराम भरसट ने कल पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक में पंपों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की आज गूगल की टीम के साथ उच्च स्तरीय रणनीति बैठक। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 330 करोड़ रूपये की माइक्रो डेवलपमेंट योजना और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: सभी श्रोताओं को अखिलेश बाथम और
1: राजेश पाठक का
0: नमस्कार।
2: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
3: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
4: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था।
3: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
5: अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने का।
3: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
6: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
7: औरों को भी सिखाओ।
8: नमस्कार ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर

0: घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

शब्दाक्षरों और सुरों के अनूठे संगम को समेटे आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष की सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं शुक्रवार 22 मई सन 2026 को सजीव फोन इन प्रोग्राम में सुबह 10:10 से 12 बजे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी से अपने 90 वर्ष के सफर का जिक्र कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता 0731 कोड अवश्य लगाए। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और विविध भारती चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक से, अपने समय के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय, देविंदर कौर मधु और संतोष जोशी से। इस कार्यक्रम में उत्साह है, उमंग है और ढोल की थाप है, तो जरूर फोन लगाइए। शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सुबह 10:10

0: श्रोताओ, ये गूंज जो आप अभी सुन रहे थे अपने रेडियो शेड पर, ये उससे गूंज की एक छोटी सी झलक मात्र है। पूरा प्रोग्राम 22 मई को आप जब देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा यहाँ के कलाकारों के द्वारा, और तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और उसकी झलक मात्र आप तक पहुँचाई गई थी। और अब आपका पत्र कार्यक्रम, अब हमें पता है कि आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अपने पत्रों के बारे में।
1: तो चलिए, इससे शुरू करने के पहले हम अपने श्रोताओं को बतला दें कि आपका जो पत्र है वो स्कैट के जरिए आया है, अंतर्देशीय पत्र के जरिए आया है।
0: बिल्कुल।
1: और जो छूट गए हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063, इस पर आप व्हाट्सएप करें इस लाइव प्रसारण के दौरान। और प्रोग्राम शुरू करने के पहले बाथम जी, हम अपने श्रोताओं को बतलाते हैं कि आज आपको पता है 20 मई है, और 20 मई को कौन सा दिवस होता है? 20 मई को जो है विश्व

0: मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और यह दिन पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्लोवेनिया की पहल पर की गई थी और आज विश्व माप दिवस भी है और यह दिवस 20 मई 1875 को 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर माप की इकाइयों और प्रणालियों में इसमें एकरूपता बनाया जाना है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करें तो इस दिन मधुमक्खी पालन के लिए अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में बस्तिमा में दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करना है। तो इस पर चर्चा करते हुए अब बिल्कुल देर न करें और हम अपने श्रोताओं के मेल की ओर अग्रसर होते हैं। ये पहला मेल किनका है
1: राजेश भाई? पहला मेल हमें जो मिला है वो सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से मिला है और भेजने वाले हैं सूरज कुमार ढक से, साक्षी, ज्योति, ऋतुराज, राजेश, पूर्णिमा और दुर्गेश नागनपुरे।
0: जी क्या लिखते हैं?
1: इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के ये नियमित श्रोता है और इंदौर आकाशवाणी के कई कार्यक्रम सुनते हैं। उन्होंने कई कार्यक्रमों के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 14 मई 2026 का महिला सभा कार्यक्रम इन्होंने सुना और इस कार्यक्रम में महिलाओं में दर्द की समस्या कारण उपचार विषय पर ऋतु पौराणिक से शिखा की जो बातचीत हुई थी उसे इन्होंने सुना, तो इन्हें वो सुनकर बहुत अच्छा लगा
0: और काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कई बहनों को फ़ायदा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपके हाथ में हम पत्र देख रहे हैं, लिफाफा है
1: जी जी,
0: ये किनका है और कुछ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा?
1: हाँ, लेकिन इसमें काफ़ी मशक्कत करने के बाद में समझ में आ रहा है, ये एक अनिल कौचाले हमारे श्रोता हैं। तो निवेदन इनसे ये करना चाहेंगे कि आप जब पत्र हमें लिखें तो घर में अगर कोई और हो तो उनसे उनकी हैंड राइटिंग में लिखवाएं, क्योंकि ये जो आपने लिखा है तो इसमें समझने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक समझ पाए हैं आपके पत्र की लिखावट, तो उसके अनुसार इन्होंने 13 मई का जिक्र किया है आपका पत्र कार्यक्रम, जिसे आपके साथ में विजया जैन ने प्रस्तुत किया था। तो उस कार्यक्रम को इन्होंने सुना, इनको वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, खासकर आप लोगों की जो प्रस्तुति थी। इसके बाद इन्होंने मनभावन कार्यक्रम के बारे में भी लिखा है कि उसको शनिवार रविवार में भी शुरू किया जाए। साथ ही इन्होंने एक कार्यक्रम युवाणी के बारे में भी लिखा है कि इन्हें युवाणी कार्यक्रम अच्छा लगता है और इन्होंने लिखा है कि युवाणी कार्यक्रम में जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी बहुत ही लाभफुल होती है और ख़ासकर युवाओं को उससे बहुत लाभ होता है।
0: जी, मनभावन कार्यक्रम के बारे में हमने आपका सुझाव नोट कर लिया है। और युवानी की जहाँ तक बात है, हम अपने युवाओं को जो है नवीनतम जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों देखिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो पत्रकारिता के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत हमने की और उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किए उसको हमने युवानी कार्यक्रम में भी भाग लेने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है, लावरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, परमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, समस्त बामनिया परिवार लिखते हैं, आपका पत्र कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी के स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त आकाशवाणी के सदस्यों को बहुत बहुत इन्होंने बधाई दी है और 13 मई को आपका पत्र कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। 17 मई को हमारे मेहमान कार्यक्रम सुना, काफ़ी अच्छा लगा। मुकाम जी ने डॉक्टर राजेश के साथ जो बातचीत की काफ़ी अच्छा लगा। और श्रोताओं के पत्रों पर आधारित पूर्व में मेरी प्रति रविवार को शाम 6 बजे से यह कार्यक्रम FM विविध भारती से प्रसारित होता था, इसे पुनः शुरू किया जाए। हमने आपका सुझाव नोट कर लिया है। और अगला किनका है?
1: अगला हमें मेल मिला है, ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं राधेश्याम नागनपुरी, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम बाई, बाबू दिव्यांश ने, और इन्होंने दो कार्यक्रमों का जिक्र किया है
0: जी।
1: इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया है कि इनको 15 मई शुक्रवार को महिला सभा कार्यक्रम इन्होंने जो सुना उस कार्यक्रम में हैप्पी इंटरनेशनल फैमिली डे और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर दी गई जानकारी इनको बहुत अच्छी लगी। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है कि कैसा हो किशोरी बालिकाओं का आहार विषय पर आहार विशेषक से जो चर्चा हुई थी वो इन्हें बहुत ही लाभदायक लगी। और अगला जिक्र इन्होंने किया है 17 मई
0: जी।
1: इस दिन रविवार को इन्होंने कार्यक्रम सुना कल के सितारे बच्चे हमारे, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में रेल टिकट यात्रा के समय टिकट का PNR नंबर क्यों होता है इस महत्वपूर्ण विषय पर जो जानकारी हमारे केंद्र से दी गई थी इन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा
0: और काफी रोचक जानकारी
1: जी। साथ ही विश्व दूरसंचार दिवस पर दी गई जानकारी जो कि अच्छी लगी और काव्य श्रीवास्तव द्वारा एक प्रस्तुत कविता उनको बहुत अच्छी लगी
0: जी। 22 मई को हम अपने केंद्र की स्थापना दिवस मना रहे हैं और देखिए आकाशवाणी इंदौर का इतिहास मध्य प्रदेश के प्रसारण जगत में गौरवशाली रहा है। इसकी विधिवत शुरुआत जो हुई थी 22 मई 1955 को हुई थी और 1956 में राज्य गठन के बाद वह मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र बना जिसमें मालवा अंचल में सूचना शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। यह केंद्र अपनी सुरीली उद्घोषणाओं और लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध रहा है और देखिए यहाँ का जो खेती गृहस्थी कार्यक्रम नंदा जी, भैरा जी, कान्हा जी जो प्रस्तुत किया करते थे वास्तव में हर एक किसानों के घर तक पहुँचता था
1: जी।
0: और काफ़ी किसान जानकारी ग्रहण करते थे और अपने खेती किसानी में उपयोग भी करते थे। और हम बात करें शुरुआती दिनों में इस केंद्र से मालवा क्षेत्र की लोक विधाओं, संगीत और स्थानीय समाचारों का प्रसारण हुआ करता था जिसे इस केंद्र को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया गया। और रेडियो ने भी अपना जो स्वरूप बदला है, पहले 200 किलोवाट का ट्रांसमीटर था तो इंदौर और उज्जैन संभाग के समस्त जिले में प्रसारण हुआ करता था और वर्तमान समय में देखें अब न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हमारा केंद्र आ गया, विविध भारती भी आ गया और प्राइमरी चैनल भी आ गया
1: जी।
0: तो इसके कारण दोनों कार्यक्रम हम विश्व फलक पर भी
1: सुन सकते हैं,
0: ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनते हैं और पूरे विश्व के श्रोता भी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह उपलब्धि केवल इस केंद्र की नहीं है, इस क्षेत्र के श्रोताओं के भी हैं जिन्होंने बड़े चाव से इस केंद्र को सुना, सराहा। अगला मेल
1: राजेश भाई, अगला मेल है, ये भेजने वाले श्रोता है मोरटक्का मापी जिला खंडवा से
0: जी।
1: जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना
0: जी,
1: मानस, मन और कनिका पटेल।
0: क्या लिखते हैं?
1: सबसे पहले तो उन्होंने आकाशवाणी इंदौर के 71वां वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयां दी हैं। साथ ही उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की आकाशवाणी की 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, कलियों की तरह खिलती रहे, फूलों की तरह महकती रहे। हमारी बस यही तमन्ना है कि आकाशवाणी इंदौर दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आकाशवाणी इंदौर की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी इंदौर से इसके अलावा जो प्रसारित कार्यक्रम होते हैं इन्हें एक से बढ़कर एक लगते हैं। वंदना, चिंतन, ये सुबह से ही कार्यक्रम सुनते हैं। मन भवन, MH हॉटलाइन, युवाणी कार्यक्रम, ग्राम लक्ष्मी, सभी कार्यक्रम ये सभी लोग मिलकर सुनते हैं और सभी कार्यक्रम इन्हें ज्ञानवर्धक और कर्णप्रिय लगते हैं। इन कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए सभी प्रस्तुतकर्ता को इन्होंने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दिया है।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारा कार्यक्रम को काफ़ी शिद्दत के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और पत्र आया है व्हाट्सएप के माध्यम से, लिखने वाले हैं चौखरा धाम कॉलोनी सनाबस से कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह और ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान। ये लिखते हैं आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम लाजवाब और शानदार होते हैं। सुबह के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं जैसे भक्ति संगीत, श्री रामचरित मानस गान, गुड मॉर्निंग इंदौर और 15 मई का युवानी कार्यक्रम सुना जिसमें एक छोटे से गांव से निकलकर जो है कुमारी साक्षी ने भारोत्तोलन में 2026 में गोल्ड मेडल प्राप्त कर अपने देश को गौरवान्वित किया और बहुत अच्छी जानकारियों से ओतप्रोत रहता है आपका युवानी कार्यक्रम। और आगे लिखते हैं, 17 मई को योग निरोग कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा। ओम प्रकाश त्रिवेदी जी ने जो गर्मी से बचाव के लिए जो सुझाव दिए काफ़ी अच्छा था। 18 मई को गुड मॉर्निंग कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा। एक छोटी सी शिकायत इन्होंने की है कि MH हॉटलाइन पर फ़ोन लगाने के बहुत कोशिश करने के बाद फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम में भी मेरी कोशिश नाकाम हो जाती है। बताइए अखिलेश जी, ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि ये दोनों ही कार्यक्रम आप श्रोताओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं और हर कोई चाहता है कि हमारी पसंद का गीत आप सुने, क्योंकि ये उसी समय आप गीत की फरमाइश करते हैं और उसी समय केंद्र के उद्घोषक आपको वो गीत सुनवाते हैं, तो ये एक अलग रोमांच होता है। तो उस समय जब लाइन दो होती हैं और ये तो तय है कि एक घंटे के प्रोग्राम में मुश्किल से 10 या 12 कॉल लगेंगे, लेकिन उस समय हजारों लोग ये ट्राई करते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही।
1: और उस समय क्या होता है, जब किसी का भाग्य से लाइन लग जाती है, जुड़ जाता है, तो लोग सोचते हैं कोई इसमें ट्रिक होगी, पर ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ प्रयास, धैर्य आप रखें, आपका भी नंबर बहुत जल्द लगेगा, आपसे भी बहुत जल्दी बातें होंगी, आपकी फरमाइश का गीत बहुत जल्दी हम आपको सुनवाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोफेसर कोलनी खंडवा से लिखने वाले हैं आनंद जोशी जी, तनुजा जोशी जी। लिखते हैं, दिनांक 13 मई बुधवार को युवानी कार्यक्रम में प्रस्तोता राज जी, सजल जी, श्रद्धा जी द्वारा रेडियो एवं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद पर उनके राजनीतिक कृतित्व पर विशेष चर्चा अच्छी लगी और इस दिन एक ही फिल्म की कहानी, फिल्म बादशाह की कहानी रोचकता से परिपूर्ण लगी। आगे लिखते हैं, देवी अहिल्या पत्रकारिता विश्वविद्यालय इंदौर की छात्रा सजल जैन को आकाशवाणी इंदौर में एक दिन का होस्ट युवानी कार्यक्रम में उद्घोषिका बनने का अवसर प्रदान किया गया, जो उन्हें बहुत आत्मविश्वास के साथ निभाया। युवानी कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती असीम कैथवास जी को बहुत बहुत बधाई दी है। और आगे लोक संगीत कार्यक्रम में जय सिंह दामनिया जी की प्रस्तुति इन्हें काफ़ी प्रभावित किया और सुगम संगीत में मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह एवं चित्रा सिंह की शानदार गजलें जो सुनाई गई इस केंद्र द्वारा काफ़ी अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और देखिए, आकाशवाणी का तो ये काम ही है राजेश जी कि नई नई प्रतिभाओं को मौका देना और उन्हें लेकर आना, और आकाशवाणी ने हमेशा अपने मंच पर ऐसी कई प्रतिभाओं को लाकर लोगों के सामने पेश किया है। तो इस दिशा में ये जो आपका प्रयास था कि आकाशवाणी आप वहाँ पे गए यूनिवर्सिटी और वहाँ से आप सजल जैन को लेकर आए और उनको एक मौका दिया, ये बाकी बहुत प्रशंसनीय काम है और इससे युवाओं में एक नए जोश का भी संचार होगा और आकाशवाणी के प्रति उनकी रुचि और बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, और पत्रकारिता के चूंकि विद्यार्थी हैं, इसलिए इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने में
1: बिल्कुल
0: उन्हें काफ़ी सहायक मिलेगा जी। और यह उनके लिए एक प्रथम सीढ़ी थी।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे दुर्गेश नागनपुरे जी लिख रहे हैं कि आदरणीय राजेश पाठक जी और बाथम जी, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र में हूं और आपका कार्यक्रम है मोबाइल ऐप पर लाइव सुन रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थल हैं। प्रमुख आकर्षण में सिखों का प्रसिद्ध हजूर साहिब, सिखों के 5 तख्तों में से जो एक है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नांदेड़ किला, सहस्र कुंड जलप्रपात और कंधार किला भी शामिल है। और आगे इन्होंने लिखा है, नांदेड़ स्थित सचखंड गुरुद्वारा यहाँ आने वाले पर्यटकों के आकर्षक केंद्र है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राज्य सरकार ने इसे पवित्र शहर जो है घोषित किया है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी भावना व्यक्त किया है। देखिए, ये भी रोचक जानकारी है। ये जानकारी सुनकर उस क्षेत्र में इनके दर्शन करने के लिए हमारे दूसरे श्रोता भी अवश्य ही ललायित होंगे।
1: बिल्कुल, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी अनछुई जगह हैं जहाँ पर जानकारी के अभाव में लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब जानकारी मिलती है उस विषय में तो अक्सर लोग जाने की तैयारी करते हैं और जाते भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अपने देश को करीब से देखने का एक अच्छा मौका भी है
0: जी। और आगे श्रीमाली जी ने लिखा है, 22 मई को बड़वाह सनावत के रेडियो श्रोता भी आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मनाए जा रहे हैं। और सिनेमाले जी, हम आपको वादा करते हैं कि जब हम 22 मई को यहाँ विविध भारती और प्राइमरी चैनल में 10:10 से 12 बजे तक हम विभिन्न देश और विदेश के सभी श्रोताओं को जब जोड़ेंगे, तो अवश्य ही हम उम्मीद करते हैं कि आप जो मना रहे हैं आपको भी जोड़ेंगे, और दूसरे श्रोता भी जो सुन रहे हैं वो भी अगर मना रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं और अपना विचार साझा कर सकते हैं।
1: और प्रवीण श्री माली का मेल भी इन्होंने हमें भेजा है, और इसमें भी सबसे पहले तो उन्होंने 22 मई को आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस जो मना रहे हैं हम लोग, उसके लिए इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, और साथ ही इन्होंने बोला है कि 12 मई को वसुंधरा कार्यक्रम के अंतर्गत जल है तो कल है विषय पर धर्मेंद्र श्रीवास्तव से ब्रह्म प्रकाश जी की चर्चा इनको बहुत अच्छी लगी। 13 मई को इन्होंने कार्यक्रम युवाणी सुना जिसमें कंगना शीर्षक पर गीतों को सुनवाया गया था। 15 मई को परिक्रमा सुना, कार्यक्रम बहुत पसंद इनको आया जिसे मुकाम ने प्रस्तुत किया था। 17 मई को योग निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत गर्मी और लू के प्रकोप से बचने के लिए जो उपाय इन्हें बताए गए थे इन्हें सुनकर अच्छा लगा, और इन्होंने उनको अपनाया भी और कई लोगों को इन्होंने बताया भी कि इस तरह से आप गर्मी से कर सकते हैं। 18 मई को गुड मॉर्निंग इंदौर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर सभी महानुभावों के विचार इनको सुने और उनको बहुत अच्छे लगे, चॉइस टाइम कार्यक्रम, और इन्होंने कई कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है। और इन्होंने और एक बात लिखी है कि आकाशवाणी की 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, कलियों की तरह खिलती रहे, फूलों की तरह महकती रहे, हमारी बस यही तमन्ना है कि आकाशवाणी दिन रात चौगुनी तरक्की करती रहे। इन्होंने इस विषय पर अपनी जो मन की बातें हैं इन्होंने वो लिखी, साथ ही में ये MH हॉटलाइन, युवाणी कार्यक्रम, ग्राम लक्ष्मी, वंदना, चिंतन, श्री राम चितमानस गान, ये सभी कार्यक्रम सुनते हैं। उनका कहना है कि सुबह जब होती है 5:51 से ही हम आपका रेडियो खोलकर बैठ जाते हैं, और फिर हमारी दिनचर्या जो 11 बजे तक ये लगातार सुनते हैं, उसके बाद दिन में इनके जो नित्य कर्म है वो उन काम कार्य करते रहते हैं, लेकिन रेडियो उनका बजता रहता है, और शाम की सभा जैसे स्टार्ट होती है फिर रेडियो लेके बैठ जाते हैं, तो ये इनका समर्पण है रेडियो के प्रति।
0: जी, हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः बता दें कि आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष हैं
1: जी,
0: और हमारा केंद्र जो है 71वां स्थापना दिवस मना रहा है। 22 मई 1955 को हमारे केंद्र की स्थापना हुई थी और 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो पूरे मध्य प्रदेश में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एकमात्र केंद्र जो था हमारा आकाशवाणी इंदौर केंद्र था। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं सोहन जोशी, हरमिंदर चावला जी, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी बैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, और अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जय जयवंटी कैबट जी, और खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार ढावर जी। ये अभी अभी इन्होंने सुना है कि आज मधुमक्खी दिवस है, तो इन्होंने भी ढेर सारे शुभकामना दिया है। और देखिए, मधुमक्खी से जो हमें शहद प्राप्त होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, और स्थापना दिवस की जो है अग्रिम इन्होंने बधाई दिया है। इसी प्रकार आकाशवाणी इंदौर जो है हम श्रोताओं पर प्रेम की वर्षा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जोशी जी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और अखिलेश जी, हमारे पास एक और पत्र प्राप्त हुआ है भेरूलाल बख्तरिया, धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये आजकल भ्रमण पर निकले हुए हैं और इन्होंने लिखे हैं आकाशवाणी इंदौर की 71वीं स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में 22 मई जो है 1955 को स्थापित होकर प्रथम आकाशवाणी केंद्र का गौरव पाया और आप श्रोताओं से संवाद करने के लिए इस दिन एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने जा रहा है, इसे तो इन्होंने बधाई दी है। और अभी हम आपका कार्यक्रम जो है मैहर में शारदा मैया के दर्शन करते हुए ये सुन रहे हैं। और देखिए, इन्होंने एक क्लिपिंग भी भेजी
2: है।
1: तो इस तरह से जो हमारे श्रोता जो है इस केंद्र का जो आनंद ले रहे हैं, ये अपने आप में अनूठा है।
3: जी बिल्कुल।
1: और यही जो सजीव प्रसारण की जो वास्तविकता है, जो श्रोताओं के दिल तक जो यह केंद्र उतर गया है, यही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और अगला मेल हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, भेजने वाले हैं लाबरिया बैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रेमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम और उनके परिवार के सदस्य। आप सभी का कहना है कि आपका पत्र कार्यक्रम पुरस्कृत कर गांवों को मेरा सादर नमस्कार। और इन्होंने सबसे पहले स्थापना दिवस के बारे में आकाशवाणी इंदौर को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि 13 मई को आपका पत्र कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार 17 मई को हमारे मेहमान कार्यक्रम सुना, उसमें मुकाम जी ने डॉक्टर राजेश के साथ बातचीत की, सुनकर इनको बहुत अच्छा लगा। उनकी प्रस्तुति के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखा है, क्या चिट्ठी मीडिया कार्यक्रम शुरू करेंगे जो कि यहाँ श्रोताओं के पत्रों पर आधारित है। पूर्व में प्रति रविवार को शाम 6 बजे से ये कार्यक्रम FM विविध भारती पर प्रसारित होता था, इसे पुनः शुरू किया जाए।
1: जी, हमने आपका सुझाव नोट कर लिया है। और देखिए, श्रोताओं पर केंद्रित और उनसे जो हम संवाद करते हैं, इस पर केंद्रित जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इसको श्रोता जो है तहे दिल से पसंद करते हैं। और आगे नवग्रह नगरी तिलक पथ खरगोन से लिखने वाले हैं मनीष निमारे, शीतल निमारे, खुशी और दिव्यांश निमारे जी। ये लिखते हैं, केंद्र के स्थापना दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए इन्होंने लिखा है कि लाइव में बहुत मुश्किल से लगता है, लेकिन बिल्कुल कोशिश करें, बिल्कुल लग जाएगा। 22 मई स्थापना दिवस के समय पंडित मोतीलाल जी बरोदिया से श्री कृष्ण सावनेर, लक्ष्मी नारायण पवार जी, सुखदेव कैलाश पवार जी, बंधु सुमन निवारे जी आदि से लेकर आज युवा पीढ़ी में निखिल बरोदिया तक मेरे ननिहाल की ओर से भी हमने काफ़ी योगदान दिया और काफ़ी लोग सुनते रहे हैं। नंदा जी, बहरा जी और काना जी, स्वतंत्र कुमार ओझा जी आदि वीर व्यक्तित्व ने हमारे अपने ननिहाल में उन्मुक्तता से भेंट का आनंद लिया, जिस पर आज गर्व होता है। स्थापना दिवस की खुशी जो है हमें सबसे अधिक है। और अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुतियों के साथ अच्छे गुणी श्रोताओं के चलते विभिन्न संस्थाओं के बावजूद आज भी रेडियो लोकप्रिय है, इन्होंने ऐसा लिखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे दुर्गेश नागनपुरी जी लिखते हैं, राजेश पाठक जी, हम सबसे ज़्यादा आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित युवानी कार्यक्रम सुनते हैं, क्योंकि युवानी कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे सेगमेंट होते हैं, अनुरोध गीत होता है, बुधवारीय पत्र उत्तर, और अगर ये हो बुधवार को ये पत्रोत्तर सुनना चाह रहे हैं तो कृपा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने आपका सुझाव नोट कर लिया है। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है रंजीत सिंह जी का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने व्हाट्सएप किए हैं और वहाँ जो है हमारा कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं। लिख रहे हैं, 22 मई 1955 से आकाशवाणी इंदौर गीत संगीत और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का पिटारा जो 22 मई को 71वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, इस दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन प्रस्तुत करते हैं। हम तो कहेंगे कि इस दिन 10-10 दे और 12 बजे तक जो लाइव प्रोग्राम जो चलेगा उसमें भी आप भाग लीजिए, फोन लगाइए और हमारे साथ घूमिए। हम सभी श्रोतागण मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और आनंदित भी होंगे।
3: और देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि लाइफ में फ़ोन नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है। अगर फ़ोन नहीं लगे तो फिर जिनकी बात हो रही होती वो श्रोता कौन है। बस प्रयास करने की बात है, आप दिल से प्रयास कीजिए और जुड़िए। और देखिए, 90 वर्ष का जो यात्रा

0: रेडियो की, उसमें आप भी शामिल होइए।
1: और देखिए 90 वर्ष के अवसर पर हमने जो पुराने जो सेवानिवृत्त उद्घोषक जो हो गए हैं उनको भी निवेदन किया है कि आप आए और अपने जमाने के जो है यादें ताजे करें और अपने श्रोताओं के साथ रूबरू हों। क्योंकि देखिए ऐसे मौके पर जब आकाशवाणी के 90 वर्ष के प्रसारण इतिहास हम दोहरा रहे हैं
0: जी।
1: और ऐसे अवसर पर हम अपने जो भूतपूर्व जो जाने माने उद्घोषक भाई बहन है उनको अगर याद न करें हम अपने श्रोताओं के बीच, तो अखिलेश जी ये भी एक नाइंसाफी होगी।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम ही अधूरा रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रंजीत सिंह जी लिखते हैं 22 मई 1955 से आकाशवाणी इंदौर गीत संगीत और मनोरंजन के साथ ज्ञान का पिटारा का जो ये कार्यक्रम जो करने जा रहा है काफ़ी अच्छा ही होगा और हम भाग भी लेंगे। और 16 मई 1926 को 6 बजे विकसित होता भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता सुना, विषय था कृषि प्रौद्योगिकी में ड्रोन की भूमिका। इस विषय पर कृषि में ड्रोन का महत्व और समय की बचत और लागत में कमी पर चर्चा की गई, हम सुना, काफ़ी अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक था। और एक छोटा सा इन्होंने सुझाव दिया है, 1990 के दशक से 2000 के बीच का अलग से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रखें, कार्यक्रम का नाम हो गीत बहार। क्या ख्याल है आपका?
0: बिल्कुल, देखिए रेडियो में आकाशवाणी इंदौर की तो ये खासियत रही है कि हर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और नया करने के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे पेश करते हैं जो हमारे श्रोताओं के दिलों को छू जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और यही जो खासियत रही है आकाशवाणी की, इसी खासियत के साथ आज आकाशवाणी 2 दिन के बाद अपने 71वें जन्मदिवस में प्रवेश कर रही है और ये सब श्रोताओं का प्रेम और उन उत्साह और उनका समर्पण यही एक कारण है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आगे लिखते हैं कि आज सुबह की सभा में वंदना चिंतन और खेती की बातों में कार्यक्रम में पशुओं को गर्मी से देखभाल विषय पर जानकारी जो दिया गया काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और राजेश जी अगला जो मेल है
1: जी
0: वो मिला है हमें घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया और प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया का। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि 71वें स्थापना दिवस की अग्रिम हार्दिक बधाई। 22 मई को सजीव फोन इन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर सभी श्रोताओं को बताइए और श्रोताओं को कितनी देर यानी समय मौका मिलेगा इसमें बात करने का ये भी बताएं ताकि जुड़ने वाले श्रोता सारगर्भित तथ्यपूर्ण बातें साझा कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता जुड़ सकें, इसके क्या प्रयास किए गए हैं?
1: इसके काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं, अधिक से अधिक श्रोता को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और समय जो है ये 10:10 से
0: जी
1: 12 बजे तक विविध भारती और प्राइमरी चैनल दोनों में हम श्रोताओं से रूबरू होंगे और हम आपको एक बार पुनः सुना दें।

शब्दाक्षरों और सुरों के अनूठे संगम को समेटे आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष की सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं शुक्रवार 22 मई सन 2026 को सजीव फोन इन प्रोग्राम में सुबह 10:10 से 12 बजे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी से अपने 90 वर्ष के सफर का जिक्र कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर की श्रोता 0731 कोड अवश्य लगाए। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और विविध भारती चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक से, अपने समय के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय, देविंदर कौर मधु और संतोष जोशी से। इस कार्यक्रम में उत्साह है, उमंग है और ढोल की थाप है, तो जरूर फोन लगाइए। शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सुबह 10:10 से

0: तो हम समझते हैं पंचोलिया जी का जो है जिज्ञासा बिल्कुल शांत हो गई होगी, और हम आपको और याद दिला दें कि 10 बजे से हम दीप प्रज्वलन करेंगे और 10-10 से 12 बजे तक दोनों चैनल पर हम अपने श्रोताओं से रूबरू होंगे, और पूरा दिन भर 11 से 5 बजे तक रंगोली उत्सव मनाया जाएगा। हम अपने जो स्टाफ के जो सदस्य हैं, जो उद्घोषक भाई बहन हैं, सभी के साथ, और आगे जो है केक कटिंग वगैरह, लघु नाटिका,
1: मतलब पूरे दिन उत्सव का माहौल रहेगा,
0: उत्सव का माहौल, और सामूहिक ढोल की थाप पर सभी लोग नृत्य करेंगे, और बिल्कुल हमारे जो श्रोता आनंद लेना वो भी आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये तो अच्छी बात है कि आकाशवाणी का स्थापना दिवस समारोह इस बार बहुत ही धूमधाम से आकाशवाणी के परिसर में मनाया जा रहा है, और ये श्रोताओं के
0: जी, और हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेरे, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी चौहान, सचिन कटारिया जी भी लिखे हैं कि दोनों का कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर परिक्रमा का भी बहुत कार्यक्रम काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और घड़ी की सुई जो है अब इशारा कर रही है आपसे विदा लेने की, तो चले, नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
5: India is accelerating towards universal health coverage.
6: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
5: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा

0: अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
2: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
3: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट

0: हैं, राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding.

0: Ship for the Indo-Mediterranean. The article says, Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. US clears Apache how its support services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the Statesman. Top court, not for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says, The real question, OpenAI's win Musk's. Ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है. आइए सुनते हैं फिल्म संगीत. श्रोताओं, गर्मी के दिन हैं और गर्मी के दिन में भी तपस भरे दिन हमारे पूरे दिन की हालत खराब कर देते हैं. आजकल जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, ऐसे तापमान में बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है. निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हम ये काम करें या ना करें, क्योंकि जिस तरह से सूरज देवता अपनी तपिश हमें दिखा रहे हैं, हम पर आग बरसा रहे हैं, इस मौसम में काम टालना बेहतर होता है. अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, और अगर निकलने का मौका आपको पड़े भी तो बहुत सारे प्रयास जो कि अब बताए गए हैं, हमें उन पर अमल करना चाहिए. उसके बाद ही हमें बाहर निकलना चाहिए, यानी कि हमारा सर एक अच्छे टॉवल से बंद होना चाहिए और घर से पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकलें. खाली पेट तो बिल्कुल ना निकलें, कुछ ना कुछ खाकर निकलें. और जब आप बाहर रहें उस दौरान कोशिश करें कि कुछ ठंडा पेय पदार्थ ना पिएं, क्योंकि जैसे ही आपने ठंडा पेय पदार्थ या पानी भी पी लिया तो फिर लू लगने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं.
3: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. हो ठंडे ठंडे पानी से

0: कह दो पड़ोसियों से,
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया,
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।
1: मम्मी को तो डैडी से

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
2: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं बॉम्बे टू गोवा फिल्म से, आशा भोसले और साथियों की आवाज है। श्रोताओं, इस उमस भरी गर्मी में नहाना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को नहाना अच्छा लगता है। कई बार तो लोग दो दो बार नहाते हैं और नहा के गर्मी के मौसम से, जो जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, उससे अपने आप को थोड़ा सा तरोताज़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरोताज़ा होने के बीच में ये मत भूलिए कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है और हम दो बार नहाने के लिए कई लीटर पानी बहा देते हैं। कोशिश करें कि इन दिनों शॉवर का उपयोग ना करें, बाल्टी से नहाएं। और बाल्टी से नहाते वक्त ये ज़रूर सोचिए कि हमारे आसपास कई लोग हैं जिन्हें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है या फिर इस्तेमाल करने लायक पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हम पानी की बर्बादी करेंगे तो उन्हें पानी कैसे मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे हमारे पास तो भरपूर पानी है तो हम क्यों ना उपयोग करें। जी बिल्कुल कीजिए, आपके पास भरपूर पानी है, लेकिन पानी की बचत ही आपका बचाया हुआ पानी किसी और के काम आ सकता है, क्योंकि हमारे घरों में नलों के माध्यम से पानी आता है। अगर आपके घर में आपकी व्यक्तिगत बोरिंग है तो उससे पानी आता है। हो सकता है कि आप 2-4 बाल्टी पानी नहीं निकालेंगे तो वो पानी बोरिंग जमीन के रास्ते किसी और के काम आएगा। अगर हम सभी लोग सोचेंगे तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम इस समस्या से निपटारा कर सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने गाड़ियों पर पाइप लगाकर गाड़ी को साफ करते हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि गंदी गाड़ी लेकर कौन जाए। जी बिल्कुल मत जाइएगा, पर गाड़ी को बाल्टी में कपड़े से पोंछ कर भी आप गाड़ी को साफ कर सकते हैं। तो ऐसे कई बाल्टी पानी आप बचा सकते हैं। जब हम पानी बचाएंगे तो पानी हमारा उपयोग होगा, हमारा कम पानी खर्च होगा, और जब कम पानी खर्च होगा तो कई लोगों के काम वो पानी आ सकता है।

पिलाई ठंडा पानी, भीगे मेरी जवानी, फिर क्यों जले मेरा तन, क्यों मैं हुई दीवानी। अब मैं समझी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: शुद्ध और ठंडे पानी से नहाना जितना लाभदायक है, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करते हैं, पानी में आप ज़्यादा रहते हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मी से निजात पाने के लोग स्विमिंग पूल का सहारा लेते हैं और स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं और घंटों उसमें नहाते रहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसमें इस्तेमाल होने वाला कई केमिकल्स उसमें कई बार इस्तेमाल करते हैं पानी की सफाई के लिए, तो वो पानी हमें नुकसान हम कर सकता है। हमारे खास कर से ऐसा पानी हमारे बालों के लिए नुकसानदायक होता है, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है या फिर आपको त्वचा रोग कई तरह के हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें जो आप गर्मी से बचना चाह रहे हैं तो उसके लिए और भी कई उपाय हैं, उनको अपनाइए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
2: चलो, गर्मी में न सिर्फ हम पानी का बचाव कर सकते हैं बल्कि एक चीज का और बचाव करें, वो है अपने शरीर का, क्योंकि शरीर इन दिनों बहुत कुछ ऐसा खाने में आता है जिससे हमारा शरीर को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे समय में गर्म मसालेदार खाना, तेज़ मसालेदार खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, बाहर का खाना, इन सब चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। इन दिनों हो सके तो हल्का फुल्का खाएं और पेय पदार्थ ज़्यादा अपने खान पान में शामिल करें, क्योंकि इन दिनों देखा जाता है कि जैसे ही हम गर्म चीज़ें खाते हैं हमारे पेट की गर्मी बढ़ जाती है, तो ऐसे में हमारे शरीर का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें बीमारियों को आमंत्रित नहीं करना है। और बाहर जो खुले में रखा हुआ खाना है, कई बार हम सड़क के किनारे कुछ खा लेते हैं तो अक्सर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसका एक सीधा सा कारण ये होता है कि उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, तो उसका भी हम बचाव करें और घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त आप सुरक्षा ज़रूर अपनाएं। और हो सके तो बाहर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय आप नज़रअंदाज करें। बहुत ज़रूरी है तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप जाएं तो बेहतर। और इन दिनों अपने शरीर को ठंडा करने के लिए प्याज ज़रूर, कच्चा प्याज इस्तेमाल करें और उससे आपको लपट, जो लू जिसको बोलते हैं, लगने के चांसेस कम रहते हैं। तो प्याज का सेवन इन दिनों ज़्यादा करें। और सबसे अच्छी बात, कैरी का पना जो कि कुदरत ने हमें दिया हुआ है, उसको पना में आप पना को इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तू का उपयोग करें, पेट भी भरा रहेगा और कुछ ज़्यादा चीज़ें खाने का मन भी नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे सलाह लीजिए, उनसे बातें कीजिए, वो बहुत सारे उपाय हमें बताएंगे। और इस भरी गर्मी में अपने आप को सुरक्षित रखिए, ध्यान रखिए, फिर देखिए गर्मी का महीना भी गुजर जाएगा और फिर जल्द ही बारिश भी आएगी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता शर्मा के गाए हुए लोकगीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे ममता शर्मा के गाए हुए लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं गुरशा दुबे।

0: थोड़ा अपने मोबाइल दे देना।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

गुरुशा दुबे की गाई हुई रचनाएं अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में भरत तिवारी का एकल तबला वादन, ताल 3 ताल।

धागिन्ना धाक तिट्ट तिरगिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंगड़ धागिट तिंग

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: बुरहानपुर जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर जिले में हमारी जनगणना हमारा विकास के संदेश के साथ नागरिकों को जागरूक करने, जन सहभागिता सुनिश्चित कराने और जनगणना 2027 को सफल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जनगणना प्रचार रथ के माध्यम से जिले में नागरिकों को जनगणना के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। प्रचार रथ नागरिकों को वीडियो फिल्म एवं जन जागरूकता संदेशों के जरिए जनगणना प्रक्रिया की जानकारी दे रहा है। बुरहानपुर में प्रस्तावित निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से बीते दिनों चर्चा की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास के नए क्लस्टर बनाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने तैयारियों का प्रेजेंटेशन देकर भरोसा जताया और उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित किए, जिससे साझेदारी पर आधारित विकास रणनीति पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को बुरहानपुर जिले के जनप्रतिनिधि और आमजन अमल में लाए हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सुबह बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से महानगरी एक्सप्रेस पकड़कर खंडवा के लिए रवाना हुए। गांव बोहरडा से स्टेशन तक ईवी कार से पहुंचे और फिर रेल यात्रा की। उन्होंने निजी गाड़ी छोड़कर सार्वजनिक यातायात अपनाकर ईंधन बचत का संदेश दिया है। बुरहानपुर जिले की खकनार पुलिस ने यातायात सुरक्षा अभियान के तहत थाना प्रभारी अभिषेक जाधव और उनकी टीम ने शादी समारोह में पहुंचकर दुल्हा दुल्हन को हेलमेट भेंट करने का अभियान शुरू किया। ऐसे ही क्षेत्र की दर्जनों शादियों में पहुंचकर पुलिस बारातियों को यातायात सुरक्षा का संकल्प दिला रही है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी डैम रोमांच और रेस्क्यू की असली पाठशाला बन गया है। आपदा प्रबंधन के 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन दूसरे सत्र में SDERF, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के 32 जवानों ने पानी के बीच जीवन बचाने की बारीकियां सीखी। तेज धूप और लहरों के बीच जवानों ने तैराकी, बोट संचालन, डूबते व्यक्ति तक फुर्ती से पहुंचने और सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक का अभ्यास किया। दूध की धार बढ़ाने के उद्देश्य से क्षीरधारा योजना के तहत पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत टीकाकरण, नस्ल सुधार और आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर बुरहानपुर जिले में पशुपालन को रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी क्षीरधारा योजना ने जोर पकड़ लिया है। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पशुपालन विभाग की टीमें अब गांव-गांव दस्तक दे रही हैं। वहीं बांझपन से जूझ रहे पशुओं के लिए विशेष शिविर, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान से बेहतर नस्ल तैयार करने पर खास फोकस किया जा रहा है। बुरहानपुर का करीब 195 वर्ष पुराना स्वामी नारायण मंदिर इन दिनों पुरुषोत्तम मास में भक्ति से सराबोर है। यहाँ रोजाना प्रभु लक्ष्मी नारायण देव का सैकड़ों लीटर दूध, दही, केसर, पंचामृत और पवित्र जल से अभिषेक हो रहा है। मान्यता है कि सन 1882 से यह परंपरा बिना रुके चली आ रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए बुरहानपुर के लालबाग रेलवे स्टेशन पर महिलाओं द्वारा प्रतिदिन रेल यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की समाजसेवी महिलाएं रोजाना समूह बनाकर स्टेशन पहुंचती हैं और ट्रेनों में सवार यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर सुकून का एहसास कराती हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के चयनित जनजाति बाहुल्य 116 ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर विशेष संतृप्ति शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में शासन की विभिन्न योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से गांव-गांव कृषि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम दवाटिया में आयोजित कृषि चौपाल में किसानों को शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जन जागृति संस्था बुरहानपुर द्वारा नर्सेस डे के उपलक्ष्य में बुरहानपुर क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में कार्यरत महिला एवं पुरुष नर्सेस का सम्मान समारोह जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. LDS फुनकवाल, जनजागृति संस्था के संरक्षक एवं संस्थापक महेंद्र जैन और संस्था अध्यक्ष डॉक्टर किरण सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने टीएल बैठक में बीते दिनों निर्देश दिए कि नॉन अटेंडेड शिकायतें पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने, जमीनी स्तर पर समस्याओं की जानकारी लेने और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग को अवैध उत्खनन तथा परिवहन के विरुद्ध संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सजीव फोन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: सभी श्रोताओं को अखिलेश बाथम का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन का आगाज कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो श्रोता हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर उन्हें इस कार्यक्रम के फोन नंबर्स नहीं पता, उनके लिए हम उनको बता दें कि हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224 और इंदौर का एसटीडी कोड नंबर है 0731। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ हमारे कौन से श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो
1: सर। हेलो,
0: हाँ जी
1: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मूवी का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे और इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है मुझे।
0: आप मुझे अच्छे लगने लगे,
1: जी
0: ठीक है। ये नई वाली मूवी है पुरानी वाली
1: है? है तो पुरानी, बट मतलब ऋतिक रोशन हमेशा पटेल।
0: हाँ, लेकिन ये दो फिल्म है, एक बहुत पुरानी है, एक ऋतिक रोशन
1: पुरानी है, एक थोड़ी सी।
0: हाँ, इसीलिए हालांकि अब 10-12 साल अगर हो जाए तो वो भी पुरानी चीज हो जाती है।
1: हाँ,
0: लेकिन इसके पहले भी एक फिल्म है, इसलिए हमने आपसे ऐसा पूछा।
1: जी
0: रानू जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं हाउस में करूँ।
0: जी
1: जी,
0: तो बताइए बताइए बताइए। बस ये पूछना चाहते हैं कि रेडियो से कितना पुराना नाता है आपका?
1: ज्यादा नहीं, बट 10 साल हो चुके हैं।
0: अच्छा, तो इंदौर आकाशवाणी सुनते हैं या फिर अन्य स्टेशन भी सुनते हैं?
1: मेरा फेवरेट तो भोपाल है, बट मैं ना इंदौर भी सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: और मुझे फोन इन प्रोग्राम अच्छे लगते हैं।
0: जी जी।
1: और आपके जो अनाउंसर आते हैं उनसे, मतलब कोई कोई अनाउंसर तो इतने अच्छे लगते हैं कि बात किए जाओ किए जाओ। आपसे फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है।
0: जी, वैसे मैं एमएच हॉटलाइन, ये पहले टाइम आपसे बात हो रही है। विविध भारती में हेलो विविध भारती भी करते हैं, पर शायद हो सकता है कि जिस समय आपने फोन लगाया हो मेरी ड्यूटी ना हो।
1: विविध भारती का मुझे पता नहीं टाइमिंग फोन इन प्रोग्राम का आता है मुझे।
0: जी नहीं, विविध भारती पे भी फोन इन प्रोग्राम आता है और वो हर मंगलवार को 11 बजे से शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है।

0: नहीं नहीं बिल्कुल करते रहिए। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि बातचीत करने का मौका मिलता है, और उस समय जिस समय आप सोचते हैं कि हमें ये गाना सुनना है, वो गाना भी आपको सुनने को मिल जाता है। यूं तो रेडियो पे दिन भर गाने आते हैं।
1: मुझे ना सच बात तो बात करना ज्यादा पसंद है, गाने तो पता है मोबाइल पे सभी लोग सुनते।
0: तो अब क्या खाने पीने का शौक है या सिर्फ खाने का या बनाने का है?
1: मैं बनाती हूँ बट खाने में थोड़ा ज्यादा शौक है। देखो मुझे ना गुलाब जामुन पसंद है सबसे ज्यादा।
0: पर अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी सीजन में क्या स्पेशल बनाते हैं?
1: स्पेशल तो देखो वही पुराने जमाने की चीज रहती है, मेरी दादी के जमाने की सत्तू रहता है, सत्तू और कैरी का पना रहता है, और कोल्ड ड्रिंक तो कभी कभी पीते हैं। वैसे वो ठंडा से थोड़ी सी देर के लिए रहता है, बॉडी को तो वो गर्म ही करता है।
0: पर देखिए तो, जो आपने बोला ना हमारे दादी नानी के, उनके जमाने के या उनके बताए हुए नुस्खे, जैसे कि जैसे आप सत्तू तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीजें क्या होती हैं कि ये एकदम से हमें ठंडे ना लगे, लेकिन हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को अंदर से ठंडा जरूर करते हैं।
1: और दोपहर के समय वैसे तो कहीं जाते नहीं है, कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, लेकिन जाना पड़ता तो प्याज जरूर रख के ले जाते हैं।
0: बिल्कुल, और प्याज खाना भी चाहिए।
1: करती हूँ
0: रखने के साथ साथ प्याज भरपूर मात्रा में खाना चाहिए।
1: जैसे अब आप आए हैं, अभी ठीक है आप आए हैं, बट दोपहर में जाएंगे तो लू से बचने का अच्छा तरीका है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे अच्छा तरीका ये भी है, एक कॉटन का कपड़ा रखिएगा, उसको लपेट लीजिएगा कानों को अच्छे से, और जो हमारा सिर जिसको कपाल बोलते हैं, तो उसको अगर आप ठंडा रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और पना की बात हुई, सत्तू की बात हुई, छाछ को भी मत भूलिएगा।
1: हाँ, छाछ तो हमारे यहाँ पर डे चलता है ना,
0: छाछ बहुत लाभदायक है, बल्कि हम तो ये कहेंगे
1: अक्सर, मतलब मेरे यहाँ क्या मैं बना लेती हूँ, तो मतलब मैं रोज बनाती हूँ, मार्केट से भी नहीं लाती हूँ, घर पे ही बना लेते
0: तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और इसमें एक चीज और कीजिएगा कि घर में जो भी मेहमान आए, चाय मत पूछिए, एक बार छाछ जरूर पूछिए।
1: अरे सर एक बात बोलूं, मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको छाछ नहीं चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए, बट उनको चाय चाहिए। हमारे मालवा, जैसे मैं तो गुनाह की हूँ, मेरा मायका गुनाह है।
0: अच्छा अच्छा।
1: लेकिन ना इधर वो ये जो मालवा क्षेत्र है ना, इधर चाय चाहिए। देखो सुबह मैंने 5 बजे बना के पिला दी, 9 बजे उनने खुद बना के पी लिए, और अभी पता 4 बजे की चाय फिर बना के दूंगी, वो खुद भी बना।
0: असल में चाय की जो बात आपने की है, ये क्षेत्र विशेष की बात नहीं होती है, ये चाय के शौकीन आपको हर जगह मिल जाते हैं, और जिनको शौक है, चाय पीने की आदत है, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, उनके सामने आप कोई भी पेय पदार्थ रख दीजिए। आप
1: वो यही बोलते हैं, मेरे को चाय चाहिए बस, और कुछ भी नहीं।
0: खैर कोई बात नहीं, जिससे आत्म संतुष्टि मिले वो काम कीजिए। और चलिए अभी आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी आपके गीत सुनने के बाद, जो आपने पसंद किया, हम गीत आप तक पहुँचा रहे हैं।
1: सर हेलो।
0: हाँ जी,
1: ये सर आप मतलब ये सॉन्ग आपको डेडिकेट रहेगा, और एक मेरी बहन नंदनी है जो कि सागर में रहती है, उसके लिए।
0: चलिए आप ये गीत सुनिए
1: जी। नमस्ते।

0: हेलो हेलो
1: जी
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं आपने राकेश बात्री बोल रही हूँ वल्लभ नगर से।
0: जी राकेश जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर वो अलग अलग फिल्म का गाना है, कभी बेकसी ने मारा,
0: राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म में।
1: जी राजेश खन्ना किशोर कुमार जी का गाया हुआ है सर।
0: जी जी बिल्कुल, इसमें लता मंगेशकर की आवाज भी आप सुनेंगे।
1: जी जी जी,
0: तो क्या करते हैं सर?
1: सर मैं तो अपना ये प्रेस का काम करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी कैसा काम काज चल रहा है इन दिनों?
1: ठीक चल रहा है सर अभी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
1: और अभी आपका 71 वर्ष स्थापना दिवस मना रहा है आप?
0: जी 22 तारीख को आकाशवाणी इंदौर अपना 71वां जन्मदिन मना रहा है।
1: आपका फेसबुक के ऊपर कार्ड देखा सर मैंने।
0: जी जी जी जी जी,
1: पूरा प्रोग्राम देखा
0: मैंने। जी जी जी, और 22 तारीख को जो भी प्रोग्राम यहाँ पे पूरा 2 घंटे का स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें फोन सजीव फोन इन कार्यक्रम है स्पेशल उस दिनों का, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और कितने सालों से आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, अपने अनुभव के बारे भी आप साझा कर सकते हैं।
1: जो नंदा जी बेहरा जी का,
0: जी जी जी जी जी,
1: जब से मैं जुड़ा हूँ सर,
0: तो अपनी जो इतने दिनों की आपकी रेडियो के साथ, इंदौर आकाशवाणी के साथ आपके जो संबंध रहे हैं, मधुर संबंध रहे हैं, तो उस यात्रा का वर्णन भी आप कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, कुछ और यादें जुड़ी हुई हों आपकी आकाशवाणी से, उनके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो
1: कौन सर बोल रहा है?
0: मैं अखिलेश बाथम बोल रहा हूँ।
1: अच्छा, बाथम जी बोल रहा
0: हूँ। जी जी,
1: तो ये आपको बहुत धन्यवाद सर।
0: जी जी जी,
1: सुनने वालों को भी।
0: जी जी, और आपका गीत एकदम तैयार है आप तक पहुंचने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: ओके सर।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं इंदौर कोहिनूर कॉलोनी से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जीनत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, हिना
0: बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पिक्चर का सुनना चाहूंगी। जी,
0: हिना फिल्म का
1: देर
0: गाने के बोल बताइए।
1: ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे। जीनत जी क्या करते हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ सर।
0: अच्छा, तो विविध भारती और आकाशवाणी इंदौर कितना सुनते हैं?
1: दिन भर चलता है या इंदौर का भी चैनल
0: अच्छा,
1: रेडियो।
0: तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको हमारे ज़्यादा अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को फोन इन कार्यक्रम अच्छा लगता है। हेलो डॉक्टर,
0: जी
1: ये भी सुनती हूँ मैं
0: जी जी
1: और फोन भी लगाती हूँ उसमें।
0: हाँ, चलिए अच्छी बात है। और आपका गीत

0: हेलो हेलो।
1: आप फोन करके सुने अखिलेश
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, नर्मदे हर
0: जी नमस्कार।
1: कवर कॉलोनी बड़वा से बोल रहा था।
0: हाँ मैं यही कहूँ, आवाज जानी पहचानी लग रही, प्रवीण शिमाली।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं।
0: हाँ आप नियमित श्रोता हैं और आपसे समय समय पर फोन से बात भी होती रहती है, लेकिन आपके पत्र तो हमेशा मिलते ही रहते हैं
1: जी, अखिलेश जी।
0: जी। बताएं सबसे पहले तो कौन सा गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे।
1: अच्छा, ऐसा कुछ है
0: जी
1: तो मैं जो गीत सुनना चाहता हूँ, थोड़ा एक गुनगुनाना चाहता हूँ। मैं
0: आप गुनगुनाइए, लेकिन फिल्म का नाम पहले हमें बता दीजिए।
1: संबंध फिल्म का गाना है,
0: हाँ
1: चल अकेला।
0: जी चलिए अब आप गुनगुनाइए।
1: तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला, चल अकेला चल अकेला।
0: गीत तो आपने बहुत अच्छा चुना है,
1: जी जी जी जी सर,
0: संबंध फिल्म का गीत है ये,
1: जी जी जी
0: बहुत ही
1: जी जी
0: प्यारा गीत है और एक दर्शन छुपा हुआ है गीत में।
1: जी सर। और सर मैं कुछ कहना चाहूंगा,
0: जरूर जरूर
1: आकाशवाणी अपने अभी 90 वर्ष पूर्ण कर रही है
0: जी
1: और साथ ही मालवा की चैन आकाशवाणी इंदौर 22 मई को अपना स्थापना दिवस मना भी रहा है।
0: जी
1: इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से समस्त आकाशवाणी परिवारजनों, रेडियो श्रोताओं, इष्ट मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयां।
0: आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप श्रोताओं की बदौलत ही रेडियो है
1: जी जी
0: और
1: जी जी
0: आप सभी के बिना ये उत्सव भी अधूरा है,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी जी
0: रेडियो और श्रोता दोनों का
1: जी जी
0: चोली दामन का साथ है।
1: और सर मैं अखिलेश जी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि
0: जी
1: बड़वा सनावत के जो रेडियो श्रोता है, प्रतिवर्ष आकाशवाणी का स्थापना दिवस कई वर्षों से मनाता आ रहा है।
0: अरे वाह बहुत अच्छी बात है।
1: इसी श्रृंखला में 22 तारीख को सनावद में हम लोग मना रहे हैं।
0: और
1: सर
0: आकाशवाणी इंदौर भी और विविध भारती दोनों ही चैनल पे उस दिन
1: जी जी
0: 22 तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग भी शामिल होइए।
1: बिल्कुल
0: और
1: जरूर जुड़ेंगे सर।
0: 71 साल की आकाशवाणी की जो यात्रा है आकाशवाणी इंदौर की, उससे जुड़े आपके अनुभव हों, विचार हों, कुछ यादें हों, उनको
1: बिल्कुल
0: जरूर
1: बिल्कुल
0: साझा
1: सर,
0: कीजिए।
1: इस लोकप्रिय केंद्र द्वारा हम श्रोताओं को नित नए कार्यक्रमों की सौगात दी है और मैं आशा करता हूं कि आगे भविष्य में यह सिलसिला अनवरत जारी रहे।
0: देखिए कोई भी कार्यक्रम, कोई भी स्टेशन जो बनाता है वो श्रोताओं के सुझावों से, शिकायतों के आधार पर ही बनते हैं। आप सभी
1: जी
0: लोग
1: जी जी
0: सजग हैं,
1: जी
0: आप सभी लोग जुड़े रहते हैं, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें पत्रों के माध्यम से मिलती हैं
1: जी
0: और
1: जी जी जी
0: आजकल
1: जी
0: आकाशवाणी इंदौर ने व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा
1: जी
0: जो
1: जी जी
0: सुझाव और शिकायतें आमंत्रित करते हैं उस पर आप लोग लगातार शामिल होते हैं, अपने सुझाव देते हैं किसी कार्यक्रम से संबंधित। जब कार्यक्रम से संबंधित

0: लोग सुझाव अपने देते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो उससे और बेहतर करने की प्रेरणा स्टेशन को मिलती है। और हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग और आकाशवाणी का संबंध ये सालों साल बना रहें, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें मिलती रहें। और चलिए, आपका गीत आप तक पहुंचने के लिए तैयार है जो आपने।
1: सर पुनः शुभकामनाएं सभी जी को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।
1: जी, जी, जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ हेलो, हमें हॉटलाइन
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
0: गुमास्ता नगर इंदौर से अनिल कौचाले। फिल्म
1: जी? बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
0: का नाम है कुर्बानी और गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में, नाजी हसन की आवाज में। 1980 की फिल्म है ये।
1: जी, तो ये कुर्बानी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं? चलिए, आपकी फरमाइश का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हाँ सर,
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी। मैं खरगोन से श्रीमती रचना राजेश खेड़े बात कर रही हूँ।
0: जी रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी। मैं सौदागर फिल्म का है, तेरा मेरा साथ रहे,
0: जी
1: अमिताभ जी और नूतन जी
0: जी तो
1: की फिल्म है।
0: ये गीत जो आप सुनना चाहते हैं, कुछ विशेष है इस गीत में सुनने के कारण?
1: जी सर, मेरे को यह बहुत
0: अच्छा,
1: पसंद है और मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। हाँ,
0: तो दिल की गहराइयों से जुड़ा है। किसके लिए जुड़ा है?
1: मेरे हस्बैंड के लिए।
0: तो इतना बताने में झिझक क्यों रहे हैं आप?
1: मेरे नाम के साथ नाम है ना
0: अच्छा,
1: उनका।
0: इसलिए झिझक रहे हैं आप। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम लोग सुनते थे पुराने जमाने में, नाम नहीं लेते थे तो बस कुछ संकेत कर देते बुलाने के लिए। तो कुछ संकेत रखे हैं आपने बुलाने के लिए?
1: मैं भी क्या करके बात करती हूँ, क्या करके, क्या है मेरा, ये क्या है, सुनिए।
0: और कभी भीड़ में बैठे हो, चार लोगों के बीच में बुलाना हो तो फिर
1: फिर बच्चों का नाम कि तनुज के पापा, हनी के पापा।
0: देखिए, संकेतों से भी काम चल जाते थे और बड़े खूबसूरत तरीके से चलते थे।
1: जी, सही कहा आपने।
0: लेकिन आजकल सीधे नाम लिए जाते हैं।
1: हाँ, वो भी अच्छा तरीका है बोलने का।
0: इसीलिए शायद
1: सामने पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंज हो रहा है, थोड़ा
0: जी जी
1: चेंज हो
0: जी
1: रहा है,
0: इसीलिए
1: पहचान
0: नए नई पीढ़ी के लिए
1: हाँ
0: नई फिल्म आई थी विभा, उसमें भी ये था, हम ये जी वो जी नहीं कहेंगे गीत आया था। खैर, ये तो संबोधन के तरीके हैं और भाषा प्रेम की जो भी समझ में आए उसको उपयोग करना चाहिए। और जिस तरह से जो पहली पीढ़ी की जिस तरह से चीज़ें थीं वो भी बहुत खूबसूरत थीं। नई पीढ़ी है, नया समय है, नए लोगों ने अपने संकेत या जो भी भाषा बनी है वो अलग है। लेकिन हाँ, कोई भी संकेत हो, परिवार में माहौल अच्छा होना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: प्रेम।
1: परिवार में खुशियां होना
0: जी
1: चाहिए,
0: जी जी
1: प्रेम सम्मान एक दूसरे
0: जी
1: का,
0: जी और संबंधों में मिठास होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए, आपकी फरमाइश का गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।
2: हेलो,
3: हेलो, नमस्ते
2: जी। बताइए कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम बताइए।
3: आदम सावन के जगह का गाना दिलों को हटा दे, तेरे थोड़ा सा उजाला होने दो।
2: ठीक है, हम आपका गीत सुन पा रहे हैं, समय बहुत कम है तो आपका गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।
3: हम आपका गाने को स्थापना दिवस के बधाई देना चाहेंगे।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर जरूर, आप सभी की शुभकामनाओं के कारण जो भी इतना समय आकाशवाणी ने गुजारा है और भी लंबा सफर तय करना है, आप सभी श्रोता जुड़े रहिए ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी फरमाइश का गीत।
3: हाँ,

0: समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको नहीं सुन पा रहे, इसका हमें खेद है। चलने से पहले हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला आदेश सिंह चौहान और रमेश बघेल का। अब दीजिए अनुमति अखिलेश बाथम को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: नमस्कार, फोन करें, गीत सुने इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, जीवन कभी समुद्र की लहरों सा ऊंचा उठता है तो कभी चुपचाप किनारों से टकराकर बिखर जाता है। कभी समय की धूल मन के आईने पर जम जाती है तो कभी कोई मधुर सी धुन उसे फिर से चमका देती है। संगीत वो बारिश है जो भीतर सूखती संवेदनाओं पर धीरे धीरे उतरती है और फिर सब कुछ हरा हो जाता है। संगीत वो दीपक है जो थके हुए मन के अंधेरों में भी उजाला रख देता है। संगीत वो खुशबू है जो बीते हुए सुनहरे पलों को फिर से जिंदा कर जाता है, हमारे जीवन को महका जाता है। तो आइए सुरों की इसी रेशमी छाओ में कुछ पल गुजारते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है फोन करें, गीत सुने। आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें, आपकी चाहते गुनगुनाता एक हसीन सा सफर। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार, मैं राजीव अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से। दीदी,
1: राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, कैसे हैं?
2: बहुत धन्यवाद दीदी, बढ़िया हूँ मैं। यहाँ पर अभी कार्यक्रम चल रहा है मेरे पास, दो मैं रेडियो भी 4-5 रेडियो रखता हूँ मैं, जैसे अलग अच्छा। अलग स्टेशन सुनता हूँ, विविध भारती है, भोपाल है, इंदौर है, सभी। जैसे करीब 40-45 वर्ष हो चुके हैं मुझे।
1: क्या बात है, तो आप हमारे पुराने और नियमित श्रोता हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं राजू जी?
2: कार्यक्रम ज्यादातर हम ये फरमाइश कार्यक्रम से ज्यादा हम मतलब वो रहते हैं के फोन इन कार्यक्रम।
1: जी जी जी, और अब हम जानना चाहते हैं कि गीत कौन सा सुनेंगे आज?
2: आज गीत अमर अकबर इन्फोनो पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, अनहोनी को होनी करके, होनी को अनहोनी, किशोर दास, एलन सिंह और महेंद्र कपूर की आवाज में है ये गीत।
1: क्या बात है,
2: आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बनाया हुआ गीत है। मोहन देसाई साहब की।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सारे क्रेडिट्स याद हैं। अक्सर लोग गायक कलाकारों को तो याद रखते हैं, लेकिन जो गीतकार और संगीतकार हैं उनको लोग याद नहीं रखते।
2: उनको खजाना ही दे रखा है ना।
1: जी जी जी, चलिए राजू जी आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत। यूं ही आकाशवाणी से अपना प्रेम बनाकर रखिए। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का, इंदौर से।
0: अरे वाह हसीना जी, बहुत बहुत जी, स्वागत है आपका।
1: जी आपसे बात करने के लिए बहुत दिल बेताब था मैडम।
0: हमारा भी मन बेचैन रहता है अपने श्रोताओं से बात करने के लिए। कैसी हैं आप?
1: जी जी अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं
1: जी, अच्छे ही रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
1: जी जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा मैडम, आप लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी, तो आज कौन सा गीत सुनेंगी हसीना जी?
1: इम्तिहान फिल्म का नाम और गाने के बोल हैं, इस

0: हम इस कार्यक्रम में।
1: जी जी जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता सिंह बात कर रही हैं शायद।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी जी जी आपसे बात करके जी मान के चलिए कि हमारा सौभाग्य था जी जो आपसे आज हमारी बात काफी समय के बाद बात हो रही है आपसे हमारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत खुशी हो रही है। अमित जी आपने बताया कि आप 16 साल पुराने श्रोता हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको जी कौन कौन से कार्यक्रम विशेष रूप से आपको पसंद है?
1: जी जी आपके यहाँ से ग्राम सभा कार्यक्रम हो, युगवाणी कार्यक्रम हो, और जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम आता है वो भी, और एक मैम बहुत समय पहले एक आता था गुरुवार को मेरे ख्याल से, जिसका नाम था बात पते की लात पते की, जो कार्यक्रम इस पर चलता था, बहुत अच्छा लगता था। शुक्रवार को हेलो ग्राम सभा भी कार्यक्रम जाता था 7:30 के करीब को, ये मान के चलिए कि उसी समय से सुन रहा।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत से कार्यक्रमों का आपने नाम बताया।
1: कार्यक्रम और जाता था आपके यहाँ से हरियाली और खुशियाली, संडे को जाता था
0: जी,
1: हमारे सुभाष सक्सेना जी जिसकी प्रस्तुति देते थे।
0: जी जी जी, तो आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। अमित जी आज कौन सा गीत सुनवाया आपको?
1: जी जी मुझे ही बहुत अच्छा लगा मैम, आप सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम रहेगा मुजरिम, और इसमें जो है मोहम्मद अजीज साहब की बेहतरीन आवाज है, वो गीत के बोल रहेंगे। मुजरिम ना कहना मेरे लोगो, ए मुजरिम तो सारा जमाना है।
0: बहुत ही सुंदर, आपने गुनगुना कर अपनी फरमाइश बताई।
1: जी हमारे अनु भट्टाचार्य जी हैं और प्रेमदास बाबा जी, इन दो लोगों के लिए पुराने श्रोता हैं, यह गीत देरी कर रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमें फोन किया। आप तक भेजते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: ओके मैम बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित एवं करीब 16 साल पुराना श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ।
0: अमित तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम है ये। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
1: सोनू दंतवा बोल रहे हैं मैडम।
0: सोनू जी
1: पुराने श्रोता है मैडम, मैं कई बार फोन लगा चुका हूँ आपके।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला दमो से बोल रहा हूँ, ग्राम पटेरिया।
0: तो सोनू जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम। क्या गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री है तापमान यहाँ का।
0: बहुत ज्यादा गर्मी है इस साल, तो क्या उपाय करते हैं आप? क्या उपाय करते हैं बचाव के लिए?
1: बचाव के लिए मैडम उपाय तो क्या है, ये पानी यानी पीते रहते हैं और ज्यादा ज्यादा छाए में रहते हैं, धूप में निकलते नहीं है, घर पे ही रहते हैं।
0: बहुत तेज गर्मी है, तो इस गर्मी में कुछ सुकून जो मिलता है वो संगीत से मिलता है।
1: रेडियो सुनते रहते, रेडियो है DTH की माध्यम से।
0: जी जी जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: लावारिस फिल्म का।
0: गीत के बोल बताइए।
1: काहे पैसे पे इतना गुरूर किए हैं।
0: अच्छा, तो चलिए आपकी फरमाइश का गीत आप तक भेजते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: करे है।
1: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
2: जी? राकेश वर्मा बोल रहा है, बसाई दरवाजा से, छतरपुर से।
1: राकेश वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं?
2: बढ़िया हैं दीदी जी। आपके प्रोग्राम मध्य प्रदेश के 11 बजे से मतलब सुनते हैं और 3 बजे तक तो आपका कार्यक्रम चलता ही है।
1: जी जी जी।
2: और बहुत पुराने श्रोता हैं अपन मध्य प्रदेश भोपाल के।
1: अच्छा, आज कौन सा गीत सुनेंगे
2: जी? धर्मवीर का सुनेंगे साहब।
1: गीत के बोल बताइए।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी।
1: वाह वाह वाह।
2: टूटे ना टूटे धर्मवीर
1: की जोड़ी। बिल्कुल।
2: तो क्या है कि हम जो है मध्य प्रदेश से दोस्ती बनाए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में और हमारे जो मित्र हैं उनका नाम ले सकते हैं क्या?
1: जी जी जी।
2: कल्पा सतना से हैं चांद मोहम्मद खान और बांदा से हैं दिनकर जी।
1: तो चलिए, आपकी जो ये धर्मवीर की जोड़ी है ये तो बनी ही रहे। हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आपकी जो जोड़ी है वो भी धर्मवीर की जोड़ी है, और ये भी सलामत रहे। तो चलिए, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
3: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। सात अजूबे।

0: हमारे श्रोता सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हेलो नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं विजय पांडे थाना पछवाड़वा जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे कॉल को तस्लीम किए।
0: आपका
1: मैं दो लाइन सुनाना चाहूंगा।
0: जी जी।
1: पेड़ से फूल लाखों गिरते हैं, उठाता है कोई कोई, मोहब्बत तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई।
0: क्या बात है।
1: आदर काबिले अदब मोहतरमा सुनीता साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। विजय पांडे जी, आपने अपने अंदाज में इस कार्यक्रम में प्रवेश किया है, बहुत ही सुंदर अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि गाना कौन सा सुनेंगे आज।
1: इसी पर मैं कुछ कहना चाहूँगा।
0: हाँ जी।
1: कहा गया है कि मोहब्बत एक ऐसा फूल है जिसे कोई एक बार सूंघ लेता है तो जिंदगी भर उसकी खुशबू को नहीं भूलता। मोहब्बत में इतनी ताकत है कि सुनसान रास्तों और वीरान इलाकों को भी आबाद कर सकती है।
0: क्या
1: मोहब्बत वो पाक लफ्ज है। कुदरत ने शायद इसीलिए मोहब्बत में इतनी मिठास रखी है कि दुश्मन को भी आसानी से खत्म किया जा सके। मोहब्बत इंसान को इंसानियत का तरीका बताती है।
0: क्या बात।
1: मोहब्बत चाहे किसी से भी हो, जज्बात मोहब्बत नेक होना चाहिए। मोहब्बत माँ बाप बहन भाइयों वतन दरख्तों यहाँ तक कि एक पहाड़ से उखड़े हुए पत्थर से भी हो सकती है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो मोहब्बत जैसे जज्बे को बदनाम करते हैं।
0: वाह क्या बात है विजय पांडे जी, आपने बहुत खूबसूरत विचार रखे। और वास्तव में प्रेम जो है वो इस संसार की हर समस्या का समाधान है। देखिए आज युद्ध के मुहाने पर संसार खड़ा है, ऐसे समय में मोहब्बत का ये पैगाम बहुत जरूरी हो जाता है। तो बहुत ही शुक्रिया हम अदा करते हैं आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे विचार भी रखे। गाना कौन सा सुनेंगे आज।
1: फिल्म का नाम है प्रेम रोग
0: जी,
1: और गीत के बोल है मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ।
0: वाह, तो चलिए आपकी फरमाइश का गीत आप तक भेजते हैं। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: जी, सुनीता मैम जी को नमस्कार। मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ।
0: अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: चित्रकूट से बोल रहा हूँ। वैसे हूँ श्रीनगर जिला महोबा का।
0: अच्छा, इस वक्त चित्रकूट में हैं।
1: जी,
0: कैसे हैं, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: घूम रहे हैं चित्रकूट में।
0: इतनी गर्मी में? इतनी गर्मी में
1: जी थोड़ा है, इमरजेंसी थी तो गए।
0: अच्छा, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि धूप बहुत तेज है ना, गर्मी
1: जी
0: बहुत ज्यादा है, तो ख्याल रखिएगा अपना। और
1: जी
0: बताइए कि आज
1: धन्यवाद
0: फरमाइश क्या है आपकी?
1: जी। फिल्म का नाम रहेगा ये रास्ते हैं प्यार।
0: गीत के बोल।
1: मेरा दिल था एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा, उसी
0: मेरा दिल था
1: की
0: एक
1: देख।
0: खाली कमरा।
1: जी
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा अरविंद जी कि आपने फोन किया चित्रकूट से।
1: जी
0: आपका काम
1: जी
0: सफल हो, ये हमारी कामना है आपके लिए। और आप
1: बहुत
0: तक
1: दिनों बाद आपसे बात हुई है मैम।
0: जी, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
1: जी आपका भी धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: जसराम जाटव।
0: कहाँ से बोल रहे हैं जसराम जी?
1: जोराई से।
0: जोराई, ये कहाँ पड़ता है?
1: जिला शिवपुरी।
0: शिवपुरी, कैसे हैं? जी जी, कैसे हैं?
1: हम बढ़िया मैडम।
0: और याद किया आपने आकाशवाणी मध्य प्रदेश को तो आकाशवाणी की याद किस तरह से बनी रहती है?
1: आकाशवाणी की याद तो बनी रहती है मैडम, क्या इसमें अच्छे अच्छे गाने मिलते हैं सुनने के लिए, अच्छी बातें मिलती हैं सुनने के लिए।
0: तो इन बातों का आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है कभी?
1: हाँ हाँ मैडम।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप आकाशवाणी सुनते हैं और जो बातें आप तक पहुँचती हैं उन्हें स्वीकार भी करते हैं, अपनाते भी हैं और उनका प्रभाव भी अच्छा होता है।
1: पहले क्या रेडियो सुनते थे, अब मोबाइल पर सुनते हैं मैडम।
0: हाँ, माध्यम कुछ भी हो सकता है लेकिन बातें पहुंचती हैं और असर करती हैं, ये बड़ी बात है। कौन सा गीत सुनवा दें आज?
1: दिल वाले पिक्चर का।
0: गीत के बोल बताइए।
1: जीता हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी भी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था।
0: अच्छा, तो चलिए ये गीत आप तक भेजते हैं जसराम जी। इसी तरह आकाशवाणी के साथ अपना प्रेम बनाकर रखिए। आज आपने फोन किया
1: मैडम, दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम। हमारे दोस्त हैं मनपुरा के मंची मनोज नामदेव, मंची नामदेव, अर्जुन जाटव, श्याम बरन जाटव।
0: इन सारे दोस्तों के साथ मिलकर आप सुनना चाहते हैं दिलवाले फिल्म का गीत?
1: हाँ मैडम।
0: तो चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं और आप सभी दोस्त मिलकर इसका आनंद लीजिए। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नाम बताइए।
1: मैं निखिलेश अहरवार, ग्राम चीखली, जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा।
0: मिथिलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कैसे हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज आपकी पसंद का कोई भी अच्छा सा गीत सुनवा दीजिए।
0: अरे वाह, हमारी पसंद का गीत। देखिए ये भी बड़ी बात होती है कि जिंदगी में इंसान हर जगह अपनी पसंद चाहता है ना, चाहे कपड़े हो, खाना हो, दोस्ती हो, फिल्म देखना हो, हर जगह अपनी पसंद हम चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है,
1: जैसी है कि कुछ आपकी पसंद का भी हो, कुछ हमारी पसंद का, मिला जुला चलता रहता।
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: तो ये जो मिला जुलापन है ये जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो चलिए मिथिलेश जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी।
1: हुई मुझे को भी।
0: हाँ जी बहुत धन्यवाद। भेजते हैं अपनी पसंद का गीत आपके लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

दोस्तों, संगीत की ये महफिल अब यहीं थमती है, लेकिन सुरों की ये नर्म रोशनी आपके मन में यूं ही बनी रहे। जब भी जीवन की राहें आपको थकाने लगें, जब भी समय की धूप कुछ ज्यादा तीखी लगे, तो किसी गीत की छांव में कुछ पल बैठ जाइए, क्योंकि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, मरहम भी है। वो मन को फिर से जिला देता है। तो संगीत के इसी मधुर एहसास के साथ अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। फिर मिलेंगे नई धुनों, नई फरमाइशों के साथ, नए रंगों से सजी एक खूबसूरत महफिल में। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर में समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 25 मई से 29 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देश भर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। ग्राम रोजगार सहायकों का महापर्व और राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन आज दोपहर राजधानी भोपाल में होगा। महासम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संबोधित करेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के बाबा काल भैरव मंदिर प्रशासन के अनुसार अब श्रद्धालु 500 रुपए का शुल्क देकर सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं, वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म अजनबी से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। और इस गीत के लिए फरमाइश अमरावती महाराष्ट्र से आई है। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, शाहिद। अगले श्रोता फ्रेंसी गांव से हैं, राजकुमार, सरजीत, प्रमोद, राजू, बबीता, सुभाष और डब्बू। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ।
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना, कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ।
0: फिर ना कभी कहना दे।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म हम आपके हैं कौन। गीतकार देव कोहली, संगीतकार राम लक्ष्मण। श्रोता, जिन्होंने फरमाइश हमें की है वो पंजाब से हैं, रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। अगले श्रोता सिंहपुर बड़ा से हैं, राजेश, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत के लिए फरमाइश हमें औरंगाबाद से आई है। श्रोता हैं राजेश, शीतल, राजदीप और राशि। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं, संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म ज्वेल थीव से। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार ने, गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार एस डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है जयराज प्लॉट राजकोट से, श्रोता है मधुसूदन, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज। अगले श्रोता नेपाल पैलेस सागर से हैं, तिलक, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म फिजा से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक, और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है पाकुड़ झारखंड से। श्रोता हैं उत्तम कुमार, श्वेता, किशु और ताशु। अगले श्रोता पटियाला से हैं मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार श्रोतागण, पंचतंत्र के इस महासमुद्र में कई सारी छोटी छोटी कहानियां हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं पंचतंत्र का द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति। इसे पंडित विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को कुछ यूं सुनाया। असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुतः।
1: असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुतः। साधयन्त्याशु कार्याणि काकाकुमृग कूर्मवत्। प्रिय वत्सगण, विद्वान बहुश्रुत एवं बुद्धिमान साधनों के अभाव में भी अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं, जैसे कौवे, चूहे, हिरण और कछुए ने मिलकर अपने कार्यों को सिद्ध कर लिया। लो सुनो, दक्षिण के किसी राज्य में एक विशाल सा वृक्ष था, जिसके फलों को पक्षी मुक्त रूप से खाया करते थे। उसके कोटर में अनेक कीट निवास करते थे। दूर दूर से आने वाले पथिक उस वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम किया करते थे। उसी वृक्ष की एक शाखा पर लघुपतनक नाम का एक कौवा निवास करता था। एक बार वो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था।
2: दिन चढ़ा आया, अभी तक एक दाना भी नहीं जुटा पाया। भूख के कारण दशा दयनीय हो रही है। अरे अरे, ये क्रूर ऊर्ध्वकेशी यम के आकार का कौन मनुष्य इधर आ रहा है? ये तो बहेलिया है। ये दुष्ट अवश्य ही मेरे वटवृक्ष की ओर आ रहा है। हे प्रभु, ये मेरे साथियों को जाल में फंसा लेगा। मैं शीघ्र जाकर उन्हें सावधान करता हूं। मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। एक दुष्ट बहेलिया अपने हाथ में जाल एवं चावल के दानों को लेकर इधर आ रहा है। तुम लोग उस पर विश्वास ना करना। चावल के दानों को विषमय जानकर उस पर दृष्टिपात मत करना।
0: लघु पत्नक पक्षियों को चेतावनी दे ही रहा था कि बहेलिया उसी वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया, फिर जाल फैलाकर चावल के दानों को बिखेर दिया और चुपचाप बैठ गया। लघु पत्नक के मना करने के कारण पक्षियों में से कोई भी नहीं गया। परंतु इसी बीच चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज अपने साथियों सहित इधर उधर घूमता हुआ चावल के दानों को देखने लगा।

0: हे प्रभु, कहीं ये जाल में ना फंस जाए। भाई कपोतराज वहां ना जाए, उधर जाल बिछा है। अरे रे, अरे अरे, ये तो सुन ही नहीं रहे। अरे भाई सुनिए, ओफो, वो सब तो जाल में फंस ही गए। दुष्ट बहेलिया कहीं का।
1: मेरे कपोत वृंद, बहेलिए के आगमन से आप सब डरे नहीं। विपदा के समय भी हमें अपनी बुद्धि एवं साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम लोग आपस में मिलकर इस जाल को लेकर उड़ चलें, तो हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सबकी मृत्यु निश्चित है। चलो
2: हम सब इस जाल को ले उड़ते हैं।
0: आश्चर्य, महा आश्चर्य, पारस्परिक संगठन से सब कुछ हो सकता है। अरे देखो तो वो मूर्ख व्याध कैसे पीछे पीछे दौड़ रहा है। चलो मैं भी चलकर देखता हूं कि ये कहां जा रहे हैं।
1: मित्रगण, वो बहेलिया तो थककर लौट गया। अब इस जाल को महिला रौप्य नगर के ईशान कोण की ओर ले चलते हैं। वहां हिरण्यक नाम का एक चूहा मेरा मित्र है, वो हमें जाल से मुक्त करा देगा। चलो। यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर हिरण्यक का विवरण है। मित्र हिरण्यक, मुझ पर बड़ी विपत्ति की स्थिति आ गई है।
3: मित्र हिरण्यक,
4: ये आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आपके आगमन का कारण एवं विपदा की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कहें तो जरा।
1: मित्र, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र कपोतों का राजा चित्रग्रीव हूँ। शीघ्र ही विवरण से बाहर आओ।
4: हे तात, सूर्योदय, पान, रामायण तथा महाभारत की कथा, प्रिय स्त्री तथा अच्छे मित्र हर दिन नई वस्तुओं के समान सुखकारक होते हैं। जिसके घर प्रतिदिन स्नेही मित्र आते हैं, उन मित्रों को देखकर जो सुख प्राप्त होता है वो अन्य किसी वस्तु को देखने से नहीं होता। परंतु मित्र, आपकी दशा कैसे हुई?
1: अब अधिक कुछ न पूछो मित्र, अपने लालच के कारण ही हमने इस बंधन को पाया है। अब विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे पाश को काट दो।
4: ठीक है, इधर आ जाओ मित्र, मैं अब तुम्हारे पाश काटना शुरू करता हूँ।
1: नहीं हिरण्यक भाई, पहले मेरे अनुचरों को पाश मुक्त करो, उसके पश्चात मुझे।
4: महाशय, ये आपने उचित नहीं कहा, क्योंकि स्वामी के बाद ही भृत्यों का स्थान आता है।
1: भद्र, ऐसी बात ना कहिए, ये सभी मेरे आश्रित हैं, ये अपने अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं, क्या मैं इनका इतना भी सम्मान नहीं कर सकता? जो स्वामी अपने अनुचरों को सदा सम्मान देते हैं, उनके सेवक गण अर्थाभाव होने पर भी उन्हें नहीं छोड़ते। और दूसरी बात ये कि कदाचित मेरे पाश को काटते समय तुम्हारे दांत ही टूट गए या वो बहेलिया ही लौट आया, तो इनके बंधे रह जाने से मेरा नर्कवास निश्चित है।
4: धन्य महाशय, धन्य है। महाशय, मैं राजधर्म को जानता हूँ, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। जो राजा भृत्यों के प्रति करुणा का व्यवहार करता है, वो राजा तीनों ही लोगों की रक्षा करता है। आप निश्चिंत रहें, मैं पहले इन्हीं के पाश को काटूंगा।
0: ये अद्भुत घटना है, हिरण्यक तो बड़ा बुद्धिमान है, इसके पास शक्ति और बुद्धि दोनों ही है। वाह, मोक्ष का ये बहुत अच्छा उपाय है। यद्यपि मेरा स्वभाव चंचल है, फिर भी मैं इसे मित्र बनाऊंगा। इसने पूरा जाल कितनी सफाई से काट दिया, अब ये कबूतरों का झुंड चला जाए तो मैं हिरण्यक से मिलूं। लो ये तो उड़ गए। अब मैं विवर्ण के पास जाता हूं। मित्र हिरण्यक बाहर आ जाओ, अरे शीघ्र आओ।
4: ये किसकी आवाज है? क्या कोई कपोत अभी भी फंसा रह गया है? महाशय आप कौन हैं?
0: मैं लखुपतनक नाम का काक हूँ। एक आवश्यक कार्य से आपके पास आया हूँ।
4: मुझे आपसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से शीघ्र चले जाएं।
0: आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देना चाहते? मैंने आपको चित्रग्रीव के बंधनों को काटते हुए देखा है। तभी से मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हो गया हूँ। कृपया मेरी मित्रता स्वीकार कर लें।
4: नहीं नहीं महाशय, बिल्कुल नहीं। परस्पर विरोधी स्वभाव वालों में भला मित्रता कैसी? आप भक्षक हैं, मैं हूँ भक्ष। मैत्री और शत्रुता बराबर वालों में ही शोभा देती है। सबल और निर्बल में मित्रता कैसी भला?
0: मित्र हिरण्यक, मैं आपके द्वार पर बैठ गया हूँ। यदि आप मुझसे मित्रता नहीं करेंगे तो यहीं पर प्राण दे दूंगा मैं।
4: अरे देखिए महाशय, अत्यंत घनिष्ठ होने पर भी शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल चाहे जितना भी गर्म हो वो आग को बुझा ही देता है। फिर आपका और हमारा तो स्वभावगत बैर है।
0: अरे भाई, अभी तो आपका दर्शन भी मुझे नहीं मिला, तो बैर कहां से हो गया? मेरे साथ मित्रता करने के लिए आप एक बार बाहर निकलकर मुझसे भेंट तो करें। आप भरोसा करें, मैं अत्यंत सदाशयी हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं वचन दे सकता हूँ।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं महाशय, मुझे आपके वचन पर विश्वास नहीं है। और आश्वस्त न होने पर दुर्बल व्यक्ति भी बलवानों के द्वारा मारा नहीं जा सकता।
0: नीत के विषय में हिरण्यक की बुद्धि धारदार है। मित्र हिरण्यक, विद्वानों का कहना है कि एक साथ 7 कदम चलने से या 7 वाक्य के प्रयोग से ही परस्पर मित्रता हो सकती है। इस नाते अब तुम मेरे मित्र हो चुके हो। यदि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो विवरण के भीतर से ही तुम मेरे साथ बातचीत, गुण दोष विवेचन और सुभाषित गोष्ठी करना।
4: लघुपतनक जी, आप बड़े चतुर एवं वाक्पटु जान पड़ते हैं। आपसे मित्रता मैं एक शर्त पर कर सकता हूँ कि आप कभी भी मेरे विवरण के भीतर चरण नहीं रखेंगे।
0: भद्र, मैं आपके कथनानुसार ही रहूंगा।
5: उस दिन से दोनों मित्र आपस में सुभाषित गोष्ठियों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। लघुपतनक विभिन्न प्रकार के सामिश पकवानों को लाकर स्नेहपूर्वक हिरण्यक को दिया करता। हिरण्यक भी अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों को रात्रि में एकत्रित करके प्रातःकाल गोष्ठी में आए हुए लघुपतनक को देता था। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। एक दिन लघुपतनक ने आंखों में आंसू भरकर हिरण्यक से कहा,
0: भद्र हिरण्यक, इस क्षेत्र से मेरा मोह भंग हो गया है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
4: अरे प्रिय लघुपतनक, आपके इस मोह भंग का कारण क्या है?
0: यदि जानना चाहते हो तो सुनो। अनावृष्टि के कारण इस देश में अकाल पड़ गया है, जिस कारण लोग भूख से पीड़ित रहते हैं। तो काक के निमित्त बलि भी कोई नहीं करता। ऊपर से पक्षियों को फंसाने के लिए जाल भी फैला रखे हैं। मैं किसी तरह से बच निकला हूं, अब मुझे विदेश जाना ही है।
4: ठीक कह रहे हो मित्र, तुम तो वैसे तुम जाओ।

0: ये कहाँ?
1: दक्षिण के अरण्य में एक बहुत बड़ा तालाब है, वहां मेरा घनिष्ठ मित्र मंथरक नाम का कछुआ रहता है। मैं सोच रहा हूं सुभाषित गोष्ठी के साथ अच्छे भोजन का आनंद भी लूं, यहां रहकर अपने साथियों का विनाश नहीं देख सकता।
0: ठीक है, यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो मित्र मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी यहाँ पर बहुत कष्ट है।
1: मैं तो आकाशगामी हूँ, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं?
0: मित्र, यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं ना, तो अपनी पीठ पर चढ़ाकर मुझे वहाँ पहुँचा दे, अन्यथा मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
1: अरे वाह, ये तो बड़े हर्ष का विषय है मित्र, वहाँ पर हम तीनों सुख से समय व्यतीत कर पाएंगे।
2: काक की बात को सुनते ही हिरण्य तत्काल उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो कौवा धीरे धीरे उड़ते हुए उस तालाब के किनारे पहुंच गया। एक वृक्ष की कोटर में हिरण्य को बैठाने के बाद स्वयं भी एक शाखा पर बैठकर उसने मंथरक को आवाज लगाई।
1: मित्र मंथरक, मंथरक, अरे मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक हूं। आज बहुत दिनों बाद तुम्हें देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं, आकर मुझसे तो मिलो।
3: अरे लघुपतनक, तुम? आओ मेरे गले से लग जाओ भाई, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं। कहो, इतने दिनों बाद कैसे याद आया ये मित्र?
2: पारस्परिक आलिंगन के पश्चात प्रेम पुलकित होकर दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना अपना समाचार कहने सुनने लगे। अब हिरण्य भी आकर उनके साथ बैठ गया।
3: अरे लघुपतनक, ये चूहा कौन है? तुम्हारा भक्ष्य होने पर भी तुम उसे पीठ पर चढ़ाकर क्यों लाए हो? कोई विशेष बात?
1: मित्र, ये हिरण्यक नाम का चूहा मेरा मित्र है।
3: अच्छा?
1: मेरे द्वितीय प्राण के समान प्रिय है मुझे।
3: ओ,
1: इनमें कई गुण हैं, अत्यंत सज्जन भी है।
3: अच्छा?
1: कुछ विशेष कारणों से विरक्त होकर तुम्हारे पास चले आए।
3: ओ,
1: और अपने स्थान का परित्याग कर दिया।
3: अच्छा, इनके वैराग्य का क्या कारण है भाई?
1: भद्र हिरण्यक, अब तो तुम यहाँ पहुँच गए हो, अब तुम अपने विरक्ति का कारण हम दोनों को बता दो।
0: सुनो, एक मठ में ताम्रचूर नाम का एक सन्यासी रहता था। वो भिक्षा टन से अपनी जीविका चलाया करता था। भोजन से बचे अन्न को भिक्षा पात्र में रखकर उसे खूंटी पर लटका दिया करता था। मुझे ज्ञात होने पर मैं अपने कुटुंबियों को लेकर प्रतिदिन भरपेट भोजन करने वहां पहुंच जाता था। एक बार सन्यासी से मिलने उनका मित्र बृहस्पति आया, परंतु सन्यासी को आतिथ्य के बजाय अपने अवशिष्ट भोजन की चिंता अधिक थी। इस कारण बृहस्पति क्रोधित हो गया। ताम्रचूर ने जब हम चूहों के उत्पात के कारण हो रही परेशानी के विषय में बताया, तो बृहस्पति ने मुझे मारने के कई तरीके अपनाए। मैं उससे दुखी हो गया। एक बार मैंने बृहस्पति के धन को चुराने का निश्चय किया, परंतु चोरी के समय वो सन्यासी जाग गया। सच कहते हैं मित्रों कि जो चीज हमारी है हमें अवश्य प्राप्त होगी।
2: मिलने वाली वस्तु मनुष्य को अवश्य मिलती है, विधाता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अतएव किसी वस्तु के विनष्ट होने पर मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए, और किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। जो वस्तु हमारी होगी वो तो मिलेगी ही, इसी संदर्भ में हिरण्यक ने वणिक पुत्र की कथा सुनाई।
0: किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वणिक रहता था। एक बार उसके बेटे ने एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में लिखा था, जो वस्तु जिसे मिलने वाली होती है अवश्य मिलती है। तब उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता।
1: ये बात तो अति उत्तम है। अब मैं ना तो किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर दुखी होऊंगा और ना ही अनायास मिल जाने पर आश्चर्य करूंगा, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वो तो मुझे मिलेगी ही नहीं, और मेरे भाग्य में आने वाली वस्तु किसी दूसरे के पास जाएगी ही नहीं।
4: ये कौन सी पुस्तक है? इसे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो।
1: देखिए पिताजी, इस श्लोक में कितनी अच्छी बात लिखी है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता।
4: मूर्ख, लिखे हुए श्लोक पर इतना भरोसा? इस बुद्धि से तुम क्या कमाई करोगे? मेरे पुत्र होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अगर उद्यम नहीं करोगे तो फल कैसे प्राप्त हो सकेगा?
1: आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ये श्लोक किसी विद्वान ज्योतिषी द्वारा रचा गया है, इसमें कुछ तो सत्य होगा ही।
4: निकल जा मेरे घर से, जा बाहर जाकर देख कि अपने भाग्य से तू क्या क्या अर्जित कर सकता है। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जा, निकल जा मेरे घर से, जा।
0: पिता की भर्त्सना से दुखी होकर वो वणिक पुत्र उस नगर को छोड़कर दूर चला गया। जो भी उससे उसका नाम पूछता वो कहता, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को ही प्राप्त करता है। तो लोगों ने उसका नाम प्राप्त व्यर्थ रख दिया। एक बार उस नगर की राजकन्या चंद्रवती अपनी सहेली कादंबरी के साथ नगर निरीक्षण के लिए निकली।
5: सखी, मौसम कितना सुहाना है, आज विहार में आनंद आ गया।
6: हाँ, आज का ये दिन ही कुछ विशेष है। संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल है। धनी, देखो सामने से किसी राजपुत्र की सवारी आ रही है।
5: कहाँ? अरे हाँ सखी, वाह, अद्भुत सौंदर्य, क्या मनोहर रूप है। सखी, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलवा दो ना सखी। अन्यथा कामदेव के वाणों को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी।
6: धैर्य रखो सखी, धैर्य रखो, मैं अविलंब उस राजपुत्र से मिलकर तुम्हारे मन की बात बताती हूँ। राजकुमार की जय हो। युवराज, मैं अचिंत देश की राजकन्या चंद्रवती की सखी कादंबरी हूँ। मैं राजकन्या की ओर से कुछ निवेदन करने आई हूँ।
7: कहो कादंबरी, क्या संदेश भेजा है राजकन्या ने?
6: युवराज, राजकन्या आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व पर मुग्ध हैं। वो आपसे भेंट करना चाहती हैं। आपको देखने से उद्दाम मनोभावों ने उनकी दशा अत्यंत चिंतनीय बना दी है। यदि आप शीघ्र उनके पास नहीं जाएंगे तो आत्मोत्सर्ग के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं बचेगा राजकन्या के पास।
7: ये तो मेरे लिए भी हर्ष का विषय है, परंतु कादंबरी, यदि राजकुमारी के पास पहुंचना अनिवार्य ही है तो बताओ किस उपाय से मैं महल के अंदर प्रवेश कर सकूंगा?
6: सुनिए कुमार, रात्रि के समय राज प्रासाद के नीचे लटकती हुई चमड़ी की स्थूल रस्सी के सहारे आप ऊपर चढ़ाइएगा।
7: ठीक है कादंबरी, यही उत्तम रहेगा, मैं सही समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम अब जाओ।
6: जो आज्ञा।
7: ये कादंबरी क्या सत्य कह रही थी? राजकुमारी के साथ ऐसा करना अनुचित है, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा।
2: राजकुमार ने अपना निर्णय बदल लिया और इधर प्राप्त व्यर्थ घूमता हुआ उस राजमहल के समीप पहुंच गया। रात्रि में महल के झरोखे से लटकती हुई रस्सी को देखकर कौतूहलवश महल पर चढ़ गया। प्राप्त व्यर्थ को ही राजकुमार समझकर राजकन्या ने उसका सत्कार किया, फिर उसके साथ विविध मनोविनोद किया।
5: हे राजपुत्र, आपके दर्शन मात्र से ही आपके प्रति आसक्त होकर मैंने अपना हृदय आपको दे दिया है। आपके स्पर्श मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। आपको छोड़कर अब कोई दूसरा मेरा पति हो ही नहीं सकता। क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
1: मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु और हर स्थिति उसे मिल ही जाती है।
5: नहीं, नहीं, तो आप वो राजपुत्र नहीं है? कौन है आप?
1: हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी हर वस्तु से मिल ही जाती है।
5: दुष्ट, अभी मेरे महल से निकल जाओ, निकल जाओ, नहीं तो मैं सैनिकों को बुलवाऊंगी। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से।
0: महल से निकलकर प्राप्त व्यर्थ नगर में भ्रमण कर ही रहा था, तभी वहां से एक बारात जा रही थी। प्राप्त व्यर्थ उस बारात में शामिल हो गया।
2: तो सुधीजन, आपने सुना कि प्राप्त व्यर्थ के अनुसार जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे अवश्य प्राप्त होता है।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
9: राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के भीमपुर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत जांच, जागरूकता, भागीदारी महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने इस दौरान सिकल सेल और थैलेसीमिया जांच मशीन गजेल का शुभारंभ किया। यूनिफाइड सिविल कोड UCC को लेकर 23 मई को इंदौर और उज्जैन में बैठकें होंगी। इसके लिए रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है, जिसमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल AI एजेंट भी शामिल है, जो यूजर्स की तरफ से खुद ब खुद काम करके उनकी मदद करेगा। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ICER में समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 25 मई से 29 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देश भर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। भारतीय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25-26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के बाबा काल भैरव मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालु 500 रुपए शुल्क देकर सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले दिन 3 दिन तक प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। और IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
8: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

सभी श्रोता सखियों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम महिला सभा में। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज जब मैं आकाशवाणी आई तो सभी ने मेरे सनग्लासेस की बहुत तारीफ की। भाई, तारीफ क्यों ना करते, एकदम नए स्टाइलिश लग रहे थे। मेरी बेटी ने 3-4 दिन पहले ही मुझे ऑनलाइन सेंड किए थे। उसे तो शॉपिंग का बहुत शौक है। शॉपिंग करना तो आपको और हमको सभी को भाता है। बहुत उत्सुकता रहती है कि आजकल मार्केट में क्या नया चल रहा है ये जाना जाए, जो चीज़ ट्रेंड में है उसे खरीदा जाए। इसके लिए हम मार्केट जाते हैं। यदि हमें कोई चीज़ ऑनलाइन अच्छी दिख जाती है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। इससे कई बार हमें मार्केट से कम दामों पर ही अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध हो जाता है। बहनों, ऑनलाइन शॉपिंग हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत करती है, तभी तो काफ़ी फायदेमंद प्रतीत होती है। बहनों, आप जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाएं तो उसकी गुणवत्ता की जाँच जरूर कर लें। वस्तु की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को लेकर संशय होना ऑनलाइन शॉपिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए सतर्कता जरूर बरतें। सखियों, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सदैव विश्वसनीय साइटों का ही प्रयोग करें और कोशिश करें COD मोड को अपनाने की, या फिर खरीदे गए सामान का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड से करें, क्योंकि किसी गड़बड़ी की स्थिति में ये आपके पैसों को सुरक्षित करने का एक बेहतर विकल्प है। बहनों, जब हम किसी कीमती सामान को ऑनलाइन मंगाते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऑप्शन को जरूर चुनें, यानी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें वही उत्पाद मिले जिसका हमने भुगतान किया है। तो आगे से सखियों, ऑर्डर प्लेस करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। बहनों, जिस वेबसाइट पर आप भुगतान की जानकारी दर्ज करती हैं, चेक करें कि वो आपके लेन देन को सुरक्षित रखती है या नहीं। इसके लिए एक संकेत है URL के पहले HTTPS दिखना चाहिए। सखियों, भौतिक खरीदारी में चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, स्पर्श करके महसूस करते हैं, वास्तविक रंग रूप और प्रक्रिया को समझ सकते हैं, बाजार जाकर घूम फिर कर मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। सखियों, मन चाही चीज़ों को बेशक खरीदिए, खूब शॉपिंग कीजिए आपकी अपनी ज़रूरतों के अनुसार, कभी भी ऑफर या सेल को देखकर नहीं। अरे अरे सखियों, इन्हें तो सुनिए जरा, ये तो अपने लिए किसी और से ही शॉपिंग करवा रही हैं।

0: क्यों कार्यक्रम के प्रवाह को आगे ले जाते हुए आपको सुनवाती है कहानी बोनसाई की बगावत। कहानीकार है डॉक्टर चारू चित्रा।
1: शालिनी ने बड़े आदमकद शीशे में अपने आप को देखा। उसे लगा कोई और ही उसके सामने खड़ा है। आजकल अपने आप को पहचानने में भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसका गेहुआ रंग सफेद हो चुका था, ऐसे ही जैसे दीवारों का पुराना पेंट कई परतों के बाद आखिरकार नए रंग में रंग ही जाता है। राज ने दो दिन पहले आके पार्लर में सब तय कर दिया था। कैटलॉग में वो उंगली रखते गए थे और राज की पसंद के हिसाब से शालिनी संवार दी गई थी। शालिनी को अपने घर में रखी नृत्य मुद्रा में एक हथेली ऊपर कंधे के पास और दूसरी कूल्हे के पास रखे वो गुड़िया याद आ गई, जिसे कोई भी आता जाता छू देता और वो कमर और गर्दन को हिलाकर नाचना शुरू कर देती। दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही हल्की चिनमिन सी बारिश की फुहार को चेहरा उठाकर उसने छूने की कोशिश की ही थी कि तभी ड्राइवर ने छाते को उसके सिर पर तानकर फुहार की नाजायज गुस्ताखी पर वहीं रोक लगा दी। उसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ राज को था, यहां तक कि पापा मम्मी भाई और छुटकी भी शादी के बाद उसे जोर से गले लगाने से हिचकिचाने लगे थे। एक शादी में शालिनी को देखने के बाद जब राज ने घर आकर उसका हाथ मांगा तो जैसे सब कृतार्थ हो उठे थे। सभी हैरान थे कि राज ने इस घर परिवार और शालिनी में ऐसा क्या देख लिया जो उसका दीवाना हो गया। राज ने शादी की पहली रात ही अपने पिछले कड़वे अनुभवों का जिक्र करते हुए ये स्पष्ट कर दिया था कि अब उसे एक साधारण परिवार की घरेलू ठीक ठाक सी लड़की चाहिए थी जो उसके कद और ओहदे को समझ सके और उसके सर पर नाच ना सके। शालिनी की छोटी सी झोली जिसमें बड़े बड़े सपने लेकर वह आई थी एकदम ही खाली हो गई। राज उसके परिवार की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। आर्थिक कठिनाई झेलने वाले भाई को उसने अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। शालिनी को बिना किसी व्यवधान के कॉलेज जाए बिना ही एमए की डिग्री मिल गई। पापा की लंबी बीमारी का अच्छा इलाज भी होने लग गया। एक ही काम रह गया था, छुटकी के लिए अच्छा परिवार और वर ढूंढने का। राज ने वो खोज भी शुरू कर दी थी। राज ठंडी बयार की तरह परिवार के हर सदस्य को सुकून दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि अजीब सूखापन शालिनी के आसपास घिर गया था, जैसे सब कुछ खिंचा भिचा सा हो। तरलता को तरस गई थी वह। कहा था शालिनी ने एक दिन पापा मम्मी से, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मुझे अपने घर वापस आना है। मम्मी ने घबराते हुए उसके हाथ को दबाया कि कहीं आवाज गलती से भी किसी तक पहुंच ना जाए। क्या कह रही है, क्या परेशानी हो सकती है तुझे यहाँ? इतना बड़ा बंगला, कारें, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, कितना ध्यान रखता है राज तेरा। अफरात में जब मिल जाए तो भी दिमाग खराब ही हो जाता है, माँ दांत भीजते हुए बोली। मैं कारपेट नहीं हूं जो

कहा, तू ना कहती थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, संभाल लूंगी सबको। अब इस परिवार का भविष्य तेरे साथ ही जुड़ा है बेटा। घर के सामने कार रुकने के साथ ही शालिनी के भागते मन पर भी रोक लग गई। खिली धूप में लॉन की चमकती मुलायम मैक्सिकन कारपेट, घास, आसपास करीने से क्यारियों में लगे देश विदेश से आए पौधे, सफेद मेजपोशों से सजी गोल मेजें, लाल रंग के रिबन बांधे अतिथियों के स्वागत को आतुर कुर्सियां, शहर के मशहूर गायक की कव्वाली पर झूमते ढाके लगाते रसूखदार पुरुष और महिलाएं। राज वेलकम वेलकम करता हुआ फोटोग्राफर के साथ तेजी से आगे बढ़ा। पोर्च में एक तरफ खड़े मम्मी पापा और भाई भी उत्साह से उसकी आगवानी को आगे आए तो राज की एक दृष्टि से उनके बड़े कदम सहम गए। अब क्या चीज कैसे प्रस्तुत करनी है ये राज को हमेशा पता होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार यूं ही तो नहीं मिल गया था उसे। सबके सामने उसके हाथों को पकड़ता हुआ वह कह उठा, बेबी बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर बेहद कड़े स्वर में वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, ये पल्ला क्यों लपेट रखा है, साड़ी का लुक ही नहीं आ रहा ढंग से। उधर से किसी की आवाज आई, नॉटी बॉय, ये क्या कानाफूसी चल रही है राज। इतने में मंत्री जी की कार के रुकते ही राज के साथ शालिनी भी उनके पैर छूने को झुकी तो मंत्री जी ने इत्मीनान से उसकी अनावृत पीठ पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराकर कुछ ज्यादा ही लंबा आशीर्वाद दे डाला। राज ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो एक गिजगिजे जानवर को पूरी दोपहर पीठ पर लिए घूमती रही। राज और शालिनी की शादी की दूसरी एनिवर्सरी का केक कटा और राज ने ग्लास पर चम्मच बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहद रोमांटिक अंदाज में शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी मल्लिका की नाजुक गर्दन के लिए एक छोटा सा तोहफा इस गुलाम की ओर से। उसके साथ ही शालिनी की गर्दन हीरो जड़े हार से सज गई। जोर से तालियां बजी और टू क्यूट, व्हाट अ लकी गर्ल, प्रेशियस, सो स्वीट, ट्रूली ब्लेस्ड जैसी आवाजें हवा में उछलने लगी। लेकिन इस सुख को शालिनी जी ही नहीं पा रही थी। यादों के बवंडर में उलझी हुई थी वो। 2 सालों में पहली बार उसने राज से कोई तोहफा मांगा था। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, क्या चाहिए तुम्हें, कहते हुए राज ने उसे सीने से लगा लिया। राज, मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहती हूँ। राज ने सीने से लगी शालिनी को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, क्या रखा है इस सब में, पढ़ पढ़कर अपना दिमाग खराब करोगी। तुम हैसियत नहीं देखती अपने पति की, छोटी सी बात पर मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं घर में। फिर उसके उतरे चेहरे को देख राज ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। अच्छा, तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन है ना, तो तुम समाज सेवा वगैरह कुछ कर लो, बल्कि अपना ही एक एनजीओ बना लेते हैं। राज, बचपन से इसी सपने को सींचा है मैंने और मुझे लगता है मैं कर। अभी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही राज का ठंडा स्वर सुनाई दिया, नहीं यह तो नहीं हो पाएगा, घर में बहुत कुछ है करने को तुम्हारे पास। सख्त चेहरे के साथ बिना जवाब का इंतजार किए राज बाहर निकल लिया और शालिनी अपना वजूद बिस्तर के नीचे, कालीन की गर्द में, बर्तनों के सिंक में, अलमारियों और गुलदानों में ढूंढती फिरी। शालिनी की तंद्रा एक परिचित आवाज से टूटी। मशीनी ढंग से दी जाने वाली बधाइयों के बीच ये मंगल कामना कुछ अपनी सी लगी। अरे शेखर जी, आप कैसे हैं, आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, वो भी फोन पर, कृतज्ञ हूं मैं, आप नहीं जानते कितनी बड़ी प्रशंसक हूं मैं आपकी। जाने कितने दिनों बाद वो अपने अंदर से फिर अपनी पुरानी शालिनी को खोज लाई थी। अपनी ही रॉ में खिलकती शालिनी शेखर को राज से मिलवाने को आगे बढ़ी। राज, ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, शेखर, इन्हें सुनने तो कॉलेज भी बंक करके मैं पहुंच जाती थी। ये सारे शब्द शालिनी के मन के अंदर ही रह गए तब तक एक्सक्यूज मी कहता हुआ राज आगे बढ़ा और मुड़कर शालिनी को इशारे से बुलाया। राज की शिष्टता और मुस्कुराहट बरकरार थी मगर क्रूर हुए थे तो वे थे उसके शब्द। उसने आहिस्ता से शालिनी को कहा, इसको किसने बुलाया है। शालिनी ने अधिकार से कहा, मैंने। मुस्कुराहट और शिष्टता पर तमतमाहट का आवरण पल भर को चढ़ा और फिर उसी रूप में वापस आकर राज बोला, रफा दफा करो उसे, कहीं से फिट हो रहा है वह इस पार्टी में। रुआंसी हो उठी शालिनी, लेकिन ऐसे कैसे, जैसे बुलाया है वैसे ही वापस भेजो और चेहरे की मुर्दानगी खत्म करो। कहते हुए राज की तमतमाहट पर शिष्टता का मुलम्मा फिर चढ़ चुका था। शालिनी ने रंगीन कागज में लिपटी किताब को मेज पर देखा और आंसुओं से धुंधली आंखों ने शेखर की अनुपस्थिति को भी महसूस कर लिया। शालिनी अपने अंतर्द्वंद से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी राज की आवाज सुनाई दी, क्या कर रही हो, आओ जान, तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। पलों में भाव भंगिमा मूड बदल लेने की राज की है कला आज 2 बरस बाद भी शालिनी को अचंभित कर उठती है। राज लॉन में अपने पसंदीदा हिस्से में कढ़ा था जहां जब तब दस्ताने चढ़ा कैंची, कटर, तांबे की तारें लेकर कई तरह के खेल और प्रयोग वह पौधों पर किया करता है और छोटे पेड़ों की एक दुनिया उसने वहां बसा ली है।
چھوٹے چھوٹے برگد، پائن، جاپانی لال میپل، جونیپر، چینی ایلم، فکس، ایڈینیم، یہی نہیں سنترے، نارنگی، امرود سے لدے فدے منیچرز جانے کتنے ہی وراٹ پیڑوں کے گھمنڈ کو توڑتے تھے۔ لوگ منتر مگھ تھے راج کی اس کلا پر، اور راج کسی وشیشگیہ کی طرح بڑے ہی منوگ سے سب کو بونزائی بنانے کی باریکیاں سمجھا رہا تھا کہ تبھی سنہا صاحب کی آواز نے ویودھان

0: डाल दिया। तांबे की तारों से लिपटे एक बोनजाई को सबको दिखाते हुए बोले, क्यों राज, तुम्हें नहीं लगता कि यह प्रकृति के खिलाफ है? किसी की भी नेचुरल ग्रोथ को ऐसे क्यों रोकना है? टॉर्चर कर रहे हो तुम इनके साथ। इन्हें तारों से बांधना, काटना, फैलने से रोकना, बरगद पीपल जैसे विशाल पेड़ों को जरा सी ट्रे भर जगह देते हो। उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो भाई। राज को विरोध पसंद नहीं है, अपने को जज्ब करता हुआ बोला, अरे साहब क्या कहते हैं, इटली के बोनजाई म्यूजियम में 1000 साल पुराना पेड़ रखा है। टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में 17वीं शताब्दी का बोनजाई देख तो मैं दीवाना हो गया। जब इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं, बाकायदा उसी तरह फल फूल देते हैं जैसे दूसरे पेड़ देते हैं, खूबसूरती तो देखिए इनकी, तो कैसे आप दावा करते हैं कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है? बस तकनीक का कमाल है, ग्राफ्टिंग और प्र्यूनिंग सही होनी चाहिए। हाँ, तारों से बांधने में कुछ छुटपुट निशान पड़ जाते हैं, एस्थेटिकली जरा अच्छे नहीं लगते, तो उनके भी तरीके हैं ठीक करने के। सौंदर्य सिर्फ खजुराहो अजंता एलोरा की मूर्तियों और पेंटिंग्स में नहीं है जनाब, इस कटाई छटाई और उससे उपजे बौनेपन में भी एक परिष्कृत सौंदर्य शास्त्र है। बहुत देर से चुप खड़ी शालिनी एकदम चुनौती दे बैठी, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई बोनजाई अपने कद से आगे बढ़ गया तो? उसने बगावत कर दी तो? आकार और कद ना बढ़ने देने का ही तो सारा मसला है जाने मन, इतनी काट छांट के बाद या तो बोना रह जाएगा या मर जाएगा। कहते कहते राज मुस्कुराकर फोटोग्राफर को पोज देने को तैयार हो गया।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी डॉक्टर चारू चित्रा से उनकी कहानी बोनसाई की बगावत। सखियों, भौतिक विज्ञान ने मनुष्य को सभ्य बनाया लेकिन उसे सुसंस्कृत नहीं बनाया। उसके लिए अंतः जीवन के मूल्यों को खोज निकालना होगा, ये कहना था पंत जी का। वे एक नई मानवीय संस्कृति को आगे लेकर आए। श्री सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के आधार स्तंभ थे। उनकी सोच स्त्रियों के लिए देह से कहीं ऊपर थी। वे कहते थे कि जिस प्रकार फूल अपने हृदय का सौरभ सभी को देता है, उसी प्रकार स्त्री को भी अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। उसका सौंदर्य उसकी देह नहीं वरन उसकी भावनाएं हैं जो हृदय रूपी तिजोरी में बंद हैं। बहनों, इसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए अब सुनाती हूँ आपको पंत जी की एक रचना। बहनों, चाहे कलियों का खिलना हो या तितली का उड़ना, पंत जी ने अपने ही ढंग से प्रदर्शित किया है। नीली पीली ओ चटकीली, पंखों के प्रिय पंखुड़ियाँ खोले। नीली पीली ओ चटकीली, पंखों के प्रिय पंखुड़ियाँ खोले। प्रिय तितली, फूल सी हो फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल। तुम मधु की कुसुमित अपसरी सी, उड़ उड़ फूलों को बरसाती। तुम मधु की कुसुमित अपसरी सी, उड़ उड़ फूलों को बरसाती। शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल, शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल, किस मधुर गीत लय में जाती। तितली रंग बिरंगे फूलों पर बैठती है और उन्हीं फूलों से मधुमक्खी रस चूसती है। जब मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के फूलों पर जाती है तो उसका रस अवशोषित करती है और अपने अथक प्रयासों के बाद इन्हीं फूलों के रस को बदल देती है मीठे मीठे रस में, यानी शहद में। बहनों, आज हम धन्यवाद करते हैं शहद की रानी यानी मधुमक्खियों का, जिनका प्रकृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे पॉलिनेशन भी करती हैं, यानी पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। सखियों, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। प्रकृति में सभी का अपना विशेष महत्व है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, फूल पत्तियां या हम मनुष्य ही क्यों ना हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को जीवंतता दे रहे हैं। और पंत जी की रचनाएं सुनकर तो यूं लगता है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे में समाहित होकर गुनगुना रहे हैं।

सखियों कलियों के खिलने से, भंवरों के गुंजन से और फूलों पर मधुमक्खियों के मंडराने से जन्म होता है मधुरस यानी शहद का। बोलते ही जुबान पर मिठास घुल गई ना। बहनों, शहद एक प्राकृतिक औषधि है, ये तो आप भी जानती हैं और हम भी। प्राचीन काल से ही घावों को भरने में शहद का प्रयोग किया जाता है। शहद एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, त्वचा को निखारता है। तभी तो हम और आप अपने फेस पैक में भी इसे मिलाते हैं। शहद त्वचा की नमी को बरकरार रखता है, पाचन में सुधार करता है, साथ ही पुरानी खांसी के लिए तो ये रामवाण माना गया है। शहद का प्रयोग हम सभी करते हैं, पर बहनों, इसके ढेरों फायदे हमारे लिए तभी लाभकारी हैं जब इसका सही प्रकार से सेवन किया जाए। बहनों, फेस पैक हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, हमें स्मार्ट बनाता है। गर्भवती महिलाओं को शहद का सेवन करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लेना चाहिए। यदि हम लगातार ज्यादा मात्रा में शहद का सेवन करते हैं तो हमारा वजन बढ़ सकता है, तो ख्याल रखिए, क्योंकि शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो होता ही है, जो शक्कर का प्राकृतिक रूप है। सखियों, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि शहद का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पर ये एक भ्रांति है। रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि यदि हम लगभग 2 बड़े चम्मच शहद का सेवन नियमित रूप से 8 सप्ताह तक करते हैं तो इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी हमारा हृदय स्वस्थ रहता है।

0: का सेवन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जैसे इसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। वे लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात में गुनगुने दूध के साथ शहद का सेवन करते हैं तो कुछ लोग सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू के रस के साथ शहद लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी पिघलने लगती है और हम हो जाते हैं स्लिम ट्रिम यानी स्मार्ट वुमेन। तो सखियों, आप भी स्मार्ट बनिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब कार्यक्रम का समय हो चला है समाप्त, तो अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
0: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जारी दिनांक से आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वाले पर संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ कर रहे हैं इस चौकड़िया के साथ। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे साक्षी कुलश्रेष्ठ के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: साक्षी कुलश्रेष्ठ के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सागर फिल्म का ये गीत है। एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने गीत लिखा, धुन बनाई आरडी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म जबरदस्त के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तानाजी ने उनका स्वागत किया। इटली के पीएम

0: भी समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। इससे जरूरी फेरबदल आसान होंगे। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया
1: कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे और बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में AI आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। सिंहस्थ 2028 के लिए स्मार्ट भीड़ प्रबंधन और AI पुलिसिंग के साथ साथ स्वास्थ्य कृषि और शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में गूगल क्लाउड इंडिया और सिंगापुर से आए वैश्विक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस ग्राउंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां सिकल सेल और थैलीसीमिया जांच मशीन का उद्घाटन किया जाएगा और जरूरतमंदों को हितलाभ भी बांटे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत आज पहली बार शहडोल पहुंच रहे हैं। वे ट्रेन से कटनी आएंगे और फिर सड़क मार्ग से शहडोल पहुंचेंगे। 3 दिन के इस प्रवास में उनका मुख्य कार्यक्रम पांडव नगर के सरस्वती स्कूल में होगा जहां 300 से ज्यादा शिक्षार्थियों को के साथ बौद्धिक शिविर आयोजित है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है और ना ही कोई जवाबदेही। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ा है जो रोजाना के दवाओं के लिए पूरी तरह रिटेल दुकानों पर निर्भर हैं। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कल बैठक के दूसरे दिन प्रतिनिधि क्रिस्टल IT पार्क और पीतमपुर की सिप्ला कंपनी का दौरा भी करेंगे। प्रदेश में गर्मी ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। वहीं प्रदेश के 22 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा और ग्वालियर में भी पहली बार 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की इटारसी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में निश्चय पोषण योजना के तहत 12 क्षय रोगियों को पोषण सामग्री वितरित की गई। नीमच में कल 21 मई शासकीय ITI मनासा में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नगर में भव्य गीता भवन के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
3: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ TIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
5: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। इसमें श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहली पसंद शामिल कर रहे हैं हम कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बट्टा की। अनिल कामले, नेहा फणसे, सीमा सबीहा, सुषमा, स्लीमा, पूजा गुमास्ता नगर इंदौर से अपनी पसंद हमें भेजते हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा की ये पसंद है। गिरफ्तार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार, आशा भोसले का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत लिखा है, बप्पी लहरी की धुन है।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं तेलंगाना भोंगीर विद्यानगर से किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ फिल्म अलग का ये गीत सुनना चाहते हैं। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फरजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजीम गुड़िया और मोहम्मद अब्दुल बाबा अनजाना। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से दिलीप कुमार, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। ग्राम बगवड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मोनिका, प्रोनोका और उत्कर्ष नेताम की। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की पसंद पर फिल्म अलग अलग का ये गीत किशोर कुमार ने गाया है। आनंद बख्शी का गीत लिखा, आर डी बर्मन की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां की, लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। उपाध्याय नगर से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, मेंढकी रोड से राघु सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत की, और राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन की, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की। गुलामी फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, लता मंगेशकर का गाया हुआ। धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने।

कोटवा नारायणपुर से अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की, दुबिहा नेवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, अश्विनी रोशनी राय और प्रांजल राय की, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, राजू बाई, रोजू बाई तड़वी, परु मुबारक पारिकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर पारिकर की, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की, सुनना पसंद किया है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, भूपिंदर और आशा भोसले का गाया फिल्म एतबार से ये गीत है।

0: फिल्म एतबार का यह गीत था, आशा भोसले और भूपिंदर ने इसे गाया था, हसन कमाल का लिखा और बप्पी लहरी की धुन थी। इसके साथ ही आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने उनका स्वागत किया। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस मैदान में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है ना कोई जवाबदेही। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। और प्रदेश में गर्मी ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित करेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। आज रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में चर्चा का विषय है। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। क्या ऐसा होगा, ये नाटक प्रसारित करेंगे रात्रि 10:00। लेखिका श्रीमती मधु राजन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित MS गोपाल कृष्ण का वायलिन पर बजाया राग भूपाली। आपको बता दें आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी संध्याकालीन प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय 2:02 होने को है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम पुनः हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी है। आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस चौकड़िया के साथ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोता सुने उनका नियमित कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम की इस प्यारी सी मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ तनिष्का।
1: दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है माधवी और आज हम बात करेंगे ढेर सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन साथ ही आज है बुधवार तो आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही खास सेगमेंट के बारे में और वो सेगमेंट है हमारा एक ही फिल्म से। लेकिन तनिष्का, जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोताओं से सवाल पूछते हैं, तो क्यों ना हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी तरह से करें।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। और इन सवालों का जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में जरूर बताएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो अब तनिष्का, अब दूसरा सवाल भी पूछ लो।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों आज का दूसरा सवाल ये है कि नीदरलैंड ने भारत को किस राजवंश के 11वीं शताब्दी के ताम्रपत्र वापस किए हैं। तो मैं सवाल वापस दोहरा देती हूँ कि नीदरलैंड ने भारत को किस राजवंश के 11वीं शताब्दी के ताम्रपत्र हाल ही में वापस किए हैं। तो आप इन सवालों के उत्तर सोचिए और तब तक सुनिए कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, जब हम सुबह बगीचे में जाते हैं या सुबह नहीं भी जाएं या कभी हम नेचर के आसपास होते हैं, पेड़ पौधों के आसपास होते हैं, तो हम ज़रूर देखते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते को देखना मतलब काफ़ी कॉमन है ना। और काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ दिखती हैं, उन्हें फूलों के आसपास उड़ते हुए देख के अचानक ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इन छोटे छोटे जीवों को हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं।
1: हाँ, उनकी अहमियत उतनी नहीं होती है जब हम उन्हें देखते हैं, और इसीलिए शायद आज के दिन को इंटरनेशनल हनी बी डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग समझ सके कि छोटी सी दिखने वाली ये मधुमक्खियाँ, ये छोटे छोटे जीव हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं।
0: लोग अक्सर सिर्फ शहद के बारे में सोचते हैं,

0: लेकिन मधुमक्खियां उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काम करती हैं।
1: सबसे बड़ा काम तो वे पॉलिनेशन का करती हैं, यानी फूलों और पौधों को बढ़ने और फल देने में मदद करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया की बहुत सारी फसलों का उत्पादन मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है। मतलब साइज में इतनी छोटी मधुमक्खियां और काम देखो कितना बड़ा।
0: आप ही सोचिए दोस्तों, अगर मधुमक्खियां ना हो तो शायद हमारे कई फल, सब्जियां और फूल कितने कम हो जाएं, या शायद उग ही ना पाए।
1: बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें नेचर्स लिटिल वर्कर्स भी कहा जाता है। वे बिना रुके पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने में काफी मदद करती हैं।
0: और मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम मात्रा में शहद बनाती है, लेकिन पूरी कॉलोनी मिलकर इतना काम करती है कि हजारों लोगों तक शहद पहुंच जाता है।
1: वाह, मतलब टीम वर्क की असली मिसाल तो ये मधुमक्खियां हैं माधवी।
0: एग्जैक्टली, हर मधुमक्खी का अपना काम होता है। कोई फूलों से नेक्टर लाती है, कोई हाइव की रक्षा करती है, और कोई रानी मधुमक्खी की देखभाल करती है।
1: इसलिए मुझे लगता है कि हम इंसानों को भी उनसे मेहनत, अनुशासन और साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए, है ना माधवी?
0: लेकिन दुख की बात तो तुम सही कह रही हो तनिष्का, लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि आजकल पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से मधुमक्खियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है।
1: और ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर मधुमक्खियाँ कम होंगी तो इसका असर तो खेती और प्रकृति दोनों पर पड़ेगा।
0: इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि हम लोगों को अवेयर करें, जैसे स्कूल्स में बच्चों को उनके महत्व के बारे में बताएं, बाहर जाएं जब भी तो लोगों को भी इस बारे में समझाएं कि क्यों ये छोटे छोटे जीव हमारे पूरी लाइफ साइकिल के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और हम हमारे लेवल पर भी छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। अपने घरों या बगीचों में ज़्यादा फूल वाले पौधे लगा सकते हैं ताकि मधुमक्खियों को नेक्टर मिल सके।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। साथ ही हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है।
1: और सोशल मीडिया पर भी हम इसके बारे में इंफॉर्मेटिव पोस्ट और वीडियोस शेयर करके अवेयरनेस फैला सकते हैं।
0: वही सही बात है तुम्हारी, मुझे भी यही लगता है कि जो छोटे छोटे कदम है ना तनिष्का, मुझे लगता है ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: हाँ, क्योंकि प्रकृति की रक्षा सिर्फ साइंटिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: सच में, कभी कभी हम बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और भूल जाते हैं कि जो दुनिया का संतुलन है वो ऐसे छोटे छोटे जीवों पर भी टिका हुआ है।
1: और यही इंटरनेशनल हनी बी डे का सबसे सुंदर संदेश है कि प्रकृति की हर छोटी चीज महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जब भी मैं किसी मधुमक्खी को देखूंगी तो सिर्फ शहद नहीं बल्कि उनकी मेहनत, प्रकृति के लिए उनके योगदान, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचूंगी।
1: बिल्कुल, और शायद हम सभी को भी यह समझना चाहिए और समझाने की कोशिश करना चाहिए बाकियों को कि मधुमक्खियों से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उनको बचाने की ज़रूरत है।
0: मधुमक्खियाँ प्रकृति की छोटी लेकिन अनमोल रक्षक हैं, तो आइए उन्हें बचाकर अपने पर्यावरण और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।

0: दोस्तों आज बुधवार का दिन है, यानी आज बारी है क्रम एक ही फिल्म से की। एक ही फिल्म से वो सेगमेंट है जहां हम किसी एक फिल्म की पूरी दुनिया में जाते हैं, उसकी कहानी, उसके गाने, उसके किरदार, यानी उसकी पीछे की कहानियां, सब कुछ हम जानते हैं।
1: और दोस्तों आज की जो फिल्म है वो बहुत खास है, और जो लोग यंग हैं शायद

0: जिस फिल्म के ज़माने में पैदा भी नहीं हुए थे, उनके लिए भी एक ऐसा सफ़र होगा जो उन्हें याद रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइमलेस होती हैं।
1: तो चलते हैं आज के इस खास सफर पर, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा हिंट।
0: सोचिए एक ऐसा हीरो जो गांव का राज दुलारा है, जिसने कभी शायद स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ना देखी हो, लेकिन दिल का वो बिल्कुल साफ है।
1: और एक ऐसी नायिका जो अपनी आंखों की अदा से पूरी स्क्रीन को ही रोशन कर दे।
0: जी हाँ दोस्तों, तो हम आज जो जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो 1994 में आई हुई फिल्म राजा बाबू है।
1: दोस्तों राजा बाबू एक फिल्म जो अपने साथ लेकर आई थी हंसी, ड्रामा, रोमांस और वो गाने जिन्हें आप चाहते ही नहीं कि खत्म हो।
0: इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो थे डेविड धवन, बॉलीवुड के जादूगर जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कॉमेडी हिट्स दी हैं। वो जानते थे कि सही टाइमिंग, सही डायलॉग, एक सही एक्सप्रेशन, यही फिल्म को सुपरहिट बनाता है।
1: और हीरो के रूप में थे गोविंदा। उस वक्त तक गोविंदा पहले से ही एक जाना माना चेहरा बन चुके थे, लेकिन राजा बाबू ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था।
0: फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी थी वो राजन की थी। एक विजुअल लुक को बिल्कुल 90s के बॉलीवुड की पहचान थी। रंग बिरंगी दुनिया, जिंदा किरदार और वो विलेज सेटिंग्स जो आपको सीधा अपने दिल के और करीब ले जाए, जो विलेज के और पास ले जाए, वैसी थी।
1: म्यूजिक दिया था आनंद मिलन ने। ये डुओ जिसने 90s में एक के बाद एक सुपर हिट्स दिए हैं। और गाने लिखे थे समीर ने, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दिल की बात कहने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं।
0: ये जो फिल्म है वो बनी थी 2.5 करोड़ के बजट में और बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई थी 15.5 करोड़ से ज़्यादा की। यानी सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, पैसा एक ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी भी बना के गया।
1: हालांकि एक रोचक बात यह है कि ये फिल्म ओरिजिनल नहीं थी। ये फिल्म आधिकारिक तौर पर बेस्ड थी एक तमिल फिल्म रासुकुट्टी पर, इसमें तमिल कहानी को थोड़ा बदल कर बॉलीवुड के दर्शकों के सामने डेविड धवन ने इसे पेश किया था।
0: अब हम आपको लेकर चलेंगे सीधा फिल्म की दुनिया में, पर दोस्तों उसके पहले मुझे लगता है इस फिल्म का पहला गीत जरूर सुन लेना चाहिए।

0: तो दोस्तों अब चलते हैं कहानी की शुरुआत पर। मिलिए राजा सिंह से, जिन्हें सब प्यार से कहते हैं राजा बाबू।
1: राजा बाबू एक धनवान ग्रामीण परिवार का इकलौता वारिस है, मतलब पूरा गांव उनका, घर में अमीरी है और एक ऐसा बेटा है जिसे कुछ भी नहीं करना और बाकी सब वो तो हो ही जाता है।
0: अब जब घर में पैसा हो, प्यार हो और कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो तो एक आदमी कैसा हो जाता है। तो राजा बाबू बिल्कुल वैसे ही होते हैं, दिल का साफ है लेकिन थोड़ा, असल में बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है।
1: अनपढ़, हाँ, जिद्दी बिल्कुल, लेकिन बुरा नहीं, यही तो उनकी यूएसपी है। एक ऐसी सीधी साधी सोल जो गलत तरीकों से सही काम करने की कोशिश करती रहती है।
0: और दोस्तों राजा बाबू का एक बड़ा ही खास शौक था, वो रेगुलरली गांव का जो फोटो स्टूडियो था ना, वहाँ जाते थे और हर बार अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर फोटो खिंचवाते थे। कभी वो वकील बन जाते थे, कभी वो फायर फाइटर बन जाते थे, कभी डॉक्टर और कभी कुछ और। स्टूडियो वाला भी सोचता था ये कैसा कैरेक्टर है।
1: और साथ में हमेशा रहता है उनका दोस्त और नौकर नंदू, जिसे शक्ति कपूर ने प्ले किया है। अब शक्ति कपूर जनरली हमें विलेन के किरदार में दिखाई देते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो एक अलग रंग में दिख जाते हैं, राजा बाबू के बेस्ट फ्रेंड और सहायक के रूप में।
0: अब आता है एक और नया सा ट्विस्ट, वो ये होता है कि स्टूडियो में एक दिन राजा बाबू की नज़र पड़ती है एक फोटो पर, और उस फोटो में होती है एक सुंदर सी लड़की। उस सुंदर सी लड़की का नाम होता है मधु।
1: और बस राजा बाबू अपना दिल दे बैठते हैं, एक तस्वीर देखी और मोहब्बत हो गई। वो जो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, यहाँ तो लव एट फर्स्ट फोटोग्राफ था।
0: राजा बाबू मधु का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में लग जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, मधु बिल्कुल तंग आ जाती है। उसके बाद वो ये करते हैं कि एक अखबार में इश्तिहार छाप देते हैं, उस इश्तिहार पे लिखते हैं कि मधु पागल है।

0: ये देखकर मधु अपनी टीम लेकर राजा बाबू के गांव पहुंच जाती है, जैसे कि उनसे किसी तरह का कोई हिसाब करना हो।
1: और यहाँ होता है वो सीन जो पूरी फिल्म में एक यादगार कंफ्यूजन पैदा कर देती है, और यही कंफ्यूजन फिल्म की कहानी को एक नया मोड़ देता है।
0: गांव में घुसने पर भारी अफरा तफरी हो जाती है। मधु का ग्रुप राजा के जिस जो इश्तिहार दिया जाता है ना, उसमें राजा अपना एड्रेस ना लिखते हुए अपने पड़ोसी का एड्रेस लिख देता है। तो मधु ग्रुप के साथ उस पड़ोसी के पास पहुंच जाती है और उसको राजा समझ बैठती है। उसे पकड़कर अपने गांव ले जाती है और बेसिकली गलत आदमी का किडनैप हो जाता है।
1: और फिर आता है ट्विस्ट नंबर 2। मधु को स्टूडियो में राजा की वो फोटो मिलती है जिसमें वो एक वकील के भेष में होता है, और मधु सोचती है कि ये तो वकील है, मतलब एक एजुकेटेड वकील से शादी करना तो अलग बात हुई ना।
0: इसके बाद मधु शादी के लिए तो राजी हो जाती है, लेकिन फिर आता है कहानी में तीसरा ट्विस्ट, पर वो दोस्तों हम आपको इस गीत के बाद बताएंगे।

0: तो दोस्तों, कहानी का जो ट्विस्ट था वो तो आपको गाना सुन के पता लग ही गया होगा। मैं फिर भी बता दूँ तो जो ट्विस्ट होता है वो असली में ये होता है कि राजा नस वकील नहीं होता, वकील छोड़ो कुछ भी नहीं होता। बेसिकली राजा बिल्कुल अनपढ़ है, पूरी तरह से अनपढ़, यानी कि 5वीं में 5 बार फेल होने वाला व्यक्ति।
1: और मधु को मिलता है एक बहुत ही बड़ा धोखा। वो गुस्से में राजा के घर जाती है, शादी के इनविटेशन कार्ड्स फाड़ देती है और राजा के पिता का भी अपमान करती है।
0: राजा के पिता हैं किशन सिंह, जिसका रोल कादर खान ने प्ले किया है। वो एक समझदार और इज्जत से जीने वाले इंसान होते हैं। उन्हें अपने बेटे से प्यार है, लेकिन मधु जैसी लड़की से उनकी इस तरह से बात नहीं बनी, ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
1: पिताजी राजा को फोर्स करने लगते हैं कि एक दूसरी लड़की से जल्दी शादी करने के लिए, एक ऐसी लड़की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इसीलिए राजा से बार बार कहा जाता है कि वो मधु को भूल जाए और उस लड़की से शादी कर ले।
0: राजा मानता नहीं है, वो मधु से प्यार करता है ऐसा वो बोलता है। और यहाँ एक सीन आता है जब राजा इस लड़की के पेरेंट्स का अपमान कर देता है, क्योंकि वो उस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता।
1: और फिर ड्रामा का सबसे बड़ा ट्विस्ट, उस लड़की की माँ जो गुस्से में है वो एक बड़े राज का पर्दाफाश करती है।
0: दोस्तों, राजा बाबू अपने माँ बाप की असली संतान नहीं होता। वो एक मंदिर की सीढ़ियों पर मिला हुआ यतीम बच्चा था, जिसे उनके माता पिता ने प्यार से गोद ले लिया था। यानी कि तब पता चलता है कि राजा बाबू असली में वारिस नहीं है, एक अडॉप्ट किया गया बेटा है।
1: राजा के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इमोशनल झटका होता है। लेकिन जानते हैं क्या, इसके बाद राजा की सोच में एक शिफ्ट आता है। वो तय करता है कि इन लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे बड़ा किया, इतना प्यार दिया, तो उनकी बात मानना तो मेरी जिम्मेदारी हुई। वो पिता की बात मानने का फैसला करता है उसके बाद।
0: पर इस दौरान मधु को भी सच समझ में आ जाता है कि राजा ने कोई धोखेबाजी जानबूझकर नहीं की थी, ये सब एक गलत फहमी थी, यानी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग। वो राजा को माफ करती है और अपना प्यार जाहिर करती है।
1: लेकिन अब राजा उसे कहता है कि वो बदल गया है और मधु को उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन मधु मधु मानती ही नहीं, वो राजा का पीछा करती रहती है।
0: यानी कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं। अब आता है जो मेन विलन है इस मूवी का, वो तो जो इस मूवी का विलन होता है वो होता है लखन सिंह, जो राजा के पिता के भाई बनते हैं। वो कहते हैं कि असल में चोरी छुपे परिवार की जो दौलत है उस पर कब्जा करना चाहता है, और वो कहता है वो सारी पुरानी बातों को याद करवाता रहता है, अपने उन राजा के परिवार को परेशान करता है। प्रेम चोपड़ा ने ये रोल किया था, और उनका विलेन वाला जो अवतार है वो वाकई में तनिष्का अगर देखा जाए तो लेजेंडरी अवतार है।
1: बिल्कुल, लखन अपने बेटे बाके के साथ, जिसे गुलशन ग्रोवर ने प्ले किया है, एक खतरनाक साजिश रचता है। वो राजा के माता पिता को किडनैप कर लेता है और उनका मकसद होता है पूरी दौलत पर कब्जा करना।
0: राजा अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, वो एक बेटे की तरह अपने परिवार को बचाने के लिए निकल जाता है। एक लंबी जबरदस्त लड़ाई के बाद राजा कामयाब होता है और विलेन को हरा देता है।
1: और फिर अंत में राजा के पिता को समझ में आता है कि उनके बेटे का दिल कितनी गहराई से उनसे जुड़ा हुआ था, और फिर वो खुद मधु से राजा की शादी के लिए राजी हो जाते हैं।
0: अब मुझे लगता है कि आप हमारे साथ इस मूवी को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो सोचिए आप इसे सिनेमा में देख रहे हैं, तो उस वक्त सिनेमा हॉल में क्या सीन रहा होगा। तालियों पे तालियां बजने लग जाती हैं,

0: तो दोस्तों ये थी कहानी फिल्म राजा बाबू की। और इसे देखते हुए एक बात है जो हमें बार बार महसूस होती है, और वो ये है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके कपड़ों, उसकी पढ़ाई या उसके दिखावे में नहीं होती है, वो होती है उसके दिल में। इस फिल्म का जो कैरेक्टर है राजा, वो परफेक्ट कभी नहीं था। वो शरारती था, जिद्दी था और कई बार बचकाना भी था, लेकिन जब प्यार निभाने की बारी आई, तब अपने परिवार के साथ खड़े होने की बारी आई, तो वो लड़का सबसे बड़ा निकला।
1: और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी राजा बाबू सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म बनकर नहीं रह गई। वो हमें उस दौर में वापस ले जाती है जहाँ फिल्मों में सादगी थी, रिश्तों में अपनापन था और गानों में एक अलग ही रंग था। राजा बाबू हमें बताते हैं कि प्यार किस तरह से किया जाता है और साथ में परिवार का साथ किस तरह से दिया जाता है। एक जो बैलेंस करने की बात होती है ना, वो राजा बाबू हमें सिखाते हैं।
0: बिल्कुल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा एक ही फिल्म से। चलिए जाते जाते हम आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। तो हमने जो सवाल पूछा था वो ये था कि नीदरलैंड ने भारत को किस राजवंश के 11वीं शताब्दी के ताम्र पत्र वापस किए हैं। तो इसका उत्तर है चोला डायनेस्टी।
1: और साथियों, आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न था वो ये था कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो उत्तर है वो है स्वीडन। तो हम आशा करते हैं कि आपने दोनों ही उत्तर ढूंढ लिए होंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में हमारा साथ यहीं तक था। फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी।
0: और मैं हूँ तनिष्का।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज कर रहे हैं फिल्म कर्ज से, जिसे इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत का अंतिम नगमा हमने लिया है फिल्म राम लखन से। जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत में बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT उमंग

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
3: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी। श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
3: जी जरूर श्रोताओं, अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ

0: जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षावन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
1: जी
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी।
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
6: I am fine ma'am.
7: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
7: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
8: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
8: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
2: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी। दे
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT उमंग।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज की कलाकार हैं गुरुशा दुबे। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये निदा फाजली की लिखी गज़ल।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में गुरुशा दुबे की गाई कुछ गजलें। आइए इनसे सुनते हैं ये एक और गजल।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत का। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं ममता शर्मा और साथी। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये पारंपरिक मालवी लोकगीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं ममता शर्मा की आवाज़ में मालवीय लोकगीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत और आज की कलाकार है ममता शर्मा। आइए इनसे सुनते हैं, इनकी ही आवाज़ में ये पारंपरिक मालवी लोक भजन।

0: लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे ममता शर्मा की आवाज़ में ये मालवी लोकगीत, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही समय में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की

0: सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आपसे थोड़ी देर में शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में भेंटवार्ता होगी, जिसमें प्रगतिशील ग्रामीण महिला कृषक भावना खाटरिया बुगावा से सुनीता पंडित की बातचीत होगी। साथ ही सुनेंगे डिंपल नागर से कुल्लई उद्योग के बारे में जानकारी। रात 8 भोपाल से रिले करेंगे सुर्खियों में दिल ने फिर याद किया, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15। चित्रगीत में पुराने सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे रात 9:15। रात 9:30 चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे नाटक उनका फैसला, ये आप सुनेंगे रात 10:00। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत में शरद साढ़े का गाया गांधारी राग सुनेंगे। ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।

अब एक नज़र कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना से सुबह 6:05 पर। चिंतन करेंगे सुबह 6:30, खेती की बातें होंगी सुबह 6:35 पर। सुबह 7:20 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय होगा। साहित्य के कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 7:20 पर। 7:35 पर सुनहरे पल कार्यक्रम में सदाबहार पुराने गीतों का आनंद लेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत होगा सुबह 9:00। कलाकार होंगे प्रेम नता, नारम देव और साथी। और शाम 6:45 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे किशन लाल, मधुकर और साथी। सुगम संगीत में पलाशी शर्मा से कुछ गीत सुनेंगे सुबह 9:15 और शाम 6:30। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 विवेक करमहे का गाया राग मुल्तानी सुनिएगा। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10:00 होगी। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन सुनेगा सुबह 10:05 पर। एक और फोन इन कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होंगे। दोपहर 12:00 फिल्म संगीत, 12:30 संग्रहालय से, 1:30 लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 चित्रपट संगीत होगा। दोपहर 1:00 आकाशवाणी इंदौर से महिला कार्यक्रम होगा जिसमें बात करेंगे नई रोशनी योजना के बारे में और अपर्णा जोशी से कविता सुनिएगा। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 कार्यक्रम का आगाज होगा कार्यक्रम युवाणी से। फिल्म संगीत सुनेगा शाम 5:45 पर और रात 9:15 चित्रगीत कार्यक्रम में, रात 9:30 पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन में। शास्त्रीय संगीत सुनेगा रात 10:30 जिसमें आप सुनेंगे शशिकांत मनोहर तांबे का गाया राग अभोगी। ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के बीच शिखर वार्ता। प्रदेश कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को दी मंजूरी। तबादला नीति 2026 भी पास। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बैतूल के भीमपुर में लॉन्च की अत्याधुनिक गजेल मशीन। 10 मिनट में होगी सिकल सेल की जांच। और कुछ ही देर में ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की। इस दौरान व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने और रक्षा साजो सामान के सह उत्पादन पर भी काम करेंगे। जहाजरानी, बंदरगाह आधुनिकीकरण और समुद्री अर्थव्यवस्था में भी मिलकर काम करने का फैसला हुआ है।
1: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया,
2: आज करीब करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं, दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल

0: मातृत्व, पितृत्व और ऐच्छिक अवकाश देने के साथ सेवा की आयु सीमा 62 साल करने और निर्दोष साबित होने पर नौकरी वापस देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाने का भी ऐलान किया।
1: हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई 62 साल। ऐसे में माता बहनें भी जो आपके रोजगार सहायक हैं, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज बैतूल के भीमपुर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम में अत्याधुनिक जांच मशीन गजील का शुभारंभ किया। ये मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर में लगाई जाएगी, जहां सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच महज 10 मिनट में हो सकेगी। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आज उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस मामले में परिवार की पूरी मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ फरार पति समर्थ के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत आज कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच शहडोल पहुंचे। वे 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। यहां सरस्वती स्कूल में 18 मई से 8 जून तक चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में 4 प्रांतों के 383 स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस वर्ग में बौद्धिक सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। डॉ. भागवत अपने प्रवास के दौरान राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों जैसे विषयों पर स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नीट यूजी पुनर्परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया। बैठक में ऑनलाइन गुमनाम समूहों के जरिए परीक्षा से जुड़ी फर्जी सूचनाएं फैलाने पर गहरी चिंता जताई गई। गुजरात के कच्छ जिले को राजस्थान और दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा इस शुक्रवार से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुज से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश में आज हजारों दवा दुकानें बंद रहीं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। हड़ताल को प्रदेश के ज्यादातर रिटेल और थोक दवा व्यवसायियों ने समर्थन दिया। भोपाल में केमिस्टों ने ऑनलाइन सिस्टम का पुतला भी दहन किया। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर अभी कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं है, जो सीधे आम लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने आज खंडवा के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रूपये की लागत से बने इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। सीहोर जिले के बुधनी के पारंपरिक लकड़ी के खिलौने अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी खास जगह बना रहे हैं। G20 सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को यहां के कारीगरों द्वारा बनाए गए 500 चरखे भेंट किए गए थे। वहीं दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला बाजार में भी इन्हें खूब सराहा जा चुका है। बुधनी में 29 करोड़ रूपये की लागत से अत्याधुनिक खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है। यहां 51 शेड में कारीगर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2027 की जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिछले वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। आईपीएल का 65वां मैच अब से कुछ देर बाद ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। प्लेऑफ के दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में मैच जीतना होगा। वे 12 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं। मुंबई पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और 8 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य प्रगति पर है। गुना में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बीनागंज स्थित फैंसी पटाखा

खान और गोडाउन का औचक निरीक्षण किया गया। आगरमालवा कलेक्टर ने आज स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। जबलपुर में भारतीय रेल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के तहत पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों में 15 मई से 15 जून तक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी और गहरा जल संकट लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान और सेमिनार का आयोजन किया गया। शिवपुरी में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली अपनी सगली बहन हो न साथेज अपना सगला भाई उनके भारती की राम राम। बहन हो हर बरस आज का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस का रूप में मनायो जावे है। यो इका सारू मनाया जावे है कि इका से पर्यावरण संतुलन बनो रहे, साथेज खाद्य सुरक्षा ने कृषि सारू। मधुमक्खियों न साथेज पराग कण का महत्व के रेखांकित करियो सके करी जाई सके ने उनके बचाने सारू मनखोन में जागरूकता लाई सके हैं। बेणुन तमियो जानो कि एक मधुमक्खी छत्ता से एक बार माए 50 से 100 फूल को दोरो करे हैं। मतलब एक मधुमक्खी छत्ता से, मतलब जब छत्ता से जावे हैं तो 50 फूल हों और 100 फूल हों का पास जाई जाई के उनका परागकण लई लई के आवे है। मतलब 50 से 100 फूल को में घूमे है वे आसपास उसका और उनमें से परागकण लेवे है। और एक पूर्ण शेद बनाने सारू 20 लाख फूल को दोरो मधुमक्खी के करनो पड़े। मतलब 50 से 100 फूल का दोरा तो छत्ता का लिए होए, लेकिन अगर एक पूर्ण शेद बनानो है तो ओका सारू 20 लाख फूल का दोरो मधुमक्खी उनके करनो पड़े। एक औसतन श्रमिक मधुमक्खी अपनी जिंदगी में केवल 1 से 12 चम्मच शेद ही बने पावे हैं। मधुमक्खी जन्म से शेद बनानो नहीं जाने, पर जो अनुभवी मधुमक्खियों होवे नहीं वी उनके शेद बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखावे है। मतलब जो भी अनुभवी रहवे है वे मधुमक्खियों जाई जाई के जो भी युवा मधुमक्खियों होवे नहीं उनके अपना साथ ली जावे और उनके बतावे कि कैसे शहद बनाने की प्रक्रिया होवे है। इना सारू अपन देखा कि सदियों से मधुमक्खी के शक्तिशाली प्रतीक का रूप में पूजो जावे हैं। मतलब एक शक्तिशाली का रूप में इनके देखे जावे हैं, इनके पूजो जावे हैं। लोक कथा ने पौराणिक कथा में इनके

समृद्धि, उर्वरकता ने जिंदगी की अमृत मिठास को प्रतीक भी मान्यो जावे है। एका सारू इनके बचाणो ने इनका प्रति मनक के जागरूक करनो घणो जरूरी हुए। तो आज 20 मई आज का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस का रूप में अपन मनावा हाँ। ने आज दिन बुधवार को है तो पहला पूज्य गणेश के मनावा ने सुनी लेवा बेन ममता शर्मा को गायो यो लोकगीत।

0: अभी अपन ने गजानन गणेश जी को यो लोकगीत सुनियो जिखे गाए थो बेन ममता शर्मा ने। ने देखो अपन बात करा फालसा की, तो फालसा जो है नी वो एक गर्मी को मिलने वालों एक फल है। गर्मी में अपन फालसा के देखने के मिले और अपन जो फालसा है नी वो सेहत सारू घणोज फायदेमंद होवे है। देखना माए तो यो घणोज छोटो सो फल है ने रेवे भी घणोज छोटो है जरा सो, पर फायदो ढेर सारो इखे देखा तो इसको फायदो घनो ढेर सारो है। इखे खाने से शरीर के तुरंत ठंडक होवे है। इखे जद भी अपना के ऐसा लगे कि शरीर में ठंडक नहीं है, गरम गरम लगी रही है, तो अगर इखे खाई लांगा तो तुरंत ठंडक होवेगी। साथ ही जो गर्मी माए आने वालो फल है जो घनो स्वादार ने खट्टो मीठो फल है, औषधीय गुण से भी भरपूर होवे है यो, ने गर्मी माए शरीर के ठंडक ने नरी बीमारियों से भी बचावे है। फालसा लू ने पानी की कमी के शरीर में हुई जावे तो ओका से भी खे बचावे है। तो कदी लू लगी जावे तो फालसा को शरबत अपन अपना जिखे भी लू लगी ओके पी ले सका हाँ। साथ ही शरीर में बहुत बार कहीं हुई कि पानी की कमी हुई जावे है तो ओमें भी अपन इको शरबत बने ने ओके पी ले सका हाँ, और चावा तो ऐसे भी खाई सका हाँ। फालसा की तासीर ठंडी होवे है, इखे खाने से गर्मी में लू लगने को खतरो कम रहे है ने शरीर में पानी की कमी भी दूर हुई जावे है। साथ ही पाचन शक्ति के मजबूत यो फालसो है यो बनावे है, फाइबर से भरपूर होवे है और फालसो पाचन क्रिया के दुरुस्त भी राखे हैं ने कब्ज गैस ने अपचन जैसी समस्या हो पे एक है राहत दिलाने माए यो घणो मदद करे है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने माए भी घनी मदद करे है। इका माए विटामिन सी जो होवे नी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाना माए फायदामंद होवे है। फालसो खून की कमी के भी दूर करे है, इमें आयरन पायो जावे है। इके खाना से हीमोग्लोबिन बढ़े है ने शरीर माए थकान ने कमजोरी दूर होवे है। दिल सारू भी यो घणो फायदामंद होवे है। फालसा को उपयोग करने सारू अगर अपन फालसा खाई रहा है और यूं अगर क्योंकि खट्टो मीठो रेवे है तो कदी इमें अपन कालो नमक ने चाट मसालो नाकी नहीं के खावा तो यो और स्वाददार बनी जावे है। और अगर खाना में क्योंकि यो घणो छोटो सो फल रेवे है और इसका साथ ही इसमें बीज भी निकले हैं तो खाना में थोड़ो अपना कैसो लगे कि बहुत बखत लगी रही है तो अपन एको शरबत भी बने ने राखी सका हाँ। ने जद ऐसो लगे अपना के कि गर्मी लगी रही है या शरीर में थकान या खून की कमी लगी रही है तो अपन एको शरबत भी बने ने पी सका हाँ। वैसे तो फालसो स्वास्थ्य सारू घणोज फायदामंद होवे पर एको ज़्यादा सेवन शरीर के नुकसान भी पहुँचाई सके है। एका सारू इखे ज़्यादा खाना से बचनो चाहिए, जितनो हो सके संतुलित रूप में एक उपयोग करनो चाहिए। ने बहनों आप सुनी लेवा बेन प्रगतिशील कृषक भावना खाटरिया से या भेंटवार्ता या गो गांव जिला खंडवा से है ने इनसे बातचीत करी रही है बेन सुनीता, तो सुना या भेंटवार्ता।
1: आज सौभाग्य को बात छे कि अपना साथ में प्रगतिशील ग्रामीण कृषक बेन भावना ग्राम भोगावा जिला खंडवा से अपना बीच आयेली छे। अपन इनका से बातचीत कराए कि खेती बाड़ी का काम कसा कराए न घर परिवार का कसा संभाले, पर चौपाल पर करा उनको स्वागत न कमा बे राम राम
2: राम राम।
1: जैसी बात करी देखो खेती की बात करा कि किसानी की बात करा बैन न का बिना तो पूरी हुई नहीं सकती है। तुम्हारा से बात करा कि तम तुम्हारी दिन की शुरुआत कसी करो।
2: हमारी दिन की शुरुआत हम सुबह से जल्दी खड़ा हूँ, आज 4-5 बजे उठने को हमारा समय रहे, फिर उसके बाद में घर की साफ सफाई कराएं कि हमारा पास ढोर भी पड़े ले जानवर तो हम उनका पास गोबर निकालना जावा उनकी साफ सफाई कराएं, फिर उनका नहवानू धोवानू पानी पिवानू दूध निकालनू करनू, फिर घर बच्चा न की तैयारी कराएं। अभी स्कूल की छुट्टी लगे फिर स्कूल को टाइम रहे तो स्कूल न को भी उनका लेन तैयार कराएं टिफिन बनावाते। हमारो तो बड़ो परिवार भी छे तो हम मिलजुल कर रवान।
1: बिल्कुल तुमने बात करी है कि ढोर ढंकार करें यानी में से पानी पीना पिवाना है, कितना ढोर ढंकार छे तुम्हारे?
2: कम से कम 10-12 ढोर छे हमारा यहाँ। गाय छे, भैंसीन छे, बैलिया छे, बछड़ा बछड़ी छे, हल्का पेड़ा छे, बहुत सारा जानवर छे हमारा पास।
1: मतलब दूध को भी उत्पादन हुई जाए? दूध
2: हाँ, दूध को उत्पादन भी कर लेवा, घी भी बना लेवा, छाछ भी बेची देवा, सब तरह से अलग अलग काम करा।
1: खेती का काम न भी ढोर ढंकार न को उपयोग हुई?
2: हाँ उपयोग करा, बैल रखा नहीं, बैल से भी खेती करा।
1: अच्छा ये तो बड़ो अच्छी सुनने को आज तम पशु को पूरा पशुधन को इस्तेमाल
2: करी रहे हैं।
1: खेती में कितनी बीघा खेती होएगी तुम्हारी?

0: हम रहे 20 बीघा जमीन छे।
1: अच्छा
0: 20 बीघा जमीन का हम मजदूरों द्वारा भी करवाते हैं, घर के सदस्य भी मिलकर करते हैं, और बड़ी फैमिली होने के साथ ज्यादा कर हम खेती हम स्वयं ही करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात छे कि अगर अपनी खेती छे
0: हाँ
1: तो ना अपन तो ठेरिया देखो सपूत तो अपन
0: हाँ
1: का अपन हाथ से ज करनू
0: करनू
1: चाहिए ना, अपना
0: पड़ेगा
1: हाथ जगन्नाथ कहीं नहीं,
0: जी।
1: तो बिल्कुल जरूरी छे कि अपन अपनी खेती का अपन खुद देखा। अभी तमने काई चोपेलो होएगा कि
0: आप
1: फसल कटी गई?
0: नहीं, अभी हमने मूंग बोया था तो की फसल अभी कटी रही, मजदूर ने से कटवाई भी रहा, आगे पाछे से कोई का कटे भी गया, कोई का चली भी रहा, कोई का दिन 8 दिन बाद भी आवागा। अब कपास की तैयारी भी चलू भी रही, जैसा खेत खाली होता जा रहा है ओका हम कपास के बीज लगाने की तैयारी भी करी रहे।
1: तो मन में अच्छो लगे फसल आई तो पकड़ देखे
0: फसल
1: मैंने?
0: आई रही ओका अच्छो लगा, अभी धूप भी बहुत ज्यादा गिर रही है तो हम जरा सुबह से जल्दी खेत में चले जाते हैं और 12-1 बजे तक ही खेत में काम करते हैं, जब तक कटे वटे का काम कर लेते हैं,
1: बिल्कुल सही कहो कि खेत भी संभाल लो ना
0: घर
1: घर
0: भी
1: भी संभाल लो,
0: संभालो।
1: तो 12 बजे तक दोपहर दोपहर में अपन खेत का देखी लेवा
0: हाँ
1: न पछाई न ना अपना घर के गृहस्थी का संभाला। तमने बात करी कि गन सारा मनुष्य घर में रही रहे छे,
0: हाँ
1: संयुक्त परिवार छे?
0: संयुक्त परिवार छे, सास ससुर छे, जेठ जेठानी छे, बच्चा छे, भानेज छे, सब ऐसा परिवार मिले जुली कन रवा।
1: अच्छा एक बात ये पूछना चाहूंगा कि ऐसी माथा पच्ची नहीं होती, सब बराबर से अपनो काम काज
0: सब
1: कर ले?
0: बराबर से काम कर रहे, कोई माथा पच्ची नहीं होती, सब अपना एक दूसरा का साथ में काम कर रहे, जो काम रुकी रोज ना काम कर, दूसरा बैठक बात भी करे कि अपनो कहाँ करनू चे। पहले तो जेने कोई भी काम करो तो पहले बैठक बातचीत कर लियो कि अपनो कहाँ का खेत में कहाँ की फसल लगानी छे, आ केना खेत में कहाँ की फसल लगाने से अपनों को उत्पादन मिलेगा।
1: बिल्कुल सही कहो। यो तम जो बैठ नचे आपस में घर
0: हाँ
1: की महिला नचे
0: जी,
1: वो डिसाइड करो कि एक बात कहूं कि भाई न का डिसाइड करना, भाई
0: नहीं
1: न का निर्णय लेना दे कि कई हो।
0: मिले जुले कर निर्णय लेवा कि पहला समय रहे कि पहला महिला ना कर लईकन नहीं चलता था, आज के समय से महिला भी जरा पढ़े लिखेल छे, तो आज बैठी कने बात करना अंते महिला ने सिर्फ जानकारी लेवा क्योंकि महिला ने भी खेत में काम करी रही ना।
1: तम पढ़ाई की बात करी,
0: हाँ
1: तम पढ़े लिखेल छे?
0: जी हाँ, मैंने 10वीं पास करेल छे,
1: अरे वाह ये तो बहुत अच्छे हो। बालक ने कभी पढ़ाई रहेल छे तम?
0: बालक भी पढ़ी रहे, सब अलग अलग स्कूल में बनी रहे बालक भी, कोई का इंदौर में बनी रहा है, कोई का गांव में बनी रहा है, कोई का सनावत में बनी रहा है, सब अलग अलग जगह बनी रहा है
1: एक अपन उंधाड़ा की बात करा तो पानी बड़ी समस्या रही,
0: जी।
1: तो तुम्हारे यहाँ पानी को सोच है तुम्हारा गांव में कसो छे, दिक्कत वाली छे?
0: हमरा गांव में तो नर्मदा माता की देन बहुत बड़ी जे, ओका वे नहर ना हमरा गांव में से खेते नमन से निकल जाए, तो एका से कुआ कदी खाली होता नहीं, ओका हम कदी 2 मोटर धरो 3 मोटर धरो तो भी पानी की हमका समस्या है नहीं, हमका तो तीन ही फसल कई की भी बोवांग ओका हम पानी भर मार मिले,
1: बिल्कुल यो
0: गांव में
1: तो
0: पानी की कमी है ही नहीं
1: बिल्कुल अच्छो कहो। नहर न हुई गए जे,
0: जी।
1: नहर न से तम सिंचाई कर रहे
0: नहर
1: छे?
0: हमारे कुएं में खेत में कुआ है तो नहर का पानी हमने इस तरह नहर की जो झीरे होती है वो अपने आप कुएं में ही चली जाती है, कुआ भरा ही रहता है।
1: वाह ये तुमने बहुत अच्छी बात कही कि भूजल स्तर की अगर हम बात
0: हाँ
1: कर ले वहां कि नहर नाणा से वो स्तर बराबर आई हो
0: बराबर
1: ना, कम
0: होते
1: कुआं में 12 ही महीना
0: पानी
1: पानी रहे।
0: रहे
1: एक अलावा दिन की कसी करो खेती बाड़ी तो करो, जैसे
0: जी।
1: कई असो अपनो शौक भी पूरा करो जो जब का कई को काम असो रहे कि अच्छो लगे उसका बारे में भी हम आपसे जाननो चाहेंगे।
0: काम ऐसो कि हम सिले विले को काम भी थोड़ो बहुत कर ले, गांव में कोई ब्लाउज सीनू कहीं भी काम होए, सलवार सूट कोई सीनू ऐसो काम भी अपनो टाइम मिला तो निकाले ने अपने अपनी रोजनदारी अपनी अलग भी हुई जाए, फिर समूह नमन जुड़ेल छे तो काम हमारी बचत खाता भी कर ले वन, तो
1: अच्छा
0: ओका से भी हमको बहुत फायदो छे।
1: तो किना समूह से जुड़ेला छे आप, समूह के बारे में थोड़ा सा हम जाननो चाहेंगे।
0: हम तो विनायक समूह से जुड़ेल छे, वो समूह बहुत बड़ो छे, ओखाम जितना भी समूह 10-12 महिलाएं बनावा समूह ना का ज्यादा मिला झगड़ो हो जोखाम
1: बिल्कुल
0: कि यार
1: सही।
0: मैंने इतना दिया इतना हुआ ऐसा, ये 5 साल तक भी रख सकते हैं अपने मन में, वैसे भी अपनों पैसे की जरूरत है तो लोन लेकर उसमें ले लो, कम ब्याज भी लगता है, जिस महिला को किसी पैसों की जरूरत है तो हम इकट्ठे करते उन पैसों को उनको दे देते हैं कि भाई आप किस्त द्वारा भर देना, पर इससे कोई सिलाई मशीन ले लेता है, कोई भैंस ले लेता है तो उससे उसका इनकम भी चलती है और वो भरपाई भी कर देता है
1: अच्छा तो आपको समूह अच्छा तरीका से काम कर रहे छे
0: जी।
1: और जिनी बहन का आर्थिक जरूरत पड़े
0: जरूरत पड़े
1: सहायता की तो तुम उनका वो
0: उनकी सहायता भी करें,
1: सहायता भी कर
0: सहायता
1: देना
0: करें
1: पछा
0: मुझे
1: फिर वो उना
0: उस
1: समूह
0: किस्त
1: में।
0: बनाकर, जैसे उनके पास कभी 500 होते तो 500 के रूप से ही किस्त बनाकर रखते, क्योंकि ज्यादा पैसे कोई करता नहीं, जितने पैसे हो उतने की किस्त बनाओ कि भाई आपको जितनी बचत हो रही है उतनी किस्त बना लो आप। तो उस द्वारा हम इकट्ठे करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं।
1: तो समूह भी अच्छा तरीका से चली रही है और आपकी जो जरूरत न वो भी पूरी हो रही। एक हम लाडली बहन जो योजना चले सरकार की, कई तुम्हारा गांव में तम या तुम्हारी जो सखी सहेली न वो भी ओको लाभ ले रहे छे।
0: हाँ हमका भी मिली रो देखो लाभ, हमका भी हर महीना 1500 रुपया कर दिया, पहले 1250 था, अब 1500 मिली रहे। वो पैसा भी हमारा बहुत काम में आई जाए, हमारी जो जरूरत रहे वो हमारी पूरी भी हुई जाए, खेती में भी लगे ले पैसा, वो हमको बहुत वकासी आर्थिक मदद मिली रही।
1: अच्छा, जब जरूरत पड़े
0: जरूरत पड़े हम निकाले ले वहां, जब तक इकट्ठा भी रहा, इकट्ठा कभी कहीं भी काम हो, बीज लेना हो उसमें भी हम डाल देते हैं, या अपने लिए कुछ लेना हो उसमें भी हम लगा देते हैं,
1: अपनी जरूरत
0: जरूरत भी पूरी हो जाती है,
1: परिवार की जरूरत भी, आप खेती बाड़ी में भी जरूरत पड़े तो वो भी दे दे। ये तो बहुत अच्छा लगे, पूरा तरीका से आप जुड़ेला छे खेती से। एक चलते चलते हम आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारी सुनने वाली बहन का कई कहना चाह कि किना तरीका से संयुक्त परिवार बने न अपना खेत खड़ा कर संभाली सके, अपना परिवार का संजोई न रख सके।
0: हाँ तो ये कहना चाहूँ बहनों होनी कि मिलजुल के रहना से परिवार को उन्नति हुआ, परिवार को बांटनू चाहिए, जितना तो परिवार मिली जुली रहेगा उतो बढ़ेगा, उतो हमारो देश बढ़ेगा। आन परिवार खेती में भी एक दूसरा की समझ लेना सी, एक दूसरा की पूछताछ लेना सी, खेती की उत्पादन भी बढ़ेगा। अरे कोई बोले कि हम ऐसी फसल नहीं लगाता, उसी हम लड़ाई झगड़ा करना में अपनों खुद को नुकसान हो, ऐसा लड़ाई झगड़ा में फिर हम फसल के टेम निकाल दे वन फसल लगती ही नहीं। अब जैसे कपास की फसल लगी रही तो कपास की फसल लगाओ तो मिली जुली कर लगाओ, एक दूसरा पूछेगा हमको कहाँ को बीज लगाऊ छे,
1: बिल्कुल
0: मदद मिली रही।
1: बिल्कुल सही कहो तब ना कि मिली जुली ना एक राय हुई,
0: एक राय हुई का ना करो
1: काम करोगा। और हमको आपसे मिली ना बहुत अच्छो लगे कि आप सच्चा रूप में परिवार के साथ जुड़ेला छे और प्रगतिशील तरीका से आप खेती किसानी को काम भी कर रहे छे। आप ग्राम भोगावा जिला खंडवा से हमारा बीच आया और आपने इतनी अच्छी हमारी बहन से बात न साझा करी, हमारो मन भी प्रसन्न हुयो। चौपाल पावण कलेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद बहनों। अभी अपन ने प्रगतिशील कृषक महिला बहन भावना से यह चर्चा सुनी ने इनका से बात करी रही थी बहन सुनीता ने। मंडी का भाव आ गया है सहयोगितागंज से, तो मंडी का भाव अपना किसान भाई बहनों उनके बताई देवा। आज का मंडी का भाव रहा गऊ जी की आवकरी 2,565 क्विंटल, भाव रहो 2,100 से 2,881, मॉडल भाव रहो 2,491। सरसों जी की आवकरी 7 क्विंटल, भाव रहो 6,695, मॉडल भाव और अधिकतम भाव भी यही रहो। सोयाबीन जी की आवकरी 944 क्विंटल, भाव रहो 4,000 से 7,600, ने मॉडल भाव रहो 7,365। मिर्ची जी की आवकरी 170 क्विंटल और मिर्ची को भाव रहो 3,790 से, अधिकतम भाव रहो 16,700, ने मॉडल भाव रहो 11,900। चना जी की आवकरी 296 क्विंटल, भाव रहो 3,805 से 10,900, ने मॉडल भाव रहो 5,960। मटर जी की आवकरी 154 क्विंटल, भाव रहो 2,800 से 4,125, ने मॉडल भाव रहो 3,850। मूंग जी की आवकरी 281 क्विंटल, भाव रहो 5,700 से 7,815, ने मॉडल भाव रहो 7,000। मक्का जी की आवकरी 30 क्विंटल, भाव रहो 1,645 से 1,930, ने मॉडल भाव भी यही रहो। उड़द जी की आवकरी 31 क्विंटल, भाव रहो 4,695 से 7,000, ने मॉडल भाव रहो 4,695। इमली जी की आवकरी 49 क्विंटल, भाव रहो 4,100 से 20,000, ने मॉडल भाव रहो 5,950। मसूर जी की आवकरी 1 क्विंटल, भाव रहो 5,805, ने अधिकतम भाव ने मॉडल भाव भी एको योई रहो। मेथी दाना की आवकरी 2 क्विंटल, भाव रहो 4,020 से 4,070, ने मॉडल भाव भी एको 4,020 ही रहो। तुअर जी की आवकरी 13 क्विंटल, भाव रहो 3,680, अधिकतम भाव रहो 6,785 ने मॉडल भाव रहो 3,680। डालर चना जी की आवक रही 3,313 क्विंटल, भाव रहो 6,000। मॉडल अधिकतम भाव रहो 9,575 ने मॉडल भाव रहो 8,405। अमचूर जी की आवक रही 279 क्विंटल, भाव रहो 5,680 से 6,000 ने मॉडल भाव रहो 5,780। राजमा जी की आवक रही 16 क्विंटल, भाव रहो 4,300 से 6,905 ने मॉडल भाव रहो 4,300। वसेज लक्ष्मीबाई नगर प्रांगण से भी मंडी का भाव आया है, जिसमें सोयाबीन जी की आवक रही 11,031 क्विंटल, भाव रहे 4,775 से 8,000 ने मॉडल भाव रहे 7,475। गेहूँ जी की आवक रही 4,723, भाव रहे 2,100 से 2,731 ने मॉडल भाव रहे 2,050। चना जी की आवक रही 50 क्विंटल, भाव रहे 4,005 से 5,660 ने मॉडल भाव रहे 5,400। डालर चना जी की आवक रही 12 क्विंटल, भाव रहे 8,180 से इतने ही भाव अधिकतम को भी रहे ने मॉडल भाव भी यही रहे ने बहनों। अब सुनी लेवा कुल्लई उद्योग से अपनी बहनों कैसे लाभ ली सके है, इका बारा में जानकारी दी है डिम्पल नागर ने, इनका से बातचीत करी रही स्मिता।
3: भाई बहनों, हम बखत बखत पे ऐसी नरी सारी जानकारी ना इकट्ठी करा हाँ कि जीका से हमारा खेती किसानी में साथ साथ हमारी गृहस्थी में भी नरो फायदो होए। और आज हम ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम जो है उके सुनी रहे हाँ, तो उका में हमारी जो बहन ना रहे उनका सारू भी हम कहीं ना कहीं ऐसी बात ना लावा, ऐसी ऐसी बहनों से बात करा जीका से भी आगे चली के कहीं ना कहीं काम करने की सोची सके है। तो भाई बहनों देखियो, हमने कि कई बार हमारा एक जो घर है उका में भी हम रहते रहते ऐसा नरा सारा काम है ऐसा करी सका जिका से हम कोई ना कोई कमाई करी सका और कमाई का साधन हमारे हुई जाए तो भाई घर गृहस्थी में भी काम आए, हमारा बच्चा ना के भी काम आए। वैसे आज हम बात करांगा हमारी बहन डिम्पल नागर से जो कि इंदौर से है। सबसे पहले तो मैं डिम्पल जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से, ग्राम लक्ष्मी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: धन्यवाद मैम, नमस्ते।
3: मैम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप घर पर ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कि कोई ना कोई आपकी इनकम जैसे कुछ ना कुछ कमाई होती रहे।
4: मैम मैं घर से ही कर रही हूँ अभी, मतलब गेहूं की जो कुल्ही बनती है
3: जी
4: हम वो बनाते हैं।
3: अच्छा।
4: हाँ, और वो हम मार्केट में मतलब बेचते हैं, सेल करते हैं।
3: अच्छा।
4: उससे मेरा परिवार मतलब चलता है, अर्निंग होती है वो मुझे।
3: तो ये आप मतलब कैसे बनाते हैं, कितनी मात्रा में बनाते हैं रोज?
4: हाँ मैम, जैसे हम लोग 5 किलो गेहूं का हम स्टार्ट करते हैं।
3: हाँ।
4: जो सीधा रहता है 5 किलो गेहूं लिया तो हम उसे गलाते हैं। दो तीन दिन तक हम उसे गलाते हैं अच्छे से, पानी से धो धोकर उसको रखते हैं एक कोठी में।
3: अच्छा।
4: फिर उसके बाद जब वो थोड़ा पक जाता है, फूल जाता है गेहूँ।
3: हाँ।
4: तो उसको एक मशीन में हम पीसते हैं, उसका दूध निकालते हैं पूरा गेहूँ का।
3: अच्छा।
4: दूध निकाल के पूरा एक तपेले में एक दूध बन जाता है, उसको हम एक दिन रखते हैं। उसको भी हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी बदलते हैं क्योंकि वो ऐसा मटमेला पानी आता है थोड़ा। हाँ। तो उसको साफ करने के लिए हमें हर 2 घंटे में हम उसको पानी बदलते हैं जिससे वो साफ दूध दिखता है। जैसे ही वो साफ दिखने लग जाता है एक दिन बाद हम उसे जितना दूध रहता है उतनी ही मात्रा में हम पानी लेते हैं और उसको पकाते हैं। उसको
3: अच्छा।
4: कहते हैं चीका बनाना। वो अच्छा गाढ़ा होता है, फिर वो जब पक जाता है तब हम उसे कुल्ही जो साचा होता है इसका उसमें भरते हैं और फिर हम ऐसा धूप में सुबह मॉर्निंग जल्दी मतलब उसमें ठंडी धूप में उसको हम ऐसे बिछाकर साचे से बनाते हैं और उसे हम 2 दिन तक सुखाते हैं। फिर उसकी पैकिंग होती है मैम, फिर हम मार्केट में उसे हम सेल करते हैं, बताते
3: अच्छा।
4: हैं हर दुकानदार के पास जाते हैं, उनको हम अपना सैंपल देते हैं, उन्हें पसंद आता है तो फिर वो हमसे खरीदते हैं, उससे
3: अच्छा।
4: हमें अर्निंग होती है।
3: तो
4: मतलब हम 5 किलो गेहूं पर हमें मिनिमम हमें 200 रुपए का प्रॉफिट होता है सब कुछ करके।
3: अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने कहा कि आप दुकानों पर जाकर उनसे बातचीत करते हैं, उनको आपका सैंपल देते हैं कुल्लई का,
4: जी।
3: तो क्या मतलब दुकानों के अलावा भी आप और भी कहीं अपनी वो करते हैं कि जैसे बाजार वगैरह जो
4: हम घर
3: कुछ
4: पे
3: होता
4: भी
3: है?
4: रहता है,
3: अच्छा
4: घर से भी लोग खरीद के ले जाते हैं,
3: जी हाँ
4: क्योंकि कुल्हड़ी ऐसा है कि समर में सब खाते हैं,
3: हाँ हाँ
4: आम के रस के साथ बहुत खुशी से खाते हैं लोग इसे, और घर से भी हम इससे सेल करते हैं, दुकानों में भी देते हैं, किराने की दुकानों पर भी जाता है, और
3: अच्छा
4: बहुत शौक से खरीदते हैं लोग अच्छे से। और ये प्योर होता है, बिल्कुल नेचुरल, हाथ का बना हुआ,
3: ये,
4: इसमें कोई मिलावट नहीं होता है इसमें
3: अच्छा
4: कुछ। हाँ, कुछ दुकानदारों को इसमें कलर वाला भी चाहिए होता है, तो हम इसमें कलर भी मेंशन करके किसी को, जैसे ये शादियों में भी देते हैं मैम, तो
3: अच्छा
4: हम
3: अच्छा
4: कलरफुल भी बनाते हैं इसको। ये ऐसे तो व्हाइट बनता है, पर इसमें अगर हम थोड़ा सा कलर, मीठा कलर होता है,
3: हाँ
4: ऑरेंज हुआ, ग्रीन, तो हम वो बनाकर भी देते हैं।
3: अच्छा
4: दुकानदारों
3: अच्छा
4: के ऊपर रहता है उन्हें कैसा चाहिए, पर अधिकांश वो सफेद ही लेते हैं, और वो प्योर होता है, हाथ से बना हुआ, कोई मिलावट नहीं होता है,
3: जी
4: तो
3: जी
4: शुद्ध रहता है ये।
3: हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब
4: जी,
3: शुद्ध के साथ ही घर की बनी हुई चीज
4: शुद्धता,
3: अगर
4: बिल्कुल,
3: मिलती है तो व्यक्ति पसंद
4: हाँ,
3: करता है आज के जम समय
4: कोई
3: में।
4: मिलावट नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध रहता है मैम।
3: हाँ, मैं और जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कुल्लई का बताया कि गेहूं की आप कुल्लई बनाते हैं और
4: जी,
3: उसका प्रोसेस भी काफी बड़ा है, तो आप अकेले करते हैं या साथ में घर के और भी
4: और
3: कोई?
4: नहीं, घर के सब परिवार मिलकर करते हैं,
3: अच्छा, परिवार
4: बच्चे भी
3: में और भी
4: शामिल
3: लोग
4: है
3: आपके
4: इसमें
3: साथ जुड़े
4: मेरे।
3: हुए हैं?
4: हाँ बिल्कुल, हस्बैंड भी करते हैं, वो सुबह चीका जो होता है वो कूटने का काम वो करते हैं
3: हाँ
4: अच्छे
3: हाँ
4: से। फिर बच्चे भी मेरे हैं, तो बच्चे भी कुल्हड़ी जब बनाते हैं हम, तो उसको पलटना होता है, थोड़ा
3: हाँ हाँ
4: सा
3: सब
4: गिली
3: मिलके।
4: रहती है उसके, तो हाँ, तो बच्चे पूरी हेल्प करते हैं, सब पूरा परिवार हेल्प करता है।
3: अच्छा, तो
4: जी
3: इसको और भी कोई ऐसा कुछ शुरू करा है आपने इसके कि सिर्फ कुल्ला ही बनाते
4: मैम,
3: हैं?
4: इसके साथ हम अभी आलू की चिप्स जो होती है वो हम बना रहे हैं, और मूंग की दाल की बड़ी, चने की दाल की बड़ी, ये भी हम
3: अच्छा
4: चालू
3: अच्छा
4: करते हैं, तो ये भी बिल्कुल शुद्ध रहता है, घर से बना हुआ रहता है। ये भी हम जैसे सैंपल देते हैं दुकानों में, वो भी हम देते हैं, इससे भी हमें अर्निंग होती है बहुत अच्छे से।
3: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये मान लीजिए कि आप प्रतिदिन ये बनाकर, और
4: जी
3: जैसे घर के लोग बाकी तो दूसरा काम भी होता ही होगा,
4: हाँ
3: इसके
4: जी
3: साथ ही
4: मैम,
3: आप
4: ये
3: ये
4: मेरा
3: एक
4: सुबह सुबह
3: एक्स्ट्रा
4: 8 बजे
3: काम कर
4: तक
3: लेती
4: पूरा हो
3: हैं,
4: जाता है, उसके बाद हम कुछ दूसरा भी कर सकते हैं।
3: तो आप ये काम करके अंदाजन मतलब आपका महीने में कुछ ना कुछ अच्छा अर्निंग कर लेती हैं,
4: हाँ मैम,
3: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब हमारी बहनें भी चाहें। और अगर हम तो हमको पता ही नहीं है, सही में देखा जाए तो हमारी बहनें अचार, पापड़, बड़ी और इसे
4: हाँ
3: कुल्लई, ये जो चीज़ें आप बता रही हैं, इस तरह से
4: जी
3: बना के और बाजार में बेच के और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं ना?
4: जी मैम, जरूर, ये सब मैं चाहूंगी सभी महिलाओं को अपने लिए करना चाहिए,
3: आप
4: अपने पैरों पर खड़ा
3: मतलब,
4: होना चाहिए उन्हें।
3: हाँ, और मुझे लगता भी है कि आज हमारी बातचीत सुन के जो मैं हमारी बहनें सोचती हैं कि भाई हम बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते, इसमें अपना घर भी रह देख लेते हैं
4: घर
3: अपन,
4: पे भी, हाँ, मैं
3: और
4: मैम बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर
3: वही
4: में ही ये काम करती हूँ, और बच्चों को भी देखती हूँ, परिवार को भी देख लेती हूँ, और मेरा
3: बिल्कुल
4: अर्निंग भी हो जाता है।
3: बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है आपने बताई डिंपल जी। आपसे बात करके मुझे जरूर से ये बात का एहसास भी हुआ है कि हमारी जो बहनें हैं वो जरूर से इससे कुछ न कुछ और भी सीख लेंगी और अपना आप अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करेंगी, और उनको भी जो आता होगा जिसमें वो
4: जरूर,
3: अच्छा से कर सकती होंगी
4: हाँ,
3: वो
4: थैंक
3: जरूर से करेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
4: यू, नमस्ते, धन्यवाद।
2: बेनहुन, अभी अपन ने कुल्लई उद्योग से कसे ले लाभ एक बारे में जानकारी सुनी। जानकारी दे रही थी डिंपल नागर ने, इनका से बातचीत करी रही थी स्मिता बेन ने। आज घरेलू व्यंजन में अपन बनावांगा केरी को मुरब्बो, क्योंकि केरी को मुरब्बो बनाने सारू अपना के जो केरी चाहिए रहनी, वे बड़ी बड़ी केरी जो आए नहीं, जो जिसमें खटास कम रहे वे वाली केरी लागे है। तो 2 से 4 केरी को अपन मुरब्बो बने ने रखी सका हाँ। तो 2 से 4 केरी लीने पहला उनके अच्छे से धोई लेवांगा, और धोने का बाद उनके उनका जो फोतराना है वे छोली ने अपन कई करांगा कि किसनी से उनके कीसी लेवांगा। जब कीसी किसनी से कीसी लेवांगा ओका बाद ओमे अपना के जैसे अपन ने दो केरी ली है तो ओमे अपना के दो कटोरी शक्कर मिलाई ने रखनी है। थोड़ी देर बाद अपना के कढ़ाई में थोड़ो सो घी नाकी ने उनके जो अपन ने केरी और किसी हुई केरी को जो केरी है और शक्कर है ओके मिलाई के जो राखी है उसके कढ़ाई में नाकनो है और जब तक कि उसको पानी नहीं छूटी जाए और केरी कट्ठी नहीं हो जाए तब तक उनके चलाते रहनो है। बीच बीच में उनके ढकते भी जानो है ताकि केरी अच्छे से बफी जाए। पर ध्यान रखना है कि अगर इसके अपना के दो चार महीना के लिए रखनो है तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं नाका। जब अच्छे से शक्कर को पानी छूटी जाएगो और यो अपनो जो केरी और इसको मिश्रण है थोड़ा कट्ठो होने लगेगो तो एमें इका बाद अपन गैस के बंद कर ही देवांगा और इस उसका बाद अपन अपनी जो इलायची है ओके पीसी के ओमे नाकी देवांगा। केसर का जो केसर है वह थोड़ा सा पानी में घोली में घोली के एमें नाकी देवांगा और इस तरह से एक अपन ठंडो होने राखी देंगा। जब ठंडो ही जाएगो तो एक अपन कांच की शीशी में भरी ने राखी के जब अपना के खाने की इच्छा होए तब एक अपन अचार को मुरब्बो अपने केरी को मुरब्बो खाई सका। ने अब सुनी लेवा बैंड मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री को गायो यो लोकगीत।

0: वायो यो लोकगीत सुनियो ने घड़ी की सुई कह रही है कि कार्यक्रम का बखत ही चलियो है, तो अपना भाई बहनों से ला विदा ने केवा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हमारी चर्चा का फोकस है प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत इटली के द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार। इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। अम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा उनके 5 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। आप इटली में हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं, तो आपने न केवल भारत इटली के संबंधों की प्रगति देखी है बल्कि इसे आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस यात्रा में अपने मीडिया ब्रीफिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की।
0: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री का ये जो इटली दौरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत कैसे बनाएगा, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
1: देखिए, भारत और इटली के जो संबंध हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इसमें लगातार प्रगति हुई है। और 2015 के पहले भारत और इटली के संबंधों में एक नीचाई देखी गई थी, जो क्योंकि मरीन्स का इशू हमारे सामने आया था और उसके साथ साथ भारत और इटली के संबंध काफ़ी नीचे चले गए थे। इटली की जो इन्वेस्टमेंट थी भारत में वो यूरोपियन देशों की तरफ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा थी एक समय पर। उसके बाद इटली दूसरे नंबर पर था, लेकिन जो मरीन्स इशू था उसके चलते इन संबंधों में एक गिरावट आई। 2014-15 के बाद हमने देखा जब भारत और इटली ने इस इशू को ब्लैक बर्नर पर रखा और दोनों ने डिसाइड ये किया कि इसकी मध्यस्थता की जाए, तो जो स्पेशल कोर्ट है उसके तहत इस केस को ले गए दोनों देश आपसी सहमति के साथ में। और उसके बाद से हमने देखा है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली गए हैं ये उनकी पहली बायलैटरल विजिट है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी कई बार इटली जा चुके हैं लेकिन किसी और संदर्भ में गए थे। और इस बार इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। इस बार जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसमें जो व्यापार है

0: इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके साथ साथ रक्षा और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी,
1: बिल्कुल
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर भी बात हुई है। तो बहुत सारे मुद्दे इस विजिट में उठे हैं।
1: अम्बेसडर वाधवा, आपने भी कहा कि इस दौरे के दौरान बहुत चीज़ों पे दोनों देशों के बीच में बात हुई, और आपने जैसा कहा कि आर्थिक उसमें जो एक सहयोग है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो नई दिल्ली और रोम के बीच 2025 में $16.77 बिलियन तक का व्यापार हुआ था, और प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में 2029 तक ट्रेड जो है, व्यापार है, उसको $23.2 बिलियन यानी के लगभग €20 बिलियन से ज्यादा पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के €20 बिलियन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है।
1: अम्बेसडर वाधवा, अभी आपने सुना जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बहुत मजबूती से अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारत और जो इटली है, दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, भारत की अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक बहुत ही बेहद गुणकारी लोग हैं, बहुत स्पेशल हमारा टैलेंट पूल है, हमारी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, और वहीं जो इटली है उसके पास अपनी वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। तो दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी विशेषता है उनको कैसे अपने दोनों के व्यापार को और दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: देखिए, भारत और इटली की जो इकोनॉमीज हैं काफी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं दोनों के बीच में, और जब जॉइंट एक्शन स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान निर्धारित किया गया था 2025-2029 का, तो उसमें ये तय हुआ था कि ये जो रोड मैप है बायलैटरल कोऑपरेशन का, उसमें व्यापार और इन्वेस्टमेंट एक अहम उसका स्तंभ रहेंगे, और उसके चलते दोनों देशों ने काफी कोशिश करी है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इटली की तरफ से जो इनोवेशन है और फैशन है और लग्जरी है जिनके लिए इटालियन कंपनीज जानी जाती हैं, एक बहुत ही वाइब्रेंट एसएमई सेक्टर है जिसके चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन में इटली यूरोप में पहले नंबर पर एक समय पर पहुंच गया था। तो मशीनरी के तौर पर देखें तो इटली दुनिया भर को अपनी मशीनरी सप्लाई करता है। तो इसके चलते जो जो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें हमने देखा है कि भारत के साथ इटली की काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं। इसी के चलते जो 800 और जो कंपनियां इटली की भारत में आजकल सक्रिय हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे खाद्य पदार्थ हुए, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है। भारत में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा काफ़ी सालों से हो रही है, किस तरह से जो फूड प्रोडक्शन है उसको बचाया जा सके और जो वेस्टेज है उसको कम किया जा सके, तो उसमें इटालियन कंपनीज काफ़ी सक्रिय हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के जो क्षेत्र हैं उसमें इटालियन कंपनीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो भारत ने देखा है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसकी जो डिमांड है इटली में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 5-6 ऐसे सेक्टर्स भारत के हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, लेदर आप देख लें और उसके साथ साथ टेक्सटाइल्स वगैरह, तो ये सभी सेक्टर्स इटली में इनकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। तो ये जाहिर है कि जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 20 बिलियन यूरो का एनुअल ट्रेड बाय 2029, मुझे लगता है उससे पहले ही ये पार हो जाएगा।
1: जी, अभी आपने भी कहा और अब प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये जो इटली की हम बात कर रहे थे कि उसकी जो एक विशेषता है उसकी की

0: डिजाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में जो गुणवत्ता में उसकी उसके लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस पर भी एक टिप्पणी की थी, चलिए सुनते हैं।
1: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है, इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
0: अम्बेसडर बाधवा, अभी जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दोनों देशों की उन्होंने जो हमारी विशेषताएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स, उनकी बात की, फिर उन्होंने कहा डिजाइन एंड मेक इन इटली एंड इंडिया एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 11 साल से जो भारत में सरकार है, पूरा फोकस जो रहा है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की रहा है, और अब इसमें हम दूसरे देशों के साथ भी जो साझेदारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: तो हमने जैसा देखा है कि जैसे कि आपने कहा, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काफी जोर दिया जा रहा है और उसके चलते काफी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम है जिसका मकसद यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उसको 15% से लेकर जीडीपी की 15% से लेकर 24% 25% तक ले जाया जा सके। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफी जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो तभी संभव होगा जबकि भारत में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड वस्तुएं हैं उनका उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसके लिए एक इनपुट चाहिए, जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ काम करना जरूरी हो जाता है। तो इटली का जो डिजाइन और जो प्रिसिशन प्रधानमंत्री ने जिक्र किया जिसका उसके चलते भारत में ये जो स्केल है उसको आगे कर और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह जो इटली के जो फिनटेक और फैशन की जो एरियाज हैं, भारत में जो मोबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी, इटली और इंडिया के बीच में मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुई है और इसके चलते जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो और जो टैलेंट है भारत का वो इटली में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपने स्पीच में आज उसका जिक्र किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान एक और फोकस एरिया था जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमैक। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कल रोम पहुंचने के बाद इसके बारे में ट्वीट भी किया था। पिछले कुछ सालों में जब दुनिया ने किसी न किसी वजह से सप्लाई चेन में रुकावट देखी है तो आईमैक में को बढ़ावा देना और इसमें सहयोग कितना जरूरी है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि इटली के लिए भी, जो कि कुछ साल पहले तक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था लेकिन उसके बाद बाहर हो गया था।
2: बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा, क्योंकि भारत और इटली आईएमएफ के प्राथमिक पोल्स हैं। भारत एक तरफ है और इटली दूसरे एंड पर है। बीच में दूसरे जितने भी पार्टनर्स हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ग्रीस है, इस तरह के कंट्रीज और इसराइल को मिला लें उसमें, ये सभी कंट्रीज आईएमएफ के प्रमुख पात्र हैं। आईएमएफ का क्या मतलब है? आईएमएफ का मतलब यह है कि जो सप्लाई चेन्स इस एरिया में डेवलप हो सकती हैं इस कनेक्टिविटी के थ्रू, उसके साथ साथ जो गैस की पाइपलाइंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो सभी इसी कॉरिडोर के थ्रू डेवलप हो सकती हैं, और रेल रोड्स का जो एम्फेसिस है आईएमएफ का उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो पोर्ट्स हैं दोनों एंड्स पर भारत में और इटली में उनके चलते जो व्यापार है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये सभी 5 या 6 सेक्टर्स हैं जो आईएमएफ के थ्रू डेवलप हो सकते हैं, और इटली और भारत दोनों आईएमएफ के डेवलपमेंट में इक्वल साझेदार हैं। उनको उनकी बहुत चाहत है कि आईएमएफ सक्सीड करे ताकि ये इन सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़े। और आपने जैसे कहा कि इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया था, उसने यही देखा है कि बीआरआई जो है वो ओपेक है और उससे कई सारे प्रॉब्लम्स उपस्थित हुए हैं दूसरे देशों में, और इटली नहीं

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार्य अर्चना वर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, विचार व्यक्त करने के लिए सबके अपने भाव होते हैं और उन भावों में कोई प्यार से, कोई गुस्से से, तो कोई ताने से, तो कोई रूठ कर अपने विचारों को व्यक्त करता है।

श्रोताओं, हेलो डॉक्टर संबंधी ये सूचना है, इस बुधवार दिनांक 21 मई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है नवजात शिशु एवं बच्चों में हिट स्ट्रोक से बचाओ। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर दीप शिखा चौधरी शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM

101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए, गुरुवार 21 मई 2026, समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। फोन करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुरुवार दिनांक 21 मई 2026, समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

रूठे हुए को मनाना, फिर से उनको खूब सताना, प्यार से उनकी बात बताऊं, चलो आज थोड़ा और सताऊं। रूठ जाना उनकी एक कला है, जो सबके लिए एक बला है। फूलों का खिलकर मुरझाना, माली को भी खूब रिझाना, बच्चों जैसी एक अदा है। नटखट होना एक कला है, हंसना मुस्कुराना कहीं खो गया है। मनाते मनाते सब थक गए, रात में नींद से जैसे ही जग गए। फिर भी न मना पाए उनको, देखते हैं हंसते इतलाते जिनको।

मना लो आज उनको तो देखूं, जरा मनाने का तरीका तो सीखूं। मना न पाता हूं मैं अभी उनको आज मनाने चले हैं सब, जिसको उनकी एक अदा बहुत प्यारी है, सबके लिए ये अदा बड़ी न्यारी है, सब चाहते हैं उनको रिझाना, मनाने का तरीका साथ में सुझाना।

रूठने से उनके सूनापन सा लगता है, रोने में भी उनके अपनापन सा लगता है। हंसते हैं हम उनके आंखें दिखाने पर, रोते हैं वो भी सबके दिखावे पर। रूठ जाते हैं तो मैं भी रूठ जाता हूँ, झूठ ही सही पर मैं भी हट जाता हूँ। अच्छा लगता है साथ चिल्लाने में, बाकी को भी सबके साथ डांट खिलाने में।

रुलाना, हंसाना और सताना सब जानते हैं, मगर जो सच्चा प्यार करते हैं वह तो बस रूठे हुए प्यार को मनाना जानते हैं।

नाकाम हो गई तमाम कोशिशें तुझे मनाने की, सच बता कहाँ से सीखी है तूने ऐ सनम, बड़ी दिलकश अदाएं तेरे रूठ जाने की।

0: आओ रूठों को मनाए हम, गिनती यारों की बढ़ाए हम, छोड़ के नफरत की बातें कुछ गज़लें इश्क की गाए हम, दूरी बढ़े दूर यूँ रहने पर ही यारों पास पास आ जाए हम, चेहरे का नूर बढ़ाने लई एक दूसरे को हंसाएं हम, सब यारी में चलता है बातें दिलों को न लगाएं हम, ये दर्द घटेगा अपना भी दर्द औरों का बंटवाएं हम, जो भी बोले दिल से बोले राज नहीं कोई छुपाए हम, ये यार हसीन जो हैं हमारे ठुमके इनसे लगवाएं हम। इजाज़त दे अर्चना वर्मा को, नमस्कार। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट

0: मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashwani, and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गहरा दाग का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रगीत। श्रोताओं, हेलो डॉक्टर संबंधी एक सूचना है। इस गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है नवजात शिशु एवं बच्चों में हिट स्ट्रोक से बचाओ। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर दीप शिखा चौधरी शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए। गुरुवार 21 मई 2026 समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। फोन करना बिल्कुल ना भूले। गुरुवार 21 मई 2026 समय सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और आइए चित्रगीत की ओर रुख करते हैं और सुनते हैं फिल्म छलिया का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को लिखा कमर जलालाबादी ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: चित्रगीत का अंतिम नगमा फिल्म निकाह से महेंद्र कपूर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है हसन कमाल ने और संगीत रवि का है।
1: अभी अलविदा मत कहो।

इसी गीत के साथ चित्र गीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 होने को है। कुछ ही पलों में चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
2: जी। धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
4: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में, परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन

0: है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
1: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
2: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
3: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
0: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं, तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ

0: शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भलीभांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
0: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down. And grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
0: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत के इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने

0: रहा है, भारत को उतना फायदा नहीं होना रहा है, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं, वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है, और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहां पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
3: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा?
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए, और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए

0: ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन। Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy, and we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
0: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे प्रस्तुत है नाटक उनका फैसला। कलाकार हैं विमला धामी, डी एस गोडबोले, मंजू शुक्ला, सुमित जोशी, यामिनी शर्मा और नूतन आकरकर।

0: रीनू, ओ रीनू, पता नहीं कहां मर गई है। रीनू, ओ रीनू,
1: आती हूँ मम्मी।
0: क्या है मम्मी, मैं तो किचन में ही थी, तुम्ही ने तो कहा था कि चाय बना दे और अब खुद ही चिल्ला रही हो।
2: अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बड़बड़ मत कर, चल जाके दूसरे काम कर ले, बर्तन साफ करके रोटियां बना ले। मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होता और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ।
0: वैसे भी तुम कौन सा काम करती हो माँ, सारा काम तो मैं खुद करती हूँ और फिर कॉलेज भी जाती हूँ।
2: थोड़ा सा काम क्या कर देती है, अपने आप को महारानी समझने लगी है। जा जा चल काम कर जाके।
0: जा रही हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है।

0: अरे कौन है भाई?
1: माँ मैं हूँ रीनू।
2: अच्छा तो आ गई महारानी आवारा गर्दी करके।
3: ओफो माँ, तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो मैं तुम्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाती।
2: एक तो देर से आती है और ऊपर से जबान लड़ाती है। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है इतनी पढ़ाई करने की? कौन सा तुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है? घर का चूल्हा ही तो फूंकना है ना। तेरे बाप को भी कितनी बार समझाया कि क्या जरूरत है इन जवान जवान लड़कियों को कॉलेज भेजने की और अपनी नाक कटाने की, पर मेरी सुनता ही कौन है? मैं होती ही कौन हूँ?
3: हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे ऐसे नरक में जन्म दिया? मौत भी तो नहीं आती मुझे।
1: कौन है?
4: मैं हूँ दीदी, विक्की।
3: अच्छा खोलती हूँ भैया।
4: दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना दे दो।
3: विक्की तू मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, फिर हम साथ में ही खाएंगे। मैं अभी तो आई हूँ कॉलेज से।
4: अच्छा दीदी मैं मुँह हाथ धोकर आता हूँ। अरे दीदी माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दी? अच्छा वो अंदर सो रही हैं। दीदी क्या आज फिर झगड़ा हुआ?
3: हाँ हुआ था। अच्छा चल तो तुम हाथ मुँह धो ले।
4: जाता हूँ बाबा जाता हूँ।
3: अब कौन है?
5: हम हैं दीदी।
3: ओ रीना बीना आ गई हैं। चलो अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गई, अब साथ मिलकर खाना खाएंगे। चलो जाओ तो, विक्की मुंह धो रहा है, जाकर तुम लोग भी हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अरे भाई चलो, खाना लगा दिया है, जल्दी आओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा।
4: आए दीदी बस दो मिनट। लाओ दीदी खाना। माँ ने खाना खा लिया है क्या?
3: नहीं, माँ को जाकर उठा लाओ, कहना खाना खा लो आकर।
4: अच्छा जाता हूँ। माँ, ओ माँ उठो चलो खाना खा लो।
0: नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो।
4: अरे तुम रो क्यों रही हो? चलो ना खाना खा लो। क्या बात है कुछ बताओ तो।
0: कुछ नहीं, तुमसे कहा ना कि जाकर खा लो, मुझे नहीं खाना है। जा दिमाग मत खा मेरा।
4: ठीक है मत खाओ, मेरा क्या है। दीदी माँ खाना नहीं खाएंगी।
3: क्यों क्या बोली माँ?
4: कुछ नहीं, बल्कि और मेरे को उल्टा डांट दिया। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं अपने घर के लोग।
3: नहीं विक्की ऐसे नहीं बोलते, वो आखिर हमारे माँ बाप हैं। चलो तुम तो खाना खा लो, अभी तो शाम को महाभारत होना ही है। चलो विक्की खाना खाओ। आज क्या होमवर्क मिला है? अगर मिला है तो लो चलकर होमवर्क कर लो, शाम के 5 बज गए हैं, फिर डैडी भी आते होंगे, तुम्हें खेलते देखेंगे तो फिर यूं ही भड़क उठेंगे। चलो
6: विक्की चलो चलकर पढ़ने बैठते हैं।
4: चलो दीदी।
0: अरे महारानी बच्चों की ड्रेस भी अच्छी तरह देख लेना, कहीं गंदी तो नहीं हुई है, और ये भी देख लेना कि बस्ते तो साफ है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ रख कर आते हैं ये लोग।
3: लो पढ़ने का समय आया और हुक्म आ गया, अब तो बजाना ही पड़ेगा।
1: कौन है?
7: मैं हूँ रीनू बेटे।
1: आई डैडी।
7: रीनू बेटे एक गिलास पानी देना।
3: जी डैडी अभी लाई। लीजिए डैडी पानी।
7: रीनू तुम्हारी माँ नहीं दिखाई थी, कहाँ गई है आज तुम्हारी माँ? बड़ी शांति छाई हुई है घर में।
3: जी वो अंदर हैं।
7: अरे वो घर में है और शांति भी है, ऐसे कैसे हो गया भाई?
3: जी डैडी वो आप चाय लेंगे या कॉफी?
7: बेटे चाय ही पिला दो, तब तक मैं तुम्हारी मम्मी को देखूं और बेटे चाय भी वहीं ले आना। हाँ, ये शांति कहीं तूफान के पहले की तो नहीं है? सुधा, ओ सुधा, अरे भाई क्या बात है आज? अरे अरे अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है? कुछ बताओगी भी या बस यूं ही?
6: तुम्हें क्या फिक्र रही है मेरी? चाहे मैं रोऊं या हंसूं, तुम्हें तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं। इतने सारे बच्चे पैदा करके मेरे लिए छोड़ दिए तुमने, एक को भी अकल नहीं आई। खुद तो पिंड छुड़ाकर काम पर चले जाते हो और मेरे लिए इन मुसीबतों को छोड़ जाते हो।
7: अरे पर बाबा,
6: कह देती हूँ अब इनको भी अपने साथ ले जाया करो, मुझसे नहीं संभलते तुम्हारे ये बच्चे।
7: अरे भाई बस भी करो अब, कि बस यूं ही जली कटी सुनाती रहोगी। मैंने पूछा उसका जवाब तो देते नहीं बना और लगी भाषण झाड़ने।
6: हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझ में तो कुछ अकल ही नहीं है ना।
7: राम राम राम राम,
6: मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की मैंने।
7: देखो देखो, तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। मुझे कुछ बताओगी भी कि क्या बात है? आखिर तुम्हारा पारा इतना क्यों चढ़ा हुआ है?
6: अपनी लाडली बेटी से ही पूछ लो ना।
3: लीजिए डैडी, ये चाय पी लीजिए।
7: हाँ, वहां रख दो टेबल पर। तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है?
3: क्या कह रही है?
6: आहा, बड़ी सीधी बन रही है महारानी जी अब तो। अपने बाप के सामने अब क्यों नहीं बोलती कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और तुम्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाती? बोल बोल।
3: माँ, तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझसे साफ साफ क्यों नहीं बोलती?
6: देखा देखा आपने, आपकी लाडली को कितनी इज्जत करती है ये मेरी।
7: रेनू, अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करते बेटे। जा, माफी मांगो अपनी माँ से।
3: मैं माफी नहीं मांगूंगी।
6: सुना, अब ये मुझसे माफी क्यों मांगेगी? बाहर जो इसको सब कुछ मिल जाता है, अब घर की फिक्र क्यों करेगी ये?
7: याने क्या मतलब है तुम्हारा?
6: आजकल तुम्हारी बेटी कॉलेज से लेट आती है और पूछो तो कहती है एक्स्ट्रा पीरियड लग रहे हैं। पता नहीं क्या गोल खिलाती है ये बाहर जाकर। मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, पर तुम मेरी सुनते ही कब हो। जब नाक कट जाएगी ना, तब याद आएगी मेरी बातें तुमको।
7: अरे पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
6: करना क्या है, बस इसका कॉलेज जाना बंद कर दीजिए और अकेले बाहर आना जाना भी, और जल्दी से कोई लड़का ढूंढकर इसको यहाँ से रवाना करो, वरना ये कुछ कर बैठेगी, मैं तुमसे आज बता दे रही हूँ।
3: नहीं नहीं माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी पढ़ाई तुम्हें क्यों अखरती है माँ? दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं। प्लीज माँ, मैं तुम्हारे पैर पढ़ती हूँ, ये सितम मुझ पर मत ढाओ माँ, मुझे पढ़ने दो।
7: देखो देखो, ये ठीक कह रही है, अगर इसे पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़।

0: सुनने दो बिचारी को।
1: नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। एक बार कह दिया सो कह दिया।
2: ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
1: डैडी आप भी?
2: क्या करूं बेटे, क्या करूं मैं भी।
1: सुबह के 5:30 बज चुके हैं पर ये बेहया अभी तक सोई हुई है। रेनो, ओ रेनो, अरे उठ अब तो, इतनी देर हो गई अभी तक और तेरे उठने का ठिकाना नहीं। तुझे कोई शर्म हया है भी या नहीं? कुछ ख्याल भी है कि बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है? चलो उठो, उठो। खुद को कॉलेज नहीं जाना तो क्या दूसरे बच्चों को भी नहीं जाना?
3: माँ उठती हूँ ना, 5 मिनट और सो लेने दो। रात को भी तो देर से सोई थी ना।
1: बड़ी आई 5 मिनट में उठने वाली, रात भर सोई ही तो रही। चल चल उठ जल्दी से, आलसी नहीं की।
3: अच्छा माँ, लो उठ गई, अब तो चैन आ गया।
1: चलो चलो अब सब बच्चों को उठाओ, काम शुरू करो, मेरा तो सिर फटा जा रहा है।
3: चलो पहले विक्की को ही उठाती हूँ। विक्की, ओ विक्की, भैया चलो उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। देखो अगर तुम्हें देर हो गई तो माँ मेरी जान खा जाएगी।
4: दीदी अभी तो बहुत देर है।
3: उठो उठो
4: स्कूल में जा।
3: देखो ये बात माँ को कौन समझाएगा, चलो उठो।
4: अच्छा अब तुम कहते हो तो उठ जाता हूँ।
3: मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम मुँह हाथ धोकर आओ। बिना, चलो तुम लोग भी उठ जाओ जल्दी वरना देर हो जाएगी।
5: रीना, हे रीना उठ जल्दी से वरना माँ दीदी बहुत गुस्सा होगी। दीदी तुम जाओ मैं आती हूँ।
3: चलो भाई नाश्ता तैयार है,
6: लाओ ये नाश्ता, पहले मेरी बस आएगी।
3: लो विक्की खाओ, फिर मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ आती हूँ। 7 बजने को है, तुम्हारी बस ना निकल जाए।
6: बस दीदी मैं तैयार हूँ।
7: हाय रीनू।
3: हेलो यार। अरे रीता तू कैसी है?
7: बस यार बढ़िया हूँ।
3: आज इतनी सुबह सुबह इधर कैसे, मेरे यहाँ आ रही थी क्या?
7: अरे नहीं यार, मैं तो इधर अपनी दीदी के यहाँ जा रही थी, तुम दिख गई सो तुमसे बात करने लगी।
3: अच्छा चलो थोड़ी देर इस पुलिया पर बैठते हैं, कुछ गपशप मार ले। हाँ
7: यार चलो बैठें। अच्छा यार ये तो बताओ तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? अब तो ठीक तरह से रहती है ना कि वही?
3: अरे नहीं यार, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, अब तो मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी रीटा।
7: क्या रीनू तुम कॉलेज क्यों नहीं आओगी? अरे भाई कॉलेज से तुम्हारी माँ के झगड़े का क्या वास्ता भला?
3: अरे सारा वास्ता उन्हीं के झगड़े से ही तो है। तुम्हें तो ये पता ही है कि मेरी माँ शुरू से ही मेरे साथ पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। पहले वो मेरे कपड़ों पर बोलती थी, फिर मेरे बैठने उठने और खाने पीने के साथ साथ उसे मेरे पढ़ने पर भी एलर्जी होने लगी है। उनका कहना है कि बस मैं दिन भर घर पे ही रहूं, न किसी से बात करूं, न किसी से मिलूं और ना कोई मेरी सहेली मेरे घर आए। अरे कभी कभी मैं सोचती हूं कि मेरी सगी माँ होते हुए भी मुझसे ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करती हैं?
7: यार ये तो हद हो गई रीनू। एक बात है, इतने ताने सहने के बाद भी तुम उसी घर में हो, मेरे ऊपर ये सब गुजरे ना तो मैं तो उस घर में एक पल भी ना रहूं। और तुम्हें तो मालूम है मैं अपने घर में कोई काम नहीं करती, घूमती भी हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। एक बात कहूँ, तुम किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती?
3: शादी? मेरे जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, मेरे पास है ही क्या उसे देने को।
7: अरे यार मजाक ना समझो, तुम इतनी सुंदर हो, घर का सारा काम भी अच्छी तरह से कर लेती हो, और क्या चाहिए किसी लड़के को।
3: तू तो ऐसे बोल रही है रीटा जैसे मेरे लिए लाइन लगी हो लड़कों की, क्या हम तुमसे शादी करने के लिए बैठे हैं?
7: तू भी यार बस। देखो रीनू एक बात कहूँ, कोशिश करो तो कोई

0: बोलिए रीटा, चाहे मुझे माँ के पैर ही क्यों ना छूने पड़े, मैं तो कोशिश करूंगी जरूर।
1: तुम नहीं मानोगी। खैर, मैं तुम्हारी अच्छी सहेली हूं, इस नाते तुम्हें एक अच्छी सी सलाह दे रही थी। अच्छा, अब चलते हैं, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी जान खा जाएगी अगर जरा भी लेट हो गई तुम तो।
0: अच्छा चलो, प्लीज रीटा मुझे देखो गलत ना समझना। हाँ अच्छा, मिलेंगे फिर।
1: ओके यार, बाय बाय। अच्छा तो आ गई महारानी, कहाँ लगा दी इतनी देर, अब आ रही हो, किससे मिलने गई थी तू?
0: ओफो माँ, तुम मुझे हमेशा उल्टा सीधा ही क्यों बोलती हो, सीधे भी तो पूछ सकती हो कि तूने इतनी देर क्यों लगा दी।
1: हाँ हाँ, तो बड़ी लाट साहब है ना, मुझे कमा कर खिलाती है, जो मैं तुझसे डर कर बात करूं? अरे मैं तो जो मुझे कमा कर खिलाता है ना, उसके भी एक ना सुनूं। चल जा यहाँ से, पीछा छोड़ मेरा। तुझे तो मौत भी नहीं आती, घर को नरक बना रखा है तूने।
0: हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी आंख का कांटा बनकर खटकती हूँ, इतना ही बुरा लगता है मेरा यहाँ रहना, तो धक्के देकर घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अच्छा है, जान छूट जाएगी तुम्हारी।
1: हाँ हाँ, मैं तो निकाल ही देती अगर तेरे डैडी का ख्याल ना होता। अब चुपचाप यहाँ से चली जा, जाकर काम करना, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझी?
0: जा रही हूँ, तुम्हारे पास बैठना भी कौन चाहता है। आईनी, तू ही बता मैं क्या करूं, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे इतने दुख मिल रहे हैं? क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह अपने अरमानों का खून करके गुजार दूंगी? क्या मेरी कोई इच्छाएं नहीं, क्या मेरे कोई सपने नहीं? नहीं, अब मैं ये सब कुछ नहीं सहूंगी, अब मुझे कोई ना कोई फैसला खुद ही करना पड़ेगा, मेरे लिए कोई नहीं सोचता, सब अपने ही बारे में सोचते हैं। अब मैं इस घर में रहकर इनके लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगी, अब मैं यहां से दूर कहीं दूर चली जाऊंगी। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन डैडी, डैडी के दिल पर क्या गुजरेगी, क्या वो मुझे माफ कर देंगे? नहीं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, नहीं, मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा सकती, मैं आत्महत्या कर लूंगी। हाँ, तुम उन्हें नीचा नहीं दिखा सकती तो ऐसा करो, आत्महत्या कर लो, सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा, है ना? बड़ी बहादुर बनती हो, लेकिन अब वो बहादुरी कहाँ गई जब फैसला करना पड़ा? अगर तुम्हारे बारे में वो लोग नहीं सोचती तो तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम उनके बारे में सोचो। जाओ, चली जाओ यहां से, अगर अपने जीवन को संवारना हो तो चली जाओ, चली जाओ। हाँ, हम मुझे यहां से सवेरा होने के पहले निकल जाना चाहिए, यही मेरा आखिरी फैसला है। डैडी, मुझे माफ कर देना, विक्की, रीना, बीना, अपनी ना समझ दीदी को बुलाना ना, मैं तुम लोगों के पीछे ही यहां इतने दिनों तक टिकी रही, अब तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मां, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे,

0: क्या है?
1: रीनू कहीं नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ मर गई है वो।
0: अरे सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो?
2: यहीं कहीं होगी।
1: अरे नहीं नहीं, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, नाक कट गई हमारी तो, तुम्हारी लाडली कालिख पोत गई है। अरे वो किसी के साथ भाग गई है। मैं ना कहती थी तुमको किसी दिन हमारी नाक कट जाएगी वो।
0: क्या कहती हो? हाँ, क्या भक्ति हो?
1: हाँ,
0: क्या
1: हाँ, ये देखो, ये देखो उसके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी।
0: लाओ लाओ, देखो क्या लिखा है।
1: पढ़ो।
3: डैडी, माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश बेकार है। डैडी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी रीनू।
0: रीनू?
1: देखा देखा, मैं तो उसके लिए कुछ हूं ही नहीं।
0: चुप रहो, बकवास बंद करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम उसे एक मिनट भी चैन से नहीं लेने देती थी।
1: अच्छा?
0: जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती थी, कोसती रहती थी। अब मैं उसे कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूंगा मैं उसे?
1: अब रहने दो, अच्छा हुआ जो बला टली। अब उसे ढूंढ कर क्या करोगे? वैसे भी उसे एक न एक दिन तो जाना ही था, सो चली गई।
0: सुधा! अरे तुम माँ हो कि पत्थर हो जो अपने बेटी के बारे में ऐसी बातें करती हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती?
4: क्या हुआ डैडी? डैडी क्या हुआ? मम्मी, बेटी को क्या हुआ?
0: बेटे, तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए चली गई। बेटे
4: नहीं, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। डैडी प्लीज, उसे वापस ले आओ। डैडी उसे वापस ले आओ।
1: डैडी डैडी, हमें दीदी के पास जाना है। डैडी हम यहाँ नहीं रहेंगे।
4: हाँ,
1: हमें दीदी के पास ले चलिए। अरे चुपचाप बैठ जाओ, बड़े आए अपनी दीदी के चहेते।
4: माँ, तुमने ठीक नहीं किया।
1: चल चल जा, काम कर, भाषण मत दे। चलो जी, आप भी उठो, जाओ ऑफिस जाओ। अब तो वो चली गई है, मरी तो नहीं, जिंदा है अभी वो।
0: सुधा! सुधा! मैं जा रहा हूं, शाम को देर हो जाएगी। तो साल हो गए उसे खोजते खोजते, इसी दिन हमें छोड़कर चली गई थी। बेटे रीनू, जहां भी रहो सुखी रहो।
1: छोड़ो भी, तुम्हें तो जब हो जब रेनू ही रेनू दिखती है। अजी, इतने सारे बच्चे नहीं हैं क्या?
0: ठीक है,
1: मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ, दहेज का बोझ तो नहीं रहा हम पर।
0: अब तुम चुप भी रहोगी।
5: कौन है? पोस्टमैन।
0: क्या है
5: जी? रजिस्ट्री है।
0: लाओ भाई लाओ। कहाँ से आई है चिट्ठी?
5: जी साहब, वो दिल्ली से है।
0: दिल्ली से? किसकी चिट्ठी है?
5: देख लीजिए साहब।
0: हाँ लाओ लाओ। ठीक,
5: ये यहाँ दस्तखत कर दीजिए।
0: हाँ
5: यहाँ। अच्छा साहब, चलता हूँ।
0: अच्छा। सुधा सुधा सुधा, देखो देखो, तुम्हारी बेटी की चिट्ठी आई है।
1: किसकी? तुम्हारी लाडली की? क्या लिखा है उसमें?
0: मेरी लाडली? अरे 2 साल हो गए उसे गए हुए, उसकी अब जाकर एक चिट्ठी आई है, पर तुम्हें वो भी अखर रही है। पर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी अक्ल का कसूर है यह। खैर, देखू तो सही मेरी बेटी कैसी है, क्या लिखा है उसने। पूजनीय डैडी, मम्मी जी, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा है आप भी कुशल होंगे।
1: हाँ, हमारी कुशलता की तो बड़ी चिंता की है उसने।
0: तुम चुप रहो, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैंने शादी करने का फैसला किया।
1: हाँ, देखा देखा अपनी लाडली को, इसी के लिए भागी थी वो।
0: अब मुझे चिट्ठी पढ़ने दोगी या बकबक करने जाओगी?
1: पढ़ो पढ़ो चिट्ठी पढ़ो भाई।
0: आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है आप मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन तक क्या करती रही, तो डैडी आपको ये जानकर खुशी होगी कि घर छोड़ने के बाद मैं दिल्ली के नारी उद्धार गृह में आ गई और यहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वाह बेटे, और अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती हूँ। मेरे ऑफिस के ही एक लड़के से दोस्ती हो गई है और हमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया है, उन्हें जाति पाति और दहेज में जरा भी विश्वास नहीं है। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा और आप हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे 10 तारीख तक। मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरे छोटे भाई बहन कैसे हैं लिखे। आपकी बेटी रीनू। वह बेटा देखा देखा मेरी बेटी का, मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी। उसे तुम अगर पढ़ने देती ना तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती। अब भी हम अपनी भूल का प्रायश्चित कर ले तो अच्छा है।
1: काहे की भूल, वो तो ढोंगी है। शादी तो उसने कब की कर ली होगी, लेकिन अब उसे कोई परेशानी होगी तो वो तुम्हें और हमें याद कर रही है। नहीं तो 2 साल से क्यों नहीं याद किया। कोई जरूरत नहीं हमें वहां जाने की और नाक कटाने की।
0: बस बस बस करो। अरे जैसा इंसान का दिल होता है ना, वो वैसा ही सामने वाले के लिए सोचता है।
1: हाँ,
0: तुम्हारा दिल है ना, तुम्हारा दिल काला है काला, इसीलिए तुम्हें तो दाल में कुछ न कुछ काला ही नजर आता है। तुम जाओ या न जाओ, मैं तो बच्चों को लेकर उसे आशीर्वाद देने जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा 10 बार जाऊंगा।
1: हाँ हाँ हाँ जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगी, समझे।
0: विक्की बेटे, पता तो शायद यही है, नेम प्लेट पर उसी का नाम है ना, जरा पढ़ो तो बेटा।
4: अरे हाँ, नेम प्लेट पर दीदी का ही नाम है।
2: हाँ देखो तो,
4: हाँ देखो
2: दीदी का घर कितना बड़ा है।
4: हाँ हाँ देखो।
0: रीनू रीनू बेटा देखो कौन आया है।
6: ओ डैडी, रीना बीना तुम सब।
4: हाँ, हाँ दीदी हम आ गए। दीदी कैसी हो?
6: अच्छे हैं। तो, माँ कहाँ है? लगता है माँ का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। आइए ना डैडी। डैडी कैसे हैं आप?
0: अच्छा, बहुत अच्छा हूँ बेटे। बेटी से दूर रहकर खोजते खोजते कैसे दिन काटे हैं मैं ही जानता हूँ, पर खुशी है, खुशी है कि तुम सही सलामत हो। अच्छा ये तो बताओ, दामाद कहाँ है, कैसे हैं?
6: जी वो
0: आओ बेटे, खुश रहो बेटे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि बच्चे कम हो तो परिवार में सुख शांति रहती है, बच्चे ज्यादा हो तो परिवार बिखर जाता है, उनकी देखभाल भी नहीं हो पाती है। इसीलिए इसीलिए ही हमारी बेटी को भी हमारे होते हुए कोर्ट मैरिज करना पड़ रही है। खैर खुश रहो, अपना घर सुख से बसाओ, खुश रहो।

अभी आप सुन रहे थे नाटक उनका फैसला। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे शरद साढ़े का गाया राग गांधारी।

शास्त्रीय संगीत में भी आप सुन रहे थे शरद साढ़ी का गाया राग गांधारी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत

0: और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news shared by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Patelle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allocated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब हमें अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद।